सुप्रभात, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन गुरुवार शक संवत 1947 के ज्येष्ठ मास की 27 तिथि, तदनुसार 18 जून 2026 सुबह के 7 बज रहे हैं। हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

सच ही कहा है किसी ने कि अगर हमें कुछ पाना है तो उसको पाने के लिए यत्न भी हमें ही करना होगा। परंतु यत्न करते समय हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा अहंकार उस यत्न की आभा को धूमिल ना करे। जब हम किसी भी चीज को पाने के लिए अपने मन की गहराइयों से यत्न करते हैं तो वो चीज हमें जरूर मिलती है, मगर कभी कभी हमारा अहंकार उसमें बाधा पहुंचाता है और हम लाख यत्न करने के बाद भी उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक राज्य का राजा बड़ा ही संगीत प्रेमी था। उसने अपने दरबार में बहुत श्रेष्ठ संगीतकारों को स्थान दिया। वे सारे संगीतकार अपनी प्रतिभाओं और संगीत की विभिन्न श्रेणियों से राजा को आनंदित करते रहते थे। राजा भी उनसे बड़ा प्रसन्न रहता। प्रसन्न होकर उन्हें कई बार अनेक प्रकार की भेंट और उपहार भी देता। एक दिन राजा को उसके दरबारियों के माध्यम से किसी साधु संगीतकार के बारे में जानकारी मिली, जो संगीत का बहुत बड़ा विद्वान था। दरबारियों के अनुसार उसके संगीत में जादू था। जो भी उसे सुनता वो मंत्रमुग्ध हो जाता। उसकी तारीफ इतनी सुनी कि राजा को भी उस साधु का संगीत सुनने का मन हुआ। राजा ने अपने कुछ सैनिकों के माध्यम से उस साधु को राजसभा में आने का निमंत्रण भेजा। सैनिक जब साधु के पास पहुंचे और उन्होंने साधु को राजा का निमंत्रण दिया और कहा कि हमारे राजा संगीत प्रेमी हैं, यदि तुम उन्हें अपने संगीत के द्वारा प्रसन्न कर पाए तो वो तुम्हें सोने से लाद देंगे। तुम्हारी तो किस्मत ही जाग गई है, राजा ने तुम्हें राजसभा में गाने के लिए निमंत्रण भेजा है। आज के बाद तुम ये साधु का जीवन जीना भूल जाना। अब तो तुम्हें राजसी ठाट बाट में जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है। साधु ने सैनिकों की बातें सुनी और उसने सैनिकों से कहा कि मैं राजा का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस संगीत को वो सुनना चाहते हैं वो संगीत तो कभी संयोग से बन पड़ता है और संयोग भरा संगीत किसी के निमंत्रण पर नहीं उपजता। निमंत्रण से तो मात्र प्रयत्न किया जा सकता है और प्रयत्न से पैदा किया हुआ संगीत राजा को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। कृपया कर आप लौट जाएं। सैनिकों ने सारी बातें राजा को जाकर बताई तो राजा क्रोधित हो गया और कहने लगा, उस भिखमंगे साधु की इतनी मजाल कि हमारा निमंत्रण अस्वीकार कर दे। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि उस साधु को उठाकर राज दरबार में ले आओ। राज दरबार में बैठा मंत्री विद्वान था। उसने राजा को शांत करते हुए कहा, महाराज आप क्रोधित ना हो, अपराध क्षमा हो। वो साधु अवश्य है, किंतु आप उसे भिखमंगा कदापि नहीं कह सकते। यदि भीख की चाह होती तो वो आपके दरबार में भागा हुआ चला आता। उस साधु को आपकी संपत्ति की चाहत बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसके संगीत को सुनने की इच्छा है तो आप याचक हैं, इसलिए आपको ही उसके पास जाना होगा। राज दरबार में उपस्थित संगीतकारों ने भी राजा से कहा, महाराज वो साधु तो सचमुच स्वर्ग का गंधर्व है, शायद किसी देव श्राप से श्रापित होकर इस पृथ्वी पर आ पहुंचा है। उसकी अंगुलियों में ऐसा जादू है कि वीणा के तारों को छूते ही संगीत का अमृत बरसने लगता है। उसने सत्य ही कहा है महाराज कि सच्चा संगीत पैदा नहीं किया जाता, वो तो संयोग से ही उपजता है। राजा का क्रोध शांत हुआ और राजा के मन में साधु का संगीत सुनने की लालसा और अधिक बलवती हो गई। राजा ने एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया और अपने राज दरबार के एक संगीतकार के साथ नंगे पैरों उस साधु की कुटिया की तरफ निकल पड़ा। मगर राजा के मन में एक संदेह था कि साधु का संगीत उन्हें सुनने को मिलेगा या नहीं। तब राजा के संगीतकार ने कहा और उसे एक युक्ति सुझाई। साधु की कुटिया के बाहर बने चबूतरे पर दोनों बैठ गए और संगीतकार अपनी वीणा के तार मिलाने लगा। वो जानबूझकर गलत स्वर मिला रहा था। वीणा की आवाज सुनकर साधु अपनी कुटिया से बाहर आया और उसने कहा कि तुम गलत स्वर मिला रहे हो। साधु ने वीणा हाथ में ली
और वीणा के तार मिलाने लगा। वीणा हाथ में लेते ही साधु उसके संगीत में रम गया। अंगुलियां तारों को छूती गईं और हृदय के भाव संगीत का रूप लेते गए। संगीत के स्वर में समय यूं गुजर गया कि पता ही नहीं चला कि कब चांद सूरज में बदल गया। जब सूरज की रोशनी देखकर साधु को वक्त का एहसास हुआ तो उसने वीणा के स्वरों को विराम दिया और वीणा संगीतकार को लौटाते हुए कहा, आज सचमुच बहुत आनंद आ गया। तब राजा ने साधु से आभार व्यक्त करते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने आनंद की प्राप्ति नहीं की जितनी आपने मुझे इन 8 घंटों में करा दी। मैं सचमुच आपका बहुत आभारी हूँ। राजा के साथ बैठे उस संगीतकार ने साधु से राजा का परिचय करवाया तो साधु आश्चर्य में पड़ गया कि एक राजा अपना रूप बदल कर उसका संगीत सुनने आ गया। तब राजा ने साधु से कहा कि इस आनंद के बदले अगर मैं आपको अपना पूरा राज्य भी दे दूं तो कम है। ये कहकर राजा की आंखें भर आईं और उसकी आंखों से अश्कों की 2 बूंदें साधु के पैरों पर गिर पड़ी। साधु ने कहा, मेरे लिए ये 2 बूंदें ही अनमोल हैं।

अभी अभी आपने सुना जीवन सौरभ, अहंकार। अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं सभा में प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम। अब से ठीक बात सुनिएगा अक्षय निधि मंडल एक सूक्त 147 और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति रस का, भक्ति संगीत का। रोजाना की तरह सुबह 8 बजे का समय होगा कार्यक्रम वतन के राग का। दादा धर्माधिकारी के जयंती पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम वतन का राग। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सेन का। खेलना क्यों जरूरी है, और जब बात खेलने की आती है तो आप समझ सकते हैं ये कार्यक्रम होगा बालकों से जुड़ा। जी हाँ, सुबह 8:30 पर सुनिए बाल सभा। कार्यक्रम में स्वर होगा परिकल्पक और मनीषा चतुर्वेदी का। सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सियाचिन ग्लेशियर पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भाभा से पूर्वाखाली की चर्चा आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत। विशेष कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर। शिव भाई गुप्ता निमाड़ी गायन इस कार्यक्रम में सुनेंगे आप। रिकॉर्डिंग की फराज फैयाज ने। सुबह 10 बजे सुनिए कार्यक्रम देश के संस्थान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भाग 2 इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे। कार्यक्रम में स्वर होगा दीपक नीम और भगवती सक्सेना का। महारानी लक्ष्मीबाई पर आधारित कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा सुनिए सुबह 10:30 पर। ग्यारह बजे सुनिए रेडी रिपोर्ट और परिक्रमा। युग प्रवर्तक विवेकानंद यह कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर।

तो अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक बने रहिए मेरे यानी रत्नेश के साथ और आनंद लीजिए विभिन्न कार्यक्रमों का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि एक छोटे से विराम के बाद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 147वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता है अग्नि, छंद है त्रिष्टुप।
3: कथा ते अग्ने शुचयंत आयोर ददाशुर वाजे भिरा शुषाणाः उभे यत्तो के तनये दधाना ऋतस्य सामान्रणयंत देवाः। हे अग्निदेव, यज्ञ द्वारा वायुमंडल का शोधन करने वाली, सर्वत्र प्रकाश बिखेरने वाली आपकी ज्वालाएं किस प्रकार पोषक अन्नों के द्वारा जीवन तत्व प्रदान करती हैं। बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ महिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः पीयति त्वो अनुत्वो गृणाति वंदा रुस्ते तन्वम वंदे अग्ने। उत्तम तरुण रूप वैभव संपन्न हे अग्निदेव, आप हमारे महिमा युक्त बार बार किए गए निवेदन को स्वीकार करें। कोई आपके निंदक हैं तो कोई प्रशंसा करने वाले हैं, लेकिन हम स्तोता स्वभाव से युक्त आपकी प्रज्वलित ज्योति की वंदना ही करते हैं। ये पायवो मामतेयम ते अग्ने पश्यन्तो अंधम दुरितादरक्षन ररक्ष तान् सुकृतो विश्ववेदा दिप्संत इद्रिपवो नाह देभुः। हे अग्निदेव, आपकी जिन प्रख्यात संरक्षक किरणों ने ममता के पुत्र के अंधेपन को दूर किया, ज्ञान से संपन्न लोकहित के कार्यों को करने वाले को आपने संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अहंकारी दुष्कर्मी आपको प्रभावित न कर सके। यो नो अग्ने अररिवाम अघायुर रातीवा मर्चयति द्वयेन मंत्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट तन्वम दुरुक्तैः। हे अग्निदेव, जो दुष्ट कर्मों में लिप्त पापी जन हमें सार्थक दान देने में बाधा पहुंचा रहे हैं, जो स्वयं भी यज्ञीय कर्मों में सहयोग नहीं करते तथा छल पूर्ण चालों से हमें भी परेशान करते हैं, उनकी वे छल रूपी समस्त योजनाएं उनके स्वयं के ही विनाश का कारण बने। दूसरों के लिए कटु वचन बोलने वालों के शरीर क्षीण हो जाएं। उत वायह सहस्य प्रविद्वान मर्तो मर्तम मर्चयति द्वयेन अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने मार्किनो दुरिताय धायीहि। शक्ति के पुत्र हे अग्निदेव, जो मनुष्य छल कपट पूर्ण व्यवहार से हमें कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, उनसे हम उपासकों को बचाएं। हे स्तुत्य अग्निदेव, हमें दुष्कर्म रूपी पापों की दुखाग्नि में जलने से बचाएं।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 147वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
4: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं,

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना।
2: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा दादा धर्माधिकारी की, जिनके बारे में आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि दादा के बारे में क्या कहा जाए। एक छोटे से बच्चे से कोई पूछे कि उसकी माँ कैसी है, तो हो सकता है उसकी माँ बहुत सुंदर हो, लेकिन बच्चा ये नहीं कहेगा। हो सकता है उसकी माँ विद्वान हो, लेकिन बच्चा ये भी नहीं कहेगा। वो तो बस यही कहेगा कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है। दादा के बारे में भी यही कह सकेंगे कि दादा बहुत प्रेमी हैं। दादा धर्माधिकारी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक थे। मानव मात्र के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें सबके हृदय में बिठा दिया। उन्हें गांधी युग का प्रकाश पुंज कहा गया, तो वहीं पत्रकारों ने उन्हें लोकतंत्र का शिल्पी माना। उनका जन्म 18 जून 1899 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलतापी यानी मुलताई नामक स्थान पर हुआ था। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान होने के कारण इस स्थान का नाम मूलतापी पड़ा और कालांतर में इसे मुलताई कहा जाने लगा। दादा धर्माधिकारी का मूल नाम शंकर त्रयंबक धर्माधिकारी था, लेकिन आगे चलकर वो दादा धर्माधिकारी के नाम से ही पुकारे गए। उनका बचपन होशंगाबाद जिले में बीता। बचपन से ही पढ़ने लिखने में उनकी गहरी रुचि थी। वो कहा भी करते थे कि उन्होंने अनेक किताबें पढ़ी। इस अध्ययन वृत्ति से ही उन्हें व्यापक संस्कार मिले और भौगोलिक सीमाओं से परे उनके मन में मानवीय प्रेम जागृत हुआ। उन्हें हिंदी, संस्कृत, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वो कहा करते थे कि मुझे मनुष्य प्रिय हैं, इसीलिए मनुष्यों की सारी भाषाएं मुझे प्रिय हैं। वो अपने हॉस्टल के अधीक्षक कुमारेंद्र चटर्जी से अत्यधिक प्रभावित थे, जो उन्हें इतिहास और भूगोल पढ़ाया करते थे। अध्यापन के दौरान ही वो महान देशभक्तों के त्याग और साहस की चर्चा भी करते, जिसका गहरा प्रभाव दादा धर्माधिकारी के मन पर पड़ा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब दादा धर्माधिकारी ने उनके विषय में काफी कुछ पढ़ लिया था। समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेद से जो विषमता फैली हुई थी, उससे दादा धर्माधिकारी बहुत आहत थे और उन्होंने महसूस किया कि ये विषमता गांधी जी को भी बहुत अखरती है। यही कारण है कि वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने लगे। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। उस समय दादा धर्माधिकारी नागपुर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांधी जी ने उस समय कहा कि असहयोग बुराई के साथ हो, न कि बुराई करने वाले व्यक्ति या समाज के साथ। जीवन की नीति तो सहयोग की ही हो सकती है। असहयोग नैमित्तिक प्रतिकार का साधन मात्र है और बिना तलवार के भी अपना राज आ सकता है। असहयोग सफल हो सकता है। दादा धर्माधिकारी कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के इन विचारों ने उन्हें इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं आपके पीछे आने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद वो कभी भी कॉलेज नहीं गए।

दादा धर्माधिकारी को गांधीवादी मूल्यों ने गहरे तक प्रभावित किया था। जब वो सार्वजनिक जीवन में आए तो उन्होंने युवाओं को संगठित करना आरंभ किया। उन्होंने दो संस्थाओं का गठन किया, एक आर्योतेजक समाज और दूसरा मूलतापी में तप्तेश्वर मंडल। इसके साथ ही वो हस्तलिखित समाचार पत्र भी निकालने लगे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया, तब अपने चुने हुए 78 लोगों के साथ उन्होंने दांडी की ये यात्रा आरंभ की। दादा धर्माधिकारी की ये इच्छा थी कि उन चुने हुए लोगों में गांधी जी उन्हें भी शामिल करें, लेकिन परिस्थितिवश ये संभव नहीं हो सका। तब दादा धर्माधिकारी ने नागपुर में धंतोली पार्क में विद्यार्थियों को भाषण दिया। इस उद्बोधन को सुनकर अनेक विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी और इस आंदोलन में वो कूद पड़े। दादा धर्माधिकारी को अंग्रेजों ने अपने लिए खतरा माना और 29 जुलाई सन 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर जेल में बंद कर दिया। उन्हें एक साल की सजा हुई। 30 के दशक के अंतिम वर्षों में दादा धर्माधिकारी ने काका कालीलकर के साथ मिलकर सर्वोदय मासिक पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला। वो सर्वोदयी समाज के लिए प्रतिबद्ध एक सिपाही की तरह प्रयत्नशील रहे। वो सर्वोदय के एक समर्थ आचार्य और भाष्यकार थे। उनका मानना था कि समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। दादा धर्माधिकारी वर्धा में भी रहे। वो गांधी सेवा संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी से छूटने के बाद वो मध्य प्रांत असेंबली के सदस्य चुने गए। दरअसल उन दिनों ये विचार जन्मा कि गांधीवादी विचार के कुछ लोगों को भी विधानसभा या संसद में जाना चाहिए, लेकिन दादा धर्माधिकारी ने पहले इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि मैंने देखा है कि हमारे देश में पहला स्थान लेने वालों की कोई कमी नहीं है, दूसरा स्थान लेने वाले योग्य आदमियों की बहुत कमी है। सत्ता और सम्मान से अलिप्त रहकर सेवा करने वालों की आवश्यकता है, इसलिए मैंने विचार पूर्वक दूसरा स्थान लेने का निश्चय किया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद गांधी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, ये मेरा निर्णय है। तुम अपनी इच्छा से तो नहीं जा रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते हो, इसे तो मैं तुम्हारी योग्यता मानता हूं। ऐसे लोगों को तो जरूर जाना चाहिए। बापू के इतना कहने के बाद दादा धर्माधिकारी कुछ कह नहीं सके। वो मध्य प्रांत में 1945 से 1951 तक विधानसभा के सदस्य रहे। दादा धर्माधिकारी संविधान परिषद के सदस्य भी थे। इस तरह संविधान निर्माण में भी उन्होंने अपना सकारात्मक योगदान दिया। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने गांधीवादी मूल्यों के साथ ही पूरा जीवन व्यतीत किया। वो कहा करते थे कि समाज में परिवर्तन के लिए लोगों के विचारों में परिवर्तन आवश्यक है।

दादा धर्माधिकारी ने अपने जीवन का लंबा समय दलितों और महिलाओं के उत्थान में लगाया। वो कहा करते थे कि इस देश का सबसे बड़ा रोग जातीयता है। वो भारतीय समाज को मनुष्य के आधार पर संगठित करना चाहते थे। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो सामंजस्य प्रधान हो। वो वर्ण व्यवस्था को तिलांजलि देते हुए कहते थे कि धर्म तो एक ही है और वो सार्वदेशिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक है। धर्म का उद्देश्य मनुष्यों को एक दूसरे के साथ संबद्ध करना है, उनका एकत्र धारण करना है। यही प्रभु ईसा मसीह का ईश्वरीय राज है, यही गांधी जी का राम राज्य है और आदर्शवादियों का आदर्श समाज है। उनका कहना था कि जो मनुष्य को संयुक्त करता है, जोड़ता है, वो धर्म है। जो उन्हें विभक्त करता है वो अधर्म है। यानी समत्व की विद्या और संयोग की कला का नाम ही धर्म है। वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां सब धर्मों का, सब जमातों का, सब जातियों का, यानी जाति धर्म वर्ण निरपेक्ष सामान्य जन का राज होगा। यही उनका संकल्प था और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। स्त्रियों की दशा से उन्हें हमेशा असंतोष रहा। वो कहा करते थे कि हमारे समाज में स्त्री सहधर्मिणी रही है, वो कभी भी मुख्य धर्मिणी नहीं रही। वो सहजीवनी है, जैसे उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ हो ही नहीं। स्त्री की भूमिका सदा गौण और दोयम रही है, जबकि हमारी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों ने ही धर्म, परंपरा और सदाचार को जीवित रखा है। उनका मानना था कि स्त्रियों के उत्थान से ही देश और समाज का उत्थान संभव है। दादा धर्माधिकारी ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनकी संख्या लगभग 2 दर्जन है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया, क्रांति शोधक, गांधी जी की दृष्टि, नए युग की नारी, नागरिक विश्वविद्यालय एक परिकल्पना, मानवनिष्ठ भारतीयता, मैत्री, युवा और क्रांति, लोकतंत्र, विकास और भविष्य, समग्र सर्वोदय दर्शन आदि। उनके लेखन में एक कलाकार सी सौंदर्य दृष्टि और साहित्यिक प्रतिभा दिखाई देती है। अति क्लिष्ट संकल्पनाओं को भी उन्होंने सहज सरल शैली में अभिव्यक्त किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में दादा ने अपनी डायरी में लिखा, जहां मेरी मृत्यु हो वहीं या पास की किसी जगह पर मेरे शरीर का दहन किया जाए, शव को कंधे पर न ढोया जाए, जुलूस न हो, भाषण न हो, दहन में चंदन कपूर घी का उपयोग न हो, मेरी मृत्यु पर शोक सभाएं न की जाएं, मेरा कोई स्मारक न हो। इस तरह गांधीवादी विचारों को जीते हुए 1 दिसंबर 1985 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बुढ़िया का रहस्य, वह साधारण पत्ती जिसने दुनिया जीत ली। 18वीं शताब्दी के लंदन के चहल पहल भरे चाय घरों में चीनी मिट्टी के एक साधारण कप में क्रांति जन्म ले रही थी, जहां कुलीन वर्ग पैको वसंत की पहली सफेद कोमल कलियों की तलाश में रहता था, वहीं आम जनता बुहिया नामक एक रहस्य की दीवानी हो रही थी। हालांकि यह किस्म राजाओं की पसंद से कोसों दूर थी। वास्तव में ये सीजन की सबसे आखिरी और सबसे देर से की जाने वाली तुड़ाई थी, जिसे चाय के पौधे की बड़ी और खुरदुरी पत्तियों से तैयार किया जाता था। बुहिया का रहस्य परिष्कृत स्वाद का विषय नहीं था, बल्कि यह अर्थशास्त्र और सामाजिक आदतों का एक शानदार तालमेल था। जैसे जैसे वेस्टइंडीज के बागानों से आने वाली चीनी की कीमतें गिरी, चाय कामकाजी वर्ग के लिए मिठास के उपभोग का सबसे बड़ा माध्यम बन गई। चूंकि बुहिया उपलब्ध किस्मों में सबसे सस्ती थी, इसलिए यह वह एकमात्र पत्ती थी जिसे आम जनता वहन कर सकती थी। 1700 के दशक के मध्य तक इस साधारण चाय ने बाजार पर कब्जा कर लिया था और कुल काली चाय के आयात में इसकी हिस्सेदारी 37.8% से उछलकर आश्चर्यजनक रूप से 63.3% हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आ गया था कि बुहिया की भारी मात्रा में बिक्री ने उनके वैश्विक संचालन की विशाल लागत को वहन करने के लिए आवश्यक राजस्व प्रदान किया, भले ही सरकारी कर अंततः 100% से अधिक हो गए हों, लेकिन इस किफायती पेय के प्रति जनता के जुनून ने फसल के बचे कुचे हिस्से को पश्चिमी दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय बना दिया। बुहिया ने यह साबित कर दिया कि बढ़ते हुए साम्राज्य में विपत्ति सबसे शक्तिशाली थी, जिसने हर किसी को चाय के कप तक आने का निमंत्रण दिया।
2: रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी और फिर बाल सभा लेकर आपको तो पता ही है मैं हर सप्ताह आपसे मिलती हूँ। बच्चों की बातें, बच्चों की दुनिया, उनके मन से जुड़े हुए विषय और एक बार फिर से उन सब विषयों पर बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों आप जानते आज का विषय क्या है? आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है। बच्चों खेल बचपन की ना सबसे सुंदर पहचान होते हैं, क्योंकि खेल केवल समय बिताने के माध्यम नहीं है, बल्कि ये खेल बच्चों को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और मिलनसार बनाते हैं। खेल में एक बात और होती है बच्चों, वो होती है जीवन की छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सीखें। अब आप सोचोगे कि खेल से कैसे सीख मिलती है, तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि मैं आपसे कोई भी बात, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, वही बात करती हूँ जिसमें कोई ना कोई सीख छुपी होती है। क्योंकि बच्चों हमेशा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, थॉटफुल हो, जो हम देख रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। अगर हम सिर्फ ऐवई कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों वो समय का दुरुपयोग है और इस विषय पर हमने पिछली बाल सभा में बात की थी। आज जो बच्चा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आने वाला था, उसका मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया, बोला दीदी मैंने ना आज ही सुबह बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मैंने कहा किस काम से जाना है, तो उसने बताया कि एक कॉलोनी में उनकी खेल प्रतियोगिता है, उसमें जाना है। तो बोला दीदी सॉरी मैं आज स्टूडियो ना आऊँ, आज मैं अपनी खेल प्रतियोगिता में चला जाऊँ। बस वहीं से मुझे ये विषय मिल गया। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ प्रतियोगिता में, ना सिर्फ खेल के आओ बल्कि जीत के आओ। और आज मैं अपने सभी श्रोताओं से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने श्रोताओं से बात करूंगी कि खेलना क्यों ज़रूरी है और क्यों मैंने उस बच्चे से कहा कि हाँ यहाँ बच्चों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो प्रतियोगिता में तुम नाम लिखवा चुके हो पहले जाकर उसमें खेलो और ना सिर्फ खेलो बल्कि जीतने का प्रयास भी करो। क्योंकि बच्चों ये तो आप जानते हैं कि आज के समय में जब बच्चों का अधिक समय स्क्रीन पे जा रहा है। और ये बात बिल्कुल सच भी है, छोटे छोटे बच्चों को, मैं कितने इतने छोटे बच्चों को देखती हूँ, 4 साल के 5 साल के, जो खाना खाते वक्त अपनी मम्मा से ये बात ज़रूर कहते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए। मतलब भाषा में तोतलापन है, मतलब आप सोचिए मम्मा पानी पीना है लेकिन स्क्रीन देखते हुए पीना है। कितने बच्चे छोटे छोटे वजहों से स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन स्टडी भी है, उसका एक रीज़न है। लेकिन बच्चों, जितना ज़रूरी है उसके अलावा हमें स्क्रीन पर समय नहीं बिताना है, बल्कि हमें खेलने जाना है। अब मैं पूछूं आप लोगों को कौन कौन से खेल पसंद हैं, तो वहाँ से आवाज़ आएगी कि मुझे कबड्डी पसंद है, क्रिकेट पसंद है, रस्सी कूद पसंद है ना, जो मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ खेलता हूँ या खेलती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को खेल खुश भी रखते हैं, पता है आपको। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले समय में ले जाऊँ, जब हम लोग खेलते थे, ये सारे खेल तो खेलते ही थे, इसके साथ साथ कुछ और भी खेलते थे बच्चों। क्या होता था कि मम्मियाँ ना दोपहर में काम करके थक जाती थी। अब जब थक गईं तो उन्हें एक चीज़ ये भी है कि दोपहर में धूप बहुत है, तो धूप में एकदम बाहर तो खेलने आपको नहीं जाना है। लेकिन जब तक मम्मी सो रही हैं, जब तक माँ और घर में दादी नानी ये लोग सो रही हैं, तब तक बच्चों का हल्ला करना, शोर करना बिल्कुल मना था। और हम लोग अपनी पेरेंट्स की ना बात बहुत मानते थे। तो अब ऐसे में क्या खेल खेलें कि आवाज़ भी ना आए, तो छोटे छोटे से खेल बना लेते थे हम लोग। जैसे आंगन में गए और अष्टाचंगा खेलने लगे। अब आप सोचो अष्टाचंगा क्या होता है। इमली बहुत खाते थे बच्चे गर्मियों में ना, इमली खा रहे हैं तोड़ तोड़ के पेड़ों से, उसके जो बीज निकल रहे हैं उससे हम लोग खेलते थे। आप लोग जैसे पासा और ये सब खेलते हो, लूडो खेलते हो आप लोग, उसी तरीके से हम लोग पत्थर पे किसी चीज़ से, चौक से या और पेंसिल किसी ऐसी चीज़ से जिससे वहाँ पर निशान बन जाए, एक चौकोर खाना बना लेते थे और उसमें अष्टाचंगा खेलते थे। सारे दोस्तों को बहुत मज़ा आता था। और फिर जैसे ही सब लोग जग जाते थे और हमें परमिशन मिल जाती थी थोड़ा शोर मचाने की, थोड़ा ऊधम करने की, तो हम लोग पिट्ठू खेलते थे, कंचे बहुत खेलते थे बच्चे। उससे एक चीज़ होती थी बच्चों, जो कंचे कई जगह उसे अंटा भी बोलते थे, उससे ना निशाना बहुत अच्छा साध पाते थे। तीरंदाजी बच्चे छोटी छोटी सी जगहों पे बहुत करते थे, गुलेल खेलते थे आप सोचो, और तो और पिट्ठू के अलावा खो खो खेलते थे। खो खो तो अभी भी अब बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। एक खेल हुआ करता था गिल्ली डंडा, उसमें छोटी सी लकड़ी से बच्चे अपने लिए वो बना लेते थे। और तो और जो साइकिल के पुराने टायर होते थे ना बच्चों, उसको भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे छोटी सी लकड़ी से बहुत दूर दूर तक दौड़ा कर ले जाते थे। अब आप सोचिए कि इस खेल में क्या है। इस खेल में जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि बहुत सारा खर्चा नहीं है, है ना, ठीक है। हमको हर चीज के लिए बाजार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। हम अपने खेल न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि उनको बना भी खुद रहे। अब आप सोचिए कि जो बच्चा साइकिल के पुराने टायर को एक लकड़ी से दूर तक दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, उसका फोकस कितना अच्छा हो जाता होगा। सोचिए सोचिए, क्योंकि ये सोचना ज़रूरी है बच्चों। अगर वो बच्चा अपनी मम्मा से रोज़ कहे कि आज मुझे ये खेल खेलना है, कल मुझे वो खेल खेलना है, आज ये बाज़ार से ले आइए, आज वो बाज़ार से, तो पता चलता है कि गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा का बजट बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता है। तो हमको ये नहीं करना है। हमको ऐसे खेल खेलने की कोशिश करनी है जिसको हम थोड़े थोड़े खुद भी बना सकें। और सच बताऊँ बच्चों, इसमें मज़ा भी बहुत आता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, वो पता है क्या था। उस खेल का नाम था किल किल कांटे। अजीबो गरीब सा नाम है ना, पर मुझे आज था कि मैं स्टूडियो में जब आप लोग के साथ खेलों की बात करूंगी तो वो सारे खेल आपको बताऊंगी जो हम लोग खेला करते थे, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन तब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होते थे बच्चों, है ना, कि छोटी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग बाजार भाग जाए, नहीं होता था। इनफैक्ट बाजार में भी इतने खेल नहीं थे जैसे आजकल मैं देखती हूँ, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करें उसके लिए नए नए गेम्स आ रहे हैं, नई नई बुकलेट्स आ रही हैं। ठीक है, बाजार में नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप जब खुद कोई खेल बनाते हैं, उसमें जो मजा आता है, उसमें जो आपका ब्रेन यूज होता है ना, वो कहीं नहीं होता और कभी नहीं होता, सच मानिए। जैसे वो किल किल कांटे में हम लोग क्या करते थे कि आपको खूब सारी लाइनें खींचनी है, लेकिन ऐसी जगह जो दूसरे को पता ना चले। वो फिर आपकी लाइनें ढूंढता था कि आपने कहां बनाई है और उसको काटता था। तो जो आपने लाइन बनाई है उसने अगर सारी काट दी तो वो जीत गया, और नहीं तो बाकी बच्चे ना एक कपड़ा लेते थे और उसकी पीठ पर कपड़े से मारते थे, तो चोट भी नहीं लगती थी, मजा भी आता था और खूब दौड़ा भागी होती थी, खूब दौड़ा भागी होती थी। ऐसे ही खो खो खेलते वक्त हम लोग बोलते थे कि घोड़ा जमाल खाए पीछे देखा मार खाए, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा हमारी भाषा को भी समृद्ध करती थी। इसलिए मैं आज आपसे खेलना क्यों ज़रूरी है इस विषय पर बातचीत करना चाह रही थी। एक बात और थी कि मेरी कुछ दोस्तों को ना गुड़िया के कपड़े बनाना बहुत पसंद था। अब वो अपनी मम्मी से पुराने कपड़े लेती थी, उसमें फिर सुई धागा लेती थी और हाथों से छोटे छोटे से कपड़े बनाती थी कैंची से काट काट के, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट उनमें से एक दोस्त थी जिसको लगता था कि गुड़ियों को थोड़े से वेस्टर्न कपड़े पहनाने चाहिए, तो वो पता है किससे कपड़े बनाती थी, आप आश्चर्य करोगे, वो बैलून से कपड़े बनाती थी। वो गुब्बारे को पहनाकर गुड़िया को सजाती थी, और मैं आज आपको बताते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है कि मेरी वो दोस्त इंडियन फैशन इंस्टीट्यूट में है। तो आपके बचपन के खेल की यात्रा कहाँ तक जाएगी बच्चों, ये किसी को नहीं पता है ना। और आपको पता है आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे चूंकि स्क्रीन टाइम बहुत है और चूंकि आंखों की बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, पहले हरियाली देखना, घूमना, टहलना, दूर दूर निशाना साधना, तो आपने देखा होगा कई बच्चों को आजकल बहुत कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं। पहले हमारे यहाँ सुई धागा रेस भी होती थी, सुई में धागा डालो। अब सोचो आप सुई में धागा डालना, अब अगर आप आज कोशिश करना कि अपनी मम्मी पापा को बोलो कि एक सुई और धागे की आपसे रेस करवाएं, कितने लोग सुई में धागा डाल पाएंगे ये आप मुझे अगली बाल सभा में जरूर बताना, ठीक है। या तो आप मुझे, जो बच्चे यहाँ स्टूडियो में आएंगे वो बताएंगे, या तो मैं कैसे ना कैसे अपने बच्चों से पूछ ही लूंगी, आज पार्क जाऊंगी शाम को तब भी पूछूंगी और ये बोलूंगी कि घर पे जाके एक्सरसाइज करो। अब आप देखिए कि सुई में धागा डालना कहने को बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन उसमें भी बच्चों आपका फोकस काम आता है ना। आप कितने ध्यान से सुई में जो छोटा सा बहुत बारीक सा छेद है उसको देख पा रहे हो और उसमें धागा पिरो पा रहे हो, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज है, जैसे बैलेंसिंग के लिए एक बहुत अच्छी होती थी, चम्मच में नींबू को रखकर और फिर रेस करवाते थे, तो ये मैंने अभी भी बहुत देखी है, अभी भी बच्चे बहुत खेलते हैं। तो इससे क्या होता था, इससे बैलेंसिंग आती थी। अब ये संतुलन, ये फोकस, ये हर चीज क्या आपकी जिंदगी में काम नहीं आती बच्चों? आती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये समझना होगा कि खेलों से दरअसल हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ रहा है, क्या खास बात हम सीख पा रहे हैं, है ना। क्योंकि बैलेंस तो वैसे भी बहुत जरूरी है लाइफ में। अब जैसे एक छोटी सी बात बताऊं आपको, एक बच्ची है, वो जहां मैं रहती हूँ उसके पास में ही रहती है। अब उस बच्ची में मैं हमेशा देखती हूँ कि थोड़ा व्यवहार में संतुलन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे उसे बाहर खेलना पसंद है तो वो पूरे समय बाहर खेलना चाहती है, ठीक। अब उसका देखिए बैलेंस्ड बिहेवियर कैसे डगमगा रहा है कि मैंने देखा कि कल वो बहुत धूप में भी ना सबके घर जाकर बच्चों को बुला रही थी, बाहर आओगे खेलने आओगे। अब क्या हुआ कि एक दो घरों में गई वो, मैं वापस लौट रही थी कहीं से कुछ सामान लेकर, तो मैं चुपचाप खड़े होकर उसकी गतिविधियां देख रही थी, तो उसने किसी एक का दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी हम नहीं भेजेंगे क्योंकि धूप बहुत है। फिर उसने क्या किया, बगल वाले घर का दरवाजा खटखटाया, आंटी उसको भेज दीजिए ना, मुझे उसके साथ खेलना है। तो उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं बेटा धूप बहुत है अभी नहीं भेजेंगे, शाम को आना। अब जब दो तीन घरों में उसे मना किया गया तो चूंकि मैं सिर्फ उसी को देख रही थी, वो बच्ची थोड़ी देर बाद ना रुआंसी हो गई, तो मैं उसके पास गई क्योंकि मैं जानती हूँ, और मैं, आप लोगों को तो पता ही है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, कोई बच्चा दुखी हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसके पास गई, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, जबकि मैं देख सब रही थी, समझ सब रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, उसने मतलब ऐसा लगा जैसे वो रोने के लिए तैयार बैठी थी, वो रो पड़ी एकदम से, आंटी मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता। मैंने कहा सब तो आते हैं, कहाँ आया आंटी, मैं पिछले कितनी देर से सबके घर पे जाके बैल बजा रही हूँ, कोई नहीं आया। मैंने कहा बेटा टाइम देखो कितना बज रहा है, तो उसने टाइम देखा, उसने बताया कि 3 बज रहा है। फिर मैंने कहा कि इस वक्त धूप देखो, तो ऊपर देखा उसने, मैंने कहा ऊपर देखने की जरूरत ही नहीं है सच में, मतलब ऐसा लगता है थोड़ी देर अगर खड़े हो जाओ बाहर तो जैसे जल रहे हैं। मैंने कहा इतनी धूप में आप कहाँ खेलोगे, बोली वो आंटी पेड़ के नीचे खेलूंगी। मैं कहा ये जो इतना धूप से एक्सपोजर होगा आपका उसका क्या, और कई बार लू जैसी भी स्थिति हो जाती, गर्म हवा भी चलती है धूप में। तो वो रोने लगी, बस उसको एक ही जिद थी कि नहीं मुझे अगर मैं बुलाऊं तो तुरंत दोस्त आ जाने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो वो अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, आपको टाइम देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपसे मना किया है तो क्यों मना किया है। कई बार बच्चों हम सोचते हैं ना कि हमारे किसी दोस्त ने या दोस्त की मम्मी ने या उसकी बड़ी दीदी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, तो मैं देखती हूँ बच्चे तुरंत बोलते वो अच्छी नहीं है, उसकी दीदी अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी मेरी बात नहीं मानती है। आजकल मैं ये वाले चर्चाएं बहुत सुन रही हूँ बच्चों से। तब मुझे लगता था कि मैं बाल सभा में बैठूंगी तो आपसे ज़रूर बैलेंस्ड बिहेवियर की बात करूंगी बच्चों, है ना। पता है इसके लिए आप लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए। मैं जो बाद में आपसे संकल्प के वक्त करवाती हूँ ना कि हम एक धीमा संगीत सुनेंगे, शांति से बैठेंगे, संकल्प लेंगे कि हम कुछ अच्छी चीज़ें करें, हम क्या करें और क्या ना करें, तो बच्चों सबसे पहले आप अपने अंदर धैर्य लाइए, सबसे पहले अधीर होना बंद कीजिए, है ना। थोड़ा शांति से दो मिनट सोचना शुरू कीजिए। जो आपका कंसंट्रेशन टाइम है ना बच्चों वो बहुत कम होता जा रहा है। मैं देखती हूँ एक बच्चा एकदम बैठता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है, दूसरे काम से तीसरे काम में लग जाता है, और जब तक उसको उसके मन की चीज़ ना दे दी जाए वो तब तक शोर करता है। ऐसे कितने बच्चों की कहानियाँ हैं मेरे पास बच्चों, पर मुझे पता है जो बच्चे मेरी बाल सभा सुनते हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में आते हैं, और जो हर बार मुझे बहाने बहाने से कहीं कभी स्कूल जाती हूँ मैं तब बच्चे बताते हैं कि बाल सभा सुनकर दीदी हमने ये सीखा, तो बच्चों जो भी मुझे सुन रहा है ना एक चीज़ ज़रूर सीख लेना, अधीर होना नहीं अच्छी बात नहीं है। हाँ आपको किसी ने कुछ चीज़ के लिए मना किया है तो आप खुद भी आत्म मूल्यांकन कीजिए बच्चों, रुकिए ठहरिए सोचिए कि आपको इस काम के लिए मना क्यों किया गया। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वापस अपने विषय पर आ जाएं कि खेलना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे आपने देखा ही है कि किस तरीके से अभी जो बातें मैं बता रही हूँ एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, एक बहुत खास बात है खेल भावना की विकास होता है खेल खेलने से। इसमें जो सबसे बड़ी सीख है ना, जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल हो, या आपने देखा होगा कि फुटबॉल हो, या इवन वॉलीबॉल हो, ये जो आउटडोर गेम है और जो टीम गेम है, आपने देखा होगा कि सिर्फ जो गोल करता है या जो बॉल को बास्केट में डालता है वही इम्पोर्टेंट नहीं है, वही चैंपियन नहीं है। जो बॉल को पीछे से लेते चला रहा है, लाता चला रहा है, नेट के पास तक जो बॉल को लाया है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, है ना। तो कई बार हमें ये होता है ना, अरे ये काम मेरे कारण हुआ। कई बच्चे आपने देखा होगा जब बहुत अच्छे आप जाते होगे, खेलते होगे पार्क में, कहीं टीम में, स्कूल टीम की तरफ से आप खेल रहे होगे, या आपने देखा होगा स्कूल में भी कई बच्चों को ना हल्का सा, बहुत छोटा सा ही सही, पर अहंकार जैसा आ जाता है, अरे उस मैच में तो मैंने गोल मारा था, अरे उस वाले गेम में तो मैंने सिक्स मारा था। नहीं, पूरी टीम का सपोर्ट था आपके उस सिक्स के पीछे। पूरी टीम चाहती थी कि आप जब नेट तक बॉल पहुंच जाए तो आप उसको बास्केट में डाल दें, सब चाहते थे, समझ रहे हैं आप। तो बच्चों कभी भी ये मत सोचिएगा कि खेल सिर्फ खेल है, खेल में बहुत छोटी छोटी छोटी छोटी सी इतनी इतनी माइक्रो सीख छुपी हुई है कि आपको ना अपने दिमाग का लेंस लगाना पड़ेगा कि अरे इसमें तो ये भी छुपा था। जैसे अभी मैंने बताया ना कि टीम में जब आप रहते हो तब आप सपोर्ट सिस्टम सीखते हो। दूसरा, जिन बच्चों को लगता है कि हार गए तो झगड़ लिए, आपने कई जगह देखा होगा कि कई बच्चे एकदम से खेलते खेलते अगर हार रहे तो बैट पटक देते हैं या झल्ला जाते हैं या उनका टोन ऑफ वॉइस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता फिर। तो बच्चों हमें वो चीज़ें भी सीखनी है और हमें वो चीज़ें भी सोचनी है। अब अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मुझे एक बच्चे के पापा बता रहे थे कि वो बहुत मोबाइल पे खेलता है, मतलब हर खेल मोबाइल पे खेल लेता है, और बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब कौन कौन से गेम खेलता है, तो आजकल तो क्रिकेट भी आप मोबाइल पे खेल सकते हो, आजकल तो आप फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल सकते हो, आप गाड़ी की रेस मोबाइल पे लगाते रहते हो, लेकिन आप बच्चों बस मुझे ये बताओ कि हाथ में स्क्रॉल करते करते आप कितना भी खेल लेना, उससे क्या होगा? उससे आप बैठे बैठे अनफिट होते जाओगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी फूड क्रेविंग बढ़ती है ना? फिर आप सोचोगे कुछ पैकेट में आपको खाने को मिल जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कुछ खा लोगे, फिर आप टॉफी चॉकलेट मुंह में डाल लोगे और फिर थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं खेल रहे हैं, खेल कोई और ही रहा है जो वो खेल बना रहा है मोबाइल के लिए, है ना, और आप उसमें बंधते जा रहे हो, ठीक है? और बच्चों फिर आप क्या करते हो, धीरे

दोस्तों से बात नहीं करोगे तो आप बात करने का तरीका ही भूल जाओगे। सच्ची मानिए, मैंने बहुत बच्चों में ये चीज देख रही हूँ कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या बात करें। हेलो, बस चुपचाप बैठ गए। ये नहीं पूछते आज तुमने क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी क्या कोई, और आज तुम खेलने गए थे, कौन सा खेल खेल रहे हो। तो क्या बताओगे आप, मैं मोबाइल पर गाड़ियों की रेस लगा रहा हूँ। क्या बताओगे आप, मैं मोबाइल पे वो खेल रहा हूँ क्रिकेट। मैं मोबाइल पे ही बास्केटबॉल खेल रहा हूँ। तो ठीक है, आपके टीम प्लेयर्स कौन है। वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप अकेले रहते हो। जब आप स्क्रीन पे खेलते हो तब आप अकेले होते हो, और जब आप बाहर खेलते हो तो आपके साथ पूरी टीम होती है जो आपको एक संवेदनशील नागरिक बनाने में बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि जब कोई गिर जाता है तो आप उसका हाथ पकड़ के उठाते हो, जब किसी के चोट लग जाती है तो आप उसको पानी से साफ करते हो, उसके घर तक उसको लेके जाते हो। तो इससे आपको बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगते हैं। आप अचानक से हेल्पिंग होने लगते हो, आप अचानक से बहुत मीठा बोलने लगते हो, आप अचानक से फ्रेंडली हो जाते हो, है ना। लेकिन ये सब कब आता है, जब आप घर के दरवाजे खोलते हो, अपने अकेलेपन से बाहर निकलते हो, जब आप लोगों के बीच उठते बैठते हो। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो एक कमरा, आपकी स्क्रीन, आपका हाथ, और उससे आपका सारा खेल, खेलते जा रहे हो। तो बच्चों, मैं नहीं सुनूं अब कि कोई भी बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहा है। मैंने आज खेल क्यों ज़रूरी है इस विषय पे बात ही इसलिए रखी थी कि ये जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें आप कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलोगे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, जूडो हो, कराटे हो, कुछ भी हो, सेल्फ डिफेंस से लेकर गेम जो भी जुड़े हुए हैं वो आपको ज़रूर सीखने चाहिए, वो भी आपको काम आते हैं, है ना। वो खेल ज़रूर खेलिए, क्योंकि यही खेल बच्चों आपको न सिर्फ फिट करेंगे बल्कि आपको, मैं बार बार बोलती हूँ कि खेल से खेल भावना का विकास होता है, और खेल भावना से आप एक बहुत अच्छे बच्चों में बढ़ते जाते हो, तब्दील होते जाते हो। आपकी अचानक से सारी कमजोरियां आपको बाय बाय कहने लगती हैं, है ना। और अब ऐसी ही एक, आपको तो पता ही है एवरेस्ट की बातें हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो अब हम फिर से आपको सुनाते हैं बचेंद्री पाल जी का आगे का हिस्सा कि उनका जो प्रथम अभियान था एवरेस्ट का वो कैसा रहा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिसमें वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। काठमांडू में कुछ दिन बिताने के पश्चात हम जीरी चले गए, जो वहां से 4-5 घंटे की यात्रा पर था। जब हमने नामचे बाजार तक की 8 दिन की यात्रा आराम से की, पर्वतों के स्वभाव के विपरीत हम रोज लगभग 1000 मीटर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते, जिससे हम में मजबूती आई और ऊंचाइयों के वातावरण और जलवायु के अनुकूल स्वयं को ढालने में हमें मदद मिली। रास्ते में हमें हसमुख और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ उस क्षेत्र के व्यक्ति विशेष शेरपा मिले। नामचे बाजार शेरपा लैंड की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरी क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को यहीं से निहारा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ का पत्थर उड़ता रहता था। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। हम पर्वतीय लोग सदा से पर्वतों की पूजा करते आए हैं, अतः इस भय मिश्रित प्रेरणास्पद दृश्य के प्रति मेरे ऊपर हावी भावना एक प्रकार से श्रद्धा भाव की थी। मैंने अपने हाथ जोड़े और सागर माथा की तरफ श्रद्धा से सिर झुकाया। एक दिन के बाद हम प्रसिद्ध थ्यांग बोके मठ तक पहुंचे, जहां मूर्तिमान थामा ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सफलता तथा सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। थ्यांग बोके न केवल सुंदर था बल्कि उसकी 4000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई हमारी जलवायु अनुकूलता प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। तो बच्चों, ये पर्वत पर जाने की, आप जो हिमालय तक पहुंचने की यात्रा सुन रहे हैं बचेंद्री पाल जी की, वो भी हमें हर पल यही संदेश देती है कि हमें जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है।

0: है, घर से बाहर निकलना जरूरी है, थोड़ी हिम्मत करना जरूरी है। तो बस एक बार जो आप सोच लें उसे पूरा करके दिखा दीजिए। और यहाँ जो बच्चे अभी हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट टीम में हो, किसी स्टेट टीम में हो, या फिर हमारे यहाँ के कुछ बच्चे नेशनल भी खेल रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जूनियर, सब जूनियर, ऐसे बहुत सारी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। और एक बार आप स्कूल का जो खेल विभाग है बच्चों, उसमें ज़रूर जाना। और जो आपके कोच, जो आपके स्पोर्ट्स टीचर, जो भी होंगे, उनसे मिलकर कहना कि आपको कोई ना कोई खेल ज्वाइन करना है। और जब आप कोई खेल खेलने लगोगे तो सच बोल रही हूँ, आपकी मनीषा दी को बहुत अच्छा लगेगा। और यही बाल सभा में मेरी आपसे बातें करने का जो पूरा पूरा मंतव्य है, वो यही है कि हम यहाँ जो बोलते हैं ना बच्चों स्टूडियो में बैठ के, बस उसका असर बच्चों पे पड़े, है ना। तो अगर आप में से दो बच्चों ने भी अपना स्क्रीन टाइम कम कर दिया, दो चार बच्चे अगर किसी खेल टीम में चले गए, तो सच मानिए मेरा तो पर्पस पूरा हो गया। और रेडियो आज़ाद हिंद भी यही चाहता है कि जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हमको सुनते हैं ना, बस वो धीरे धीरे अच्छे मार्ग पर चलें, है ना। एक बात चलते चलते और बताऊंगी कि जो पारंपरिक खेल थे ना, जिनके बारे में आज मैंने चर्चा की थी आपसे, उसके बारे में अपनी मम्मी से, अपने पापा से पूछना कि आप लोग कौन से खेल खेलते थे जब छोटे थे, वो ज़रूर कुछ ना कुछ मज़ेदार कहानी किससे बताएंगे। और तो और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ना, धीरे से अपनी दादी, दादा, नाना, नानी से भी पूछ लेना, दादू आप छोटे थे तो कौन सा खेल खेलते थे, देखना कितनी मज़ेदार कहानियाँ निकल के आएंगी और देखना कितने अच्छे अच्छे खेल आपको पता चलेंगे। और फिर आप उन पारंपरिक खेलों को खेलने की कोशिश करना, उससे क्या होगा, अच्छी चीज़ें अगली पीढ़ी तक ऐसे ही पहुँचेंगी। तो बच्चों अब चलने का वक्त आ गया है, आपको पता ही है हमारा आपसे जो अंतिम संवाद होता है वो होता है संकल्पों का। तो वो संवाद शुरू करते हैं एक धीमा संगीत और उसके बाद अपनी बातें। शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अब आज खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे। जो भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो अगर वीडियो गेम या स्क्रीन पर बहुत ज्यादा समय बिताते हैं, उसे कम करने का प्रयास जरूर करेंगे। एक इंडोर गेम, साथ ही साथ एक आउटडोर गेम में महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले में या जहां भी आप रहते हैं, आसपास बच्चों की एक टीम बनाएंगे और सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोई ना कोई टीम गेम खेलेंगे, ताकि आप में खेल भावना का विकास हो। अब आंखें आप खोल सकते हैं और अब मुझे बाय बाय भी कह सकते हैं, क्योंकि बाल सभा का समय पूरा हो चुका है। बच्चों चलती हूँ, अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए, भले ही चाहें तो रेडियो के पास आ जाइए। अगर आप मुझे कार में सुन रहे हैं, मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो अपने मन ही मन खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे और कोई ना कोई खेल में हिस्सा ज़रूर लेंगे। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, गर्मी से खुद को बचा कर रखिए, थोड़ा सा धूप में कम निकलिए जैसे मैंने उस बच्चे की कहानी सुनाई थी, और शाम को खूब जम कर खेलिए। बाय बाय, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।
1: बाल सभा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था खेलना क्यों ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और आपके साथ थी मैं आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम इन दिनों इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास में चलते चलते हम उस मोड़ पर अब आ पहुंचे हैं जहां हम अपनी सेना के तीनों अंगों को एक परिपक्व, अनुभवी और आधुनिक उपकरणों से लैस, आत्मविश्वास से भरी हुई सेना के रूप में पाते हैं, उसे नए कलेवर में पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध जीत के बाद के वर्षों में भारतीय सेना की स्थिति की। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी देश की सेना का रोल केवल दुश्मन से युद्ध करने का ही नहीं होता, बल्कि देश की सेना हर दिन हर वक्त देश की शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करती रहती है और देश की सीमाओं पर 24 घंटे चाक चौबंद रहती है। श्रोताओं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, समय कोई भी हो, मौसम के तेवर कैसे भी हों, भारतीय सेना देश के हित को सर्वोपरि रखकर अपने कर्तव्यों में निरत रहती है। श्रोताओं, आज के इस कड़ी में हम देश की सीमाओं की सुरक्षा की ऐसी ही मिसाल पेश करने वाली एक शौर्य गाथा आपके लिए लेकर आए हैं। ये गाथा लिखी गई समुद्र से लगभग 20,000 फीट ऊंचे यानी दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं कि क्या है वो गौरव गाथा हमारे विषय विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से, जिन्होंने लगभग 20 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और स्वयं सियाचिन का अनुभव भी रखते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर।
3: थैंक यू पूर्वा जी, एंजॉय श्रोताओं, आपने बहुत अच्छा समराइज किया
2: जी।
3: जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में नहीं कार्य करती हैं, बल्कि उसके अलावा भी जो है 24/7 365 डेज अ ईयर दे आर एक्टिव ऑन द बॉर्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर एन नंबर ऑफ अदर ड्यूटीज आल्सो व्हिच दे परफॉर्म, लाइक असिस्टिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स। एनीवे, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया सियाचिन ग्लेशियर, इंडीड इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये 76 किलोमीटर लंबा है एंड इट इज नोन एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड द इन द नॉन पोलर रीजन।
2: ठीक है, क्षेत्रों के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा
3: जी
2: ग्लेशियर है,
3: जी। और कहते हैं कि जो सिया होता है वो वर्ड जो है मल्टी लैंग्वेज में मतलब फ्लावर्स के लिए यूज होता है और चेन का मतलब होता है कि जो चीज बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अबंडेंस में होती है
2: जी।
3: तो सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड फुल ऑफ रोजेस।
2: क्या बात है, वहां पर तो एक भी नहीं होता होगा सर मेरे ख्याल से।
3: नहीं, समर्स में जब है काफी जगह है वहाँ पे जहाँ बहुत अच्छे फूल उगते हैं।
2: अच्छा,
3: जी
2: जी, घाटियों में
3: वहाँ पे है काफी जगह है जहाँ समर्स में ये फूल होते हैं, एक्चुअली होते हैं। ये जो जगह है सियाचिन जो है, इट इज लोकेटेड नदर मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एंड काराकोरम रेंजेस जो है उसमें है। मैं उसको रेफरेंस के तौर पे बताऊं को, जैसे अगर हम लेह है लद्दाख में, तो लेह से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं खारदुंगला पास से, उसको क्रॉस करने के बाद हम नुब्रा वैली जाते हैं, और उसके नॉर्थ में जो है जहाँ से नुब्रा रिवर शुरू होती है, दैट इज द प्लेस जहाँ ग्लेशियर जो है खत्म होता है, एंड वहां से आगे 76 किलोमीटर तक जो है ऊपर जाता है। एंड ये जो जगह है, मतलब इट इज अ वेरी रगेड स्नो कवर्ड टेरेन, मतलब बहुत ज्यादा बर्फीला इलाका है जिसमें कि टेम्परेचर -50 तक जाता है, एंड माउंटेन हाइट्स उसमें जो है 20,000 से ऊपर हैं। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके वेस्ट में जो है एक रिच लाइन है जिसको सोल्टोरो रिच बोलते हैं। एक तरह से जो हमारी डिप्लॉयमेंट है जो है वो सोल्टोरो रिच के ऊपर है। और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे अभी मैंने बोला कि बहुत ही मतलब ज्यादा सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जी, तो फ्रीक्वेंटली वहाँ ब्लिजर्ड्स आते हैं, एवलांचेस रहते हैं, क्रेवासेस का खतरा रहता है, और इससे जो है मतलब ये टेम्परेचर जो है कंडीशंस और हाइट के कारण जो है एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो की एफिशिएंसी पे बहुत इफेक्ट करता है, और जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग होती है नॉर्मल जिसको हम समझते हैं एपेटाइट, सोना टाइम से, इवन मेंटल हेल्थ, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो वर्किंग परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन सच एनवायरनमेंट, इट्स अ ग्रेट ग्रेट चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज। ये एक तरह से मतलब वो ऐसा इलाका है जहाँ पे कि पहुँच के हमने जो है अपनी पोस्ट बनाना और उसको गार्ड करना 24/7, इट्स अ मेजर चैलेंज, एंड विच हैज बीन प्रूव्ड बाय द आर्म फोर्सेस कि वी कैन एक्चुअली डू इट। अगर आप वहाँ कभी हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस हाइट के ऊपर जो अपनी वो लिमिट है, उनकी जो लिमिट है उससे भी बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं जी है, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन है, उनके सपोर्ट के बगैर हम मतलब वहाँ नहीं रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मतलब वहाँ पे बातें होती हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड अहेड, लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ इट।
2: जी बिल्कुल सर, मेरा प्रश्न यही था कि आखिर इस युद्ध का क्या इतिहास है, ये क्यों हुआ, क्या कारण है?
3: ये जो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेके, ये शुरू हुआ था जो एंड पॉइंट है हमारा इसका LOC का
2: जी,
3: उसके इंटरप्रिटेशन को लेके।
2: अच्छा,
3: देखिए जो 47 है जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था
2: जी,
3: उसके बाद अगर आपको याद हो हमने जिक्र किया था कि सीज फायर हुआ था, तो जो सीज फायर लाइन थी
2: जी,
3: वो शुरू हुई थी जम्मू के ऊपर से, एंड वहां से होते हुए पूरा एक पॉइंट पे जो कि काराकोरम रेंजेस पे है
2: जी,
3: इसको हम मैप पे NJ 9842 बोलते हैं
2: जी,
3: बड़ा लोकप्रिय नाम है मतलब, तो वहां तक इसकी मार्किंग हुई थी।
2: जी।
3: अब उस समय भी जो है इसके ऊपर का जो इलाका था और है आज भी, मतलब इट वाज अ वेरी रिमोट एरिया, रगेड, जैसे अभी हमने जिक्र किया उसके बारे में,
2: बिल्कुल निर्जन,
3: हाँ वहां पे ना कोई रहता था, ना अप्रोचेबल था, स्नो बाउंडेड था, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन थी। तो वहां तक मार्क करके इट वाज सेड की एंड देंस नॉर्थ टुवर्ड्स द ग्लेशियर, मतलब उसके आगे नॉर्थ की तरफ ग्लेशियर की तरफ ये लाइन जाएगी।
2: अच्छा,
3: ऐसा ये हुआ। अब 71 का जो वॉर हुआ उसमें क्या हुआ कि ये CFL जो है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि उसमें काफी चेंजेस हुए थे वॉर के दौरान जो है, लेकिन इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहे,
2: वही रहा
3: NJ 9842 था,
2: यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
3: उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ उस पॉइंट पे। एंड अगेन इट वाज सेम कि इट वाज म्यूचुअली एग्रीड कि भाई जो NJ 9842 है उसके आगे जो हमारे बीच में जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है वो देंस नॉर्थ टू ग्लेशियर, मतलब नॉर्थ की तरफ ग्लेशियर की तरफ जो है जाएगी।
2: स्पष्ट नहीं था यानी सर उसके आगे?
3: देखिए ये स्पष्ट तो बिल्कुल था
2: जी,
3: ऐसा है कि उस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो सोल्टोरो रिज है
2: जी,
3: बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचे 22,000 फीट के ऊंचे पहाड़ है, ठीक है। एंड जो भी कभी बाउंड्री मार्क होती है तो हमेशा ये हाइट्स के ऊपर होती है।
2: अच्छा, पर्वतों की ऊंचाई पर
3: जी, जैसे हम अपने खेत की मेड़ भी बनाते हैं तो आप देखेंगे एक ऊंचा बना हुआ होता है जिससे हमें बिल्कुल क्लियर कट होता है। अगर हम देखें उस समय जिन्होंने भी मार्किंग करी थी शायद उनके भी मतलब जो है दिमाग में कोई किसी तरह का डाउट नहीं था इसको लेके, तो लॉजिक एम्प्लाइज की मतलब वो जो है नॉर्थवर्ड्स होना चाहिए एंड हाईएस्ट जो वाटरशेड है जैसे मैंने अभी बताया सॉल्ट और रिज लाइन है उसके साथ होना चाहिए। 63 में
2: जी,
3: अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, पाकिस्तान ने उसके साथ में जो एरिया है शाक्सकाम वैली,
2: अच्छा,
3: उसको चाइना को हैंडओवर कर दिया था जो है जी, और उससे क्या हुआ कि अब जब वो चाइना को हैंडओवर हो गया तो जो चाइना की सीमा है वो और
2: करीब आ गई,
3: करीब आ गई
2: भारत के करीब,
3: भारत के करीब आ गई। अब ये जो शाक्सकाम वैली है उसके बाद जो अगर आपको याद होगा चाइना ने जो है काराकोरम हाईवे बनाना शुरू किया जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में
2: हमने जिक्र भी किया था, जिक्र भी किया था
3: है ना, तो जो है उन्होंने शुरू किया एंड 78 में खत्म करा था
2: जी।
3: अब ये जो है अगर आप देखेंगे तो शाक्सकाम वैली हैंड ओवर करने के बाद एक तरह से नॉर्थ सिम की सीमा हमारी तरफ आई, ठीक है, ईस्ट में ऑलरेडी चाइना था, अब वेस्ट में जो पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं था कि जो सियाचिन वाला एरिया है वो हमारा है, इंडिया का है, है ना, और ये जो शाक्सकाम वैली को जो दिया है वो तो इंडिया रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है, तो इंडिया के साथ है हमारा कि ये जो है J&K का हिस्सा है, तो पाकिस्तान को तो पहले कोई हक ही नहीं था कि वो देने का जो है। एनीवे तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर का एरिया जो उसके ठीक नीचे आता था, मतलब इट वाज अ रिमोट एरिया जैसे हमने अभी जिक्र किया है, अनविजिटेड, अनइम्पोर्टेंट, तो काफी टाइम तक तो मतलब डोरमेंट रहा
2: जी।
3: इसमें मतलब जो है कोई ज्यादा हलचल नहीं थी, कुछ नहीं था,
2: किसी भी देश की कोई हलचल नहीं, ना भारत ना पाकिस्तान।
3: या अब क्या हुआ कि उसके बाद में धीरे धीरे सेंटर स्टेज में आना शुरू हुआ जब इंडिया चाइना पाकिस्तान तीनों ने इसके ऊपर जो है अपना हक जमाना शुरू किया। इंडिया का तो हक है ही, पाकिस्तान और चाइना ने भी दी उस पे, इवन सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया, एक तो उन्होंने ना एक नया अलाइनमेंट दिखाना शुरू किया अपने मैप्स के ऊपर, जिसमें कि जो NJ-9842 है उससे उन्होंने एक सीधी लकीर ईस्ट की तरफ खींची, जिसमें कि NJ-9842 को उन्होंने काराकोरम पास से जोड़ दिया। अकबर ये आप सीधी लकीर खींचते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान के मैप में दिखने लग गया।
2: अच्छा, पाकिस्तान के नक्शे में पूरा सियाचिन चला गया।
3: हाँ, सियाचिन जो है वो उन्होंने दिखाना शुरू करा, जबकि उसका अलाइनमेंट जो हमने देखा जिक्र किया कि नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो नया अलाइनमेंट आया इसको उन्होंने अपने मैप्स में दिखाना शुरू किया, और उन्होंने एक और काम करना शुरू किया कि जो माउंटेनियर होते हैं
2: वेस्टर्न कंट्री,
3: हाँ
2: जी,
3: उनको उन्होंने वहाँ पे माउंटेनियरिंग के लिए इनवाइट करना शुरू किया, उनको परमिशन देनी शुरू कर दी।
2: अच्छा, पाकिस्तान सरकार ने,
3: पाकिस्तान सरकार ने अपनी तरफ से जो है।
2: अच्छा, अच्छा, जी, जी।
3: तो मतलब ये एक तरह से सोची समझी
2: साजिश है
3: कि भाई
2: अपने नक्शे में
3: हम उसको धीरे से नक्शे में दिखाया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। इवन जब उन्होंने परमिशन देनी शुरू करी तो काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी देश भी उनको भी ऐसा लगने लगा कि ये जो है पाकिस्तान का है, वो भी अपने मैप पे उसको वैसे ही दर्शाने लगे। तो जब ये बात सामने आई तो इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड टू इट, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप हमारे इलाके में कैसे आ रहे हैं, ठीक है। सॉल्टोरो रिज जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, ठीक है, ये मैंने जैसे बोला था सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट में पड़ती है एंड दिस इज द हाईएस्ट वाटरशेड, मतलब कि जो हाईएस्ट हाइट है उस एरिया में, जिसको कि मतलब मोर देन 20,000 जिसकी हाइट्स हैं, मतलब पीक्स हैं, इसको जो है चार जगह से मतलब क्रॉस करा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: क्योंकि पहाड़ी काफी दुर्गम इलाका है, तो अगर हम नॉर्थ से देखें तो सबसे पहले सियाला आता है, फिर बिलाफोंडला आता है, फिर ग्योंगला आता है, फिर चालोंगला आता है, ऐसे मतलब जो है चार प्रोमिनेंट पासेस हैं जहां से कि इसको क्रॉस किया जा सकता है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि जो बिलाफोंडला है इसका यूटिलाइज कर रहा था फॉर प्रमोटिंग फॉरेन माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन द रीजन। अब पाकिस्तान का जो ये क्लेम है इसको सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अगर करना है, बंद करना है, तो सबसे ज्यादा पर्टिनेंट ये था कि हमें ये जो पासेस हैं इसमें हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारा हक होना चाहिए। पासेस के लिए फिर उसकी जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उन पे भी नियंत्रण होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस इलाके में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज करी, जिसमें कि जो आर्म फोर्सेस के आर्मी के जो एक्सपर्ट माउंटेनियर्स थे, जिसमें कि सबसे फेमस जो नाम आता है कर्नल कुमार साहब का आता है, जिनको कर्नल बुल कुमार भी बोलते हैं, और जिनके नाम पे जो है एक पोस्ट भी है, सियाचिन में
2: जी।
3: उन्होंने वहाँ पे जो है माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन लॉन्च किया जिसमें कि वो इंद्रा कॉल सिया कांगरी वगैरह हाइट पे गए
2: जी।
3: और तभी उनको ये भी मालूम चला कि यहाँ पे पाकिस्तान जो एक्सपेडिशंस करवा रहे हैं और भी मतलब ये बात सब्सटैंशिएट हुई
2: जी।
3: इसके पुख्ता
2: सबूत
3: मिले
2: जी, जी।
3: अब जब पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया ने भी यहाँ पे एक्सपेडिशंस शुरू करे हैं तो उनको लगा कि हमें जो है इस इलाके पे कब्जा करना चाहिए। तो दे स्टार्टेड प्लानिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन टू कैप्चर दिस एरिया।
2: अच्छा, अभी तक तो सर नक्शे की लड़ाई थी,
3: अभी नक्शे की लड़ाई थी,
2: अब जमीनी लड़ाई,
3: अब जमीनी लड़ाई जो है जिसपे की आर्म फोर्सेस की लड़ाई वाली बात थी। अभी इसकी इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि इस जगह पे इस ऊंचाई पे लड़ने के लिए आपको स्पेशल क्लोथिंग चाहिए होती है, स्पेशल जो है आपको टेंट्स वगैरह चाहिए, आर्कटिक टेंट्स वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट।
4: हिंदुस्तान का भारतवासी भाई ने के लिए संदेश है, आशा माता भारती का लाल

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो 24 मरुत, आधुनिक हल्के लड़ाकू विमान तेजस।
1: पास सही समझा तुमने बेटा।
2: दादू, आजकल हम अक्सर आत्मनिर्भर भारत की बात सुनते हैं, इसमें हाल की क्या भूमिका है?
0: बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा इसकी। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल भारत में वस्तुएं बनाना नहीं होता, बल्कि अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान, अपने वैज्ञानिक और अपनी निर्माण क्षमता को विकसित करना भी होता है।
2: यानी जब हम अपने विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और रक्षा प्रणालियां स्वयं बनाएंगे, तब हम और अधिक आत्मनिर्भर बन जाएंगे दादाजी।
0: हाँ, हाल इसी दिशा में निरंतर काम कर रहा है बेटा, और यही कारण है कि आज ये संस्था भारत की तकनीक क्षमता, नवाचार और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी है।
2: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत की एक अहम संस्था है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। हाल ने केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है, बल्कि भविष्य की तकनीकों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है। और यही कारण है कि ये संस्था भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है।
2: और अब तो मुझे हाल के विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में और भी जानने की उत्सुकता हो रही है दादाजी।
0: तो फिर तैयार हो जाओ बिटिया, क्योंकि अब हम जानेंगे हाल की उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाइयां दी बेटा।
2: ये तो मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे क्या बताने वाले हैं दादाजी।
0: सच में?
2: यार।
0: अच्छा मेरी चुटकी जादूगर, बताओ मैं क्या बताने वाला हूँ अब आगे?
2: अब आप ये बताने वाले हैं कि हमारे स्वदेशी विमानों की स्टोरीज क्या होने वाली है।
0: हाँ। वाह, तुम तो सच में मन की बातें जानने लगी हो बेटा।
2: आखिर पोती किसकी हूँ? अच्छा चलिए दादाजी, अब बताइए भी।
0: हाँ बेटा सुनो, भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मरुत, आधुनिक हल्के लड़ाकू विमान तेजस, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर ध्रुव, सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र और अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की प्रेरणादायक कहानी।
2: वाह दादू, उन भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी जो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है।
0: बिल्कुल बिटिया, तुम ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाओगी कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण के पीछे वर्षों का अनुसंधान, हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के धैर्य और कई रातों की नींदों का अनुभव छिपा हुआ है।
2: दादू, क्या हर विमान की अपनी अलग विशेषता होती है?
0: हाँ बिटिया, बिल्कुल होती है। कोई विमान दुश्मन के विमानों का मुकाबला करने के लिए बनाया जाता है, तो कोई सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए, तो कोई कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए और सैनिकों को ले जाने के लिए। इसी तरह हर हेलीकॉप्टर भी अपनी विशेष भूमिका निभाता है।
2: यानी हाल ने समय समय पर देश की आवश्यकताओं के अनुसार नए विमान और हेलीकॉप्टर विकसित किए हैं।
0: हाँ बेटा, ये केवल विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास की कहानी भी है।
2: तो दादाजी, सबसे पहले हम किसके बारे में जानने वाले हैं?
0: हम शुरुआत करेंगे HF-24 मरुत के बारे में बेटा। ये भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था, जब देश स्वतंत्रता के बाद अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, तब स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना एक बहुत बड़ा सपना माना जाता था।
2: और क्या वह सपना सच हुआ?
0: हाँ बेटा, अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने HF-24 मरुत का निर्माण किया। ये केवल एक विमान नहीं था बेटा, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि भारत भी उन्नत एयरोस्पेस तकनीक विकसित कर सकता है।
2: यानी मरुत ने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया।
0: बिल्कुल बनाया, मरुत ने भारत में विमान निर्माण की मजबूत नींव रखी बेटा।
2: और दादाजी, तेजस के बारे में मैं अक्सर समाचारों में सुनती हूँ।
0: तेजस भारत का आधुनिक हल्का लड़ाकू विमान है, इसे अत्याधुनिक तकनीकों से विकसित किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, उन्नत नियंत्रण प्रणालियां और आधुनिक युद्ध क्षमताएं हैं।
2: तो क्या ये पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना है दादाजी?
0: तेजस भारत की स्वदेशी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके विकास में देश के अनेक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिकों और उद्योगों का योगदान रहा है।
2: तो दादाजी, तेजस केवल एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। वहीं अगर ध्रुव के बारे में बात करें तो ये एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है बेटा।
2: दादू, और क्या खास बात है ध्रुव के?
0: ध्रुव का उपयोग सेना, नौसेना, वायुसेना, तट रक्षक बल और नागरिक सेवाओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है बेटा।
2: कौन कौन से कार्य दादू?
0: सैनिकों का परिवहन, राहत एवं बचाव अभियान, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, पर्वतीय क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाना और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य बेटा।
2: यानी एक ही हेलीकॉप्टर कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभा सकता है।
0: यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बेटा। ध्रुव शक्ति और सुरक्षा का संगम है।
2: और रुद्र?
0: रुद्र ध्रुव हेलीकॉप्टर का सशस्त्र संस्करण है। इसमें आधुनिक हथियार प्रणालियां
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
4: आपको लॉजिस्टिक बेस पे चाहिए
5: जी।
4: तो ये बढ़ते बढ़ते जो है ब्रिगेड प्लस लेवल पे स्ट्रेंथ पहुंच गई। मतलब जो एक शुरू हुई थी 60-70 बंदों से, 100 बंदों से जो शुरू हुई थी वो 4,000-4,500 तक पहुंच गई जो है। अब वाइट गवर्नमेंट थी उसके ऊपर आ गई है। इस कारण से उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो प्रॉपर हो गया। तो उससे जो है आर्टिफायर जो है बिलाफोंडला पे जो है इंटेंस आने लगा। एंड इसके अलावा जो मूवमेंट होती थी, ट्रूप्स की मूवमेंट होती थी, उसमें भी वो लोग इंटरफेयर करने लगे। ठीक है, तो ये जो है क्या मैन पावर थी, उसका साइज क्या था, मतलब ये सब जानकारियां होना बहुत जरूरी होता है जब आप कोई भी ऑपरेशन ऐसे लॉन्च करते हैं। तो ये सब जानकारी हासिल करने के लिए एक पेट्रोल हम बोलते हैं कि जो एक टुकड़ी होती है जो कि जानकारी हासिल करने के लिए जाती है।
5: अच्छा,
4: उस टुकड़ी का जनरली काम यही होता है कि वो जानकारी हासिल करे, उसको हम पेट्रोल बोलते हैं। तो उसमें एक ऑफिसर साहब, एक जेसीओ साहब और 7 अदर रैंक।
5: अच्छा,
4: छोटी सी टीम थी, बहुत ही मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड पीपल। ये 24 मई को 87 को उधर गए थे। रात के टाइम मूव किया। अब वर्टिकल क्लाइम था
5: जी।
4: अब इन्होंने अच्छा ही काम किया कि जब वर्टिकल क्लाइम कर रहे थे तो साथ साथ रोप लगाते चले गए।
5: अच्छा,
4: क्योंकि ताकि जब अटैक करने के टाइम पे इसको सहायता से ऊपर जा सकते हैं। इवन उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लेजेस भी बनाई थी। मतलब लेजेस मतलब इन द सेंस की जगह बर्फ काट के, कि ताकि वहाँ हम स्टोर रख सकते हैं। तो ये जो टीम है ये ऊपर पहुंची। ऐसे होता ना जैसे आप सीधे ऊपर चढ़े हैं वर्टिकल क्लाइम से और छट से आप उसके ऊपर पहुंच गए। अब वहाँ पे ये क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते रहे। इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करी। अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद, मतलब इन्फॉर्मेशन इन द सेंस की लेआउट क्या है, उनको जो अंदाजा था
5: जी।
4: बट ये जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ रहे थे, सडनली वहां से मशीन गन फायर शुरू हो गया।
5: दुश्मन ने देख लिया,
4: एंड जो ऑफिसर साहब थे साथ में, जो है इनके 4 जवान थे, वो वहीं पे मतलब जो शहीद हो गए। इट वाज इंटेंस फायर। तो जैसे वो जो रिमेनिंग सोल्जर्स थे वो किसी तरह से उन्होंने अपना को रिट्रैक्ट किया और जो है वापस अपनी पोस्ट पे पहुंचे। नीचे आए, मानने लायक वो है कि जो पेट्रोल थी ये जो वापस इन्फॉर्मेशन लेके आई, इट वाज वेरी इमेंस वैल्यू जो
5: जी, है अमूल्य थी,
4: क्योंकि इसी के बेस के ऊपर जो है अटैक प्लान किया। और ये अटैक जो प्लान किया गया, जो ये शहीद हुए हैं ऑफिसर साहब और जवान, ये उनकी जो है शहादत, उनकी जो बहादुरी का एक बहुत बड़ा मतलब उनका योगदान रहा। They did a really outstanding and commendable job in this. तो इस information के base पे फिर जो है attack plan किया गया
5: जी।
4: और जून के महीने में जो है attack launch हुआ। And इस attack में भी जो force गई थी वो they were all volunteers, highly motivated people
5: जी।
4: अब ये भी मालूम था सबको कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मतलब 90% तो ये है कि हो सकता है हम नहीं वापस आएंगे
5: जी।
4: उसके बावजूद भी आप में कितना हौसला, कितना जज्बा होता है, कितना देश प्रेम होता है, कितना अपनी यूनिट के लिए जो है प्राइड होता है, कि उसके बावजूद सब वॉलंटियर करके गए थे जो है।
5: सर पर कफन बांधकर,
4: कफन बांध के गए थे, बिल्कुल सही बोला आपने जो है। और वर्टिकल स्टीप क्लाइम जो था, रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच था, तो उसमें क्या है बहुत सारे लोग भी एक साथ नहीं जा सकते,
5: नहीं जा सकते थे, ठीक
4: है। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, ठीक है, रिफाइड ऑक्सीजन है, सांस नहीं आ रहा है
5: जी।
4: और उसके बाद जो है
5: हथियारों के साथ चढ़ना,
4: और ऊपर गए जो है। पहला जो अटैक हुआ उसमें जो है मतलब काफी फायरिंग चल रही जो है, एंड उसके बाद फिर से दूसरी जगह से जो है अटैक किया, एक और पार्टी ने अटैक किया। तो वो जो एक स्मॉल टीम थी उसको नायब सुधर बाना सिंह साहब लीड कर रहे थे, जेसी साहब, उनके साथ सिक्स सोल्जर्स और थे, वो किस ऊपर पहुंचने में सफल रहे, एंड उन्होंने वहां जाके पोस्ट के ऊपर अटैक किया ग्रेनेड से और स्मॉल आर्म से। पाकिस्तानी सोल्जर जो थे वहां पे उन्होंने भी जो है डट के मुकाबला किया, जवाब दिया, लेकिन फाइनली द इंडियन सोल्जर्स ओवरकम,
5: चौकी पे भारतीयों का
4: कब्जा हो गया। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो पीछे से जो पाकिस्तान की तरफ से जो लैडर्स थी से उनको काट दिया,
5: अच्छा, ताकि और
4: आमद ना आ पाए, ठीक है, और जो है इस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया। तो ये जो पोस्ट है फिर इसी को हम आज बाना पोस्ट के नाम से जानते हैं, नायब सुधर बाना सिंह साहब, आफ्टर दैट ही बिकेम ऑनरी कैप्टन, ठीक है, जिन्होंने असॉल्ट लीड किया था उनके ऑनर में ये पोस्ट उनके नाम से जानी जाती है,
5: परमवीर चक्र विजेता
4: जी। ही वाज अवार्डेड द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र फॉर हिज आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी एंड लीडरशिप ना अंडर मोस्ट एडवर्स कंडीशंस। मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशन हुआ था इस कंडीशंस में, बाय द वे मैंने खुद देखी वो पोस्ट
5: जी, जी।
4: और वो रियली वर्टिकल हाइट है, उस पे चढ़ना मतलब इट्स रियली इम्पॉसिबल। जब हेलीकॉप्टर भी जाता है तो बिल्कुल जाके ऊपर जाके बैठ जाता है, ऐसा लगता है। इट वाज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री, आई बिलीव इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस एवर कैरिड आउट, ठीक है, ओके, एंड वी सैल्यूट दिस ब्रेव सोल्जर्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस एंड ब्रॉट अस प्राइड।
5: वाकई में सर, बाना सिंह सर की इस परम वीरता को नमन है जिनके कारण हम इस महत्वपूर्ण पोस्ट को अपने कब्जे में ले पाए। श्रोताओ, सियाचिन की ये जंग सन 1984 में उसी दिन समाप्त नहीं हुई। आज भी इस वक्त जब आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारी सेना के जवान -50 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में सेना ताने वहां खड़े हैं। दुश्मन से ज्यादा घातक वहां का बर्फीला मौसम, फ्रॉस्ट बाइट, लो ऑक्सीजन और बर्फीले तूफान में भी उनके हौसलों को डिगाया नहीं जा सकता। ये गौरव गाथा आगे भी जारी रहेगी हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने ऑपरेशन मेघदूत के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू पूर्वा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं।
5: तो श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। अब दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई।

0: कलाकार थे शिव भाई गुप्ता और उनके साथ ही आइए सुनते हैं निमाणी लोक गायन। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज श्री शिव भाई गुप्ता निमाणी लोक गायन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी और सज्जनों, आपको हम बता दें कि विगत 32 वर्षों से आप कला जगत में सक्रिय हैं। गायन के साथ साथ आपने लगभग 2000 गीतों की रचना की है तथा उसे संगीतबद्ध भी किया है। आपके अनेक एल्बम्स रिलीज हुए हैं तथा सोशल मीडिया पर भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं। आपने अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री शिव भाई गुप्ता जी का। सभी कलाकार इस वक्त मंच पर हैं। कलाकारों से आपका परिचय हम करवा दें। सहगायक हैं श्री मुकेश यादव और श्री विशाल साध। संगत कलाकार हैं ढोलक पर श्री रामबली पटेल, तबले पर श्री राम यादव, ऑर्गन पर श्री विशाल साध और ऑक्टोपैड पर श्री मोहित पाटिल। श्री शिव भाई गुप्ता से हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी प्रस्तुति आरंभ करें।

0: की
1: जय हो।
0: एक छोटी सी रचना आज बिरसा मुंडा जी, जिनकी शहादत दिवस है, उसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।

हिंदुस्तान का भारतवासी भाई ने के लिए संदेश है, आशा माता भारती का लाल, चाहे टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो,

0: भारत माता की
1: जय हो,
0: बिरसा मुंडा भगवान की
1: जय हो।
0: जो हमारा बिरसा मुंडा जी की जितना महिमा चरित्र चित्रण बोला उतनी कम है, पर एक कलाकार को प्रयास है। देखो आज भी कहावत है, ये आजादी बड़ी अनमोल है,

0: ये देश का युवा ना का संदेश है इस मंच का माध्यम से एक छोटा सा गायक।
1: बड़ी मुश्किल से आजादी रे मिली, भारत का नौजवान तुम जा जो मत भूले।

0: एकता मोह आनंद है।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, एयरोस्पेस का क्या अर्थ है, हाल किस तरह से अनुसंधान, डिजाइन और विकास के माध्यम से भारत की वायु शक्ति को सशक्त बनाता है, एवियोनिक्स और MRO जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का क्या महत्व है और देश के युवा किस तरह विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का हिस्सा बन सकते हैं।
2: लेकिन हाल की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण से आगे बढ़कर हाल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों, विमान इंजनों, अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों और भविष्य की स्वदेशी तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: तो आइए श्रोताओं, देश के संस्थान की इस विशेष श्रृंखला विज्ञान से तकनीक की ओर, इसमें अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि हाल किस तरह भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है दादू और रुचि का रोचक संवाद।
3: अरे रुचि बेटा, कहाँ हो?
4: आई दादू।
3: अरे इधर आओ बेटा, जल्दी आओ।
4: आई दादू।
3: अरे अरे अरे, अरे धीमे धीमे धीमे बेटा, आराम से आओ, कहीं गिर मत जाना।
4: चिंता मत करिए दादू, मैं बिल्कुल संभल कर आई हूँ और ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। मैंने वादा किया था ना कि अगली बातचीत में मैं आपको अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगी।
3: अरे वाह बेटा, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू बेटा।
4: अब मुझे जल्दी से बताइए कि आप आज क्या पढ़ रहे हैं?
3: बेटा अभी तो दिन शुरू हुआ है। आज अखबार में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के बारे में कुछ रोचक लेख छपा है बेटा।
4: अच्छा?
3: हाँ
4: दादू, मुझे याद है आपने पिछली बार हाल के बहुत सारे रोचक तथ्यों के बारे में बताया था। आज ये बताइए कि आज क्या क्या नया जानने को मिलने वाला है दादू की प्यारी रुचि बिटिया को।
3: देखो बेटा, आज हम जानेंगे हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर ही नहीं बनाता, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और भविष्य की रक्षा तकनीकों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
4: अंतरिक्ष कार्यक्रम? यानी हाल और इसरो का भी कोई संबंध है दादाजी?
3: हाँ बिटिया, और बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जब हम इसरो की सफलताओं की बात करते हैं तो उसके पीछे कई भारतीय संस्थानों का योगदान होता है, जिनमें हाल भी शामिल है।
4: वो कैसे दादू?
3: हाल रॉकेटों और उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए अनेक महत्वपूर्ण संरचनात्मक भाग, ईंधन टैंक, यांत्रिक अवयव और विशेष तकनीकी उपकरण तैयार करता है बेटा। इनका उपयोग अंतरिक्ष अभियानों में किया जाता है।
4: वाह, यानी हाल का काम केवल आकाश तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसकी पहुंच अंतरिक्ष तक भी है।
3: बिल्कुल बेटा, जब कोई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित होता है या कोई प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है तब उसके पीछे अनेक वैज्ञानिक संस्थानों की सामूहिक मेहनत होती है बेटा। हाल भी उस सफलता का एक महत्वपूर्ण भागीदार होता है।
4: ये तो बहुत ही कमाल की बात है दादू।
3: निश्चित रूप से कमाल की बात है बेटा, यही तो भारत की ताकत है। देश के विभिन्न संस्थान मिलकर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं।
4: दादू, आपने बताया था कि हाल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी अपना योगदान देता है, तो वो किस तरह से भला?
3: अरे जरा ठहरो बिटिया, सब कुछ बताऊंगा, आराम से, थोड़ा क्रम से चलते हैं बेटा।
4: अच्छा ठीक है दादू।
3: तुम बहुत नटखट हो बेटा। सुनो बेटा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना तुम्हें कि किसी भी विमान का दिल होता है उसका इंजन। क्या बताया था?
4: कि किसी भी विमान का दिल होता है उसका इंजन।
3: हाँ, जैसे हमारे शरीर में हृदय रक्त का संचार करता है वैसे ही इंजन विमान को शक्ति प्रदान करता है।
5: यदि इंजन ना हो तो विमान उड़ ही नहीं सकता।
4: आपने बताया था कि हाल इंजन भी बनाता है।
3: हाँ बिटिया, हाल विभिन्न प्रकार के विमान और हेलीकॉप्टर इंजनों के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन का कार्य करता है बेटा। इसके साथ ही स्वदेशी इंजन तकनीक विकसित करने के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
4: यानी केवल विमान ही नहीं बल्कि उन्हें उड़ाने वाली शक्ति भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
3: यही तो स्वदेशी तकनीक की असली पहचान है। जब किसी देश के पास अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान और अपनी निर्माण क्षमता होती है तब वो दूसरे देशों पर कम निर्भर रहता है।
4: अच्छा दादू।
3: हाँ बेटा।
4: क्या हाल भविष्य के लिए भी नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है?
3: बिल्कुल कर रहा है बेटा, और यही तो सबसे रोमांचक बात है। हाल कई अत्याधुनिक परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है बेटा।
4: जैसे?
3: जैसे सबसे पहले है AMCA, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये भविष्य की पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होगा बेटा, जिसमें आधुनिक स्टील्थ तकनीक और उन्नत प्रणालियां होंगी।
4: क्या सच में दादू, स्टील्थ तकनीक और उन्नत प्रणालियां होंगी? इसका क्या मतलब है?
3: बिटिया, स्टील्थ तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिससे विमान दुश्मन के रडार पर बहुत कम दिखाई देता है या उसे पहचानना कठिन हो जाता है। विमान की विशेष बनावट, सामग्री और डिजाइन उसकी रडार पहचान को कम करने में मदद करते हैं।
4: यानी दुश्मन को उसकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
3: हाँ बेटा, इससे विमान अपनी जिम्मेदारियाँ अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से निभा सकता है।
4: और ये उन्नत प्रणालियाँ क्या होती हैं दादाजी?
3: उन्नत प्रणालियों में आधुनिक रडार, संचार उपकरण, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर, कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणालियाँ और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर पायलट को बेहतर जानकारी देते हैं और विमान की क्षमता को बढ़ाते रहते हैं।
4: यानी भविष्य के विमान केवल तेजी नहीं होंगे बल्कि अधिक बुद्धिमान और सुरक्षित भी होंगे।
3: बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। आधुनिक तकनीक का उद्देश्य केवल गति बढ़ाना नहीं है बल्कि सुरक्षा, सटीकता और कार्य कुशलता को भी बेहतर बनाना होता है।
4: वाओ दादाजी, कितना कूल है ये तो। और बताइए ना दादू उसके बारे में।
3: बेटा, इसके अलावा हाल का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर परियोजना पर भी बेहतरीन कार्य चल रहा है। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो विमान वाहक पोतों से उड़ान भर सकेगा और भारतीय नौसेना की शक्ति को और बढ़ाएगा।
4: और IMRH ये क्या है दादू?
3: इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। क्या बोला मैंने?
4: इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर।
3: ये भविष्य का बहु उद्देशीय हेलीकॉप्टर होगा बेटा।
4: अच्छा।
3: जिसका उपयोग सैनिकों के परिवहन, राहत एवं बचाव कार्यों और विशेष अभियानों में किया जा सकेगा।
4: मतलब दादाजी, हाल केवल आज की नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी तैयारी कर रहा है।
3: बिल्कुल सही, शाबाश, सही समझा तुमने बेटा।
4: दादू, आजकल हम अक्सर आत्मनिर्भर भारत की बात सुनते हैं, इसमें हाल की क्या भूमिका है?
3: बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा इसकी। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल भारत में वस्तुएं बनाना नहीं होता बल्कि अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान, अपने वैज्ञानिक और अपनी निर्माण क्षमता को विकसित करना भी होता है।
4: यानी जब हम अपने विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और रक्षा प्रणालियां स्वयं बनाएंगे तब हम और अधिक आत्मनिर्भर बन जाएंगे दादाजी।
3: हाँ, हाल इसी दिशा में निरंतर काम कर रहा है बेटा, और यही कारण है कि आज ये संस्था भारत की तकनीक क्षमता, नवाचार और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी है।
4: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि ये विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत की एक अहम संस्था है।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने। हाल ने केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है बल्कि भविष्य की तकनीकों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है। और यही कारण है कि ये संस्था भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है।
4: और अब तो मुझे हाल के विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में और भी जानने की उत्सुकता हो रही है दादाजी।
3: तो फिर तैयार हो जाओ बिटिया, क्योंकि अब हम जानेंगे हाल की उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाइयां दी बेटा।
4: ये तो मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे क्या बताने वाले हैं दादाजी।
3: सच में?
4: यार।
3: अच्छा मेरी चुटकी जादूगर, बताओ मैं क्या बताने वाला हूँ अब आगे।
4: अब आप ये बताने वाले हैं कि हमारे स्वदेशी विमानों की स्टोरीज क्या होने वाली है।
3: हाँ। वाह, तुम तो सच में मन की बातें जानने लगी हो बेटा।
4: आखिर पोती किसकी हूँ। अच्छा चलिए दादाजी, अब बताइए भी।
3: हाँ बेटा सुनो, भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मरुत, आधुनिक हल्के लड़ाकू विमान तेजस, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर ध्रुव, सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र और अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की प्रेरणादायक कहानी।
4: वाह दादू, उन भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी जो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है।
3: बिल्कुल बिटिया, तुम ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाओगी कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण के पीछे वर्षों का अनुसंधान, हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के धैर्य और कई रातों की नींदों का अनुभव छिपा हुआ है।
4: दादू, क्या हर विमान की अपनी अलग विशेषता होती है?
3: हाँ बिटिया बिल्कुल होती है। कोई विमान दुश्मन के विमानों का मुकाबला करने के लिए बनाया जाता है, तो कोई सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए, तो कोई कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए और सैनिकों को ले जाने के लिए। इसी तरह हर हेलीकॉप्टर भी अपनी विशेष भूमिका निभाता है।
4: यानी हाल ने समय समय पर देश की आवश्यकताओं के अनुसार नए विमान और हेलीकॉप्टर विकसित किए हैं।
3: हाँ बेटा, ये केवल विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास की कहानी भी है।
4: तो दादाजी, सबसे पहले हम किसके बारे में जानने वाले हैं?
3: हम शुरुआत करेंगे HF-24 मरुत के बारे में बेटा। ये भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था। जब देश स्वतंत्रता के बाद अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, तब स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना एक बहुत बड़ा सपना माना जाता था।
4: और क्या वह सपना सच हुआ?
3: हाँ बेटा, अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने HF-24 मरुत का निर्माण किया। ये केवल एक विमान नहीं था बेटा, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि भारत भी उन्नत एयरोस्पेस तकनीक विकसित कर सकता है।
4: यानी मरुत ने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया।
3: बिल्कुल बनाया। मरुत ने भारत में विमान निर्माण की मजबूत नींव रखी बेटा।
4: और दादाजी, तेजस के बारे में मैं अक्सर समाचारों में सुनती हूँ।
3: तेजस भारत का आधुनिक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे अत्याधुनिक तकनीकों से विकसित किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, उन्नत नियंत्रण प्रणालियां और आधुनिक युद्ध क्षमताएं हैं।
4: तो क्या ये पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना है दादाजी?
3: तेजस भारत की स्वदेशी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके विकास में देश के अनेक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिकों और उद्योगों का योगदान रहा है।
4: तो दादाजी, तेजस केवल एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है।
3: बिल्कुल सही कहा तुमने। वहीं अगर ध्रुव के बारे में बात करें तो ये एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है बेटा।
4: दादू, और क्या खास बात है ध्रुव की?
3: ध्रुव का उपयोग सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और नागरिक सेवाओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है बेटा।
4: कौन कौन से कार्य दादू?
3: सैनिकों का परिवहन, राहत एवं बचाव अभियान, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, पर्वतीय क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाना और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य बेटा।
4: यानी एक ही हेलीकॉप्टर कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभा सकता है।
3: यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बेटा। ध्रुव शक्ति और सुरक्षा का संगम है।
4: और रुद्र?
3: रुद्र ध्रुव हेलीकॉप्टर का सशस्त्र संस्करण है। इसमें आधुनिक हथियार प्रणालियां और निगरानी उपकरण लगाए गए हैं।
4: तो ये केवल उड़ान भरने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा अभियानों के लिए भी उपयोगी है।
3: बिल्कुल है बेटा।
2: ये कठिन परिस्थितियों में भी सेना को प्रभावी सहायता प्रदान कर सकता है।
4: और प्रचंड का नाम तो दादाजी बहुत प्रभावशाली लगता है मुझे।
2: जैसा कि नाम से प्रचंड है क्योंकि बेटा इसकी क्षमताएं भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। प्रचंड एक आधुनिक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे विशेष रूप से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालन के लिए विकसित किया गया है।
4: यानी जहां सामान्य हेलीकॉप्टरों को कठिनाई हो सकती है वहां भी ये काम कर सकता है।
2: हाँ, यही कारण है कि ये भारतीय सेनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा।
4: दादू, क्या हाल के बनाए विमान विदेशों में भी जाते हैं?
2: हाँ बेटा, हाल के हेलीकॉप्टर और विमान कई देशों तक पहुँचे हैं। इससे भारत की तकनीकी क्षमता का विश्व में सम्मान बढ़ा है।
4: दादू, इसका मतलब इन सभी उपलब्धियों का आत्मनिर्भर भारत से भी सीधा संबंध है।
2: बिल्कुल है बेटा। जब कोई देश अपने विमान, हेलीकॉप्टर, तकनीक और रक्षा प्रणालियां स्वयं विकसित करता है ना, तब उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं।
4: यानी हमें हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
2: स्वदेशी तकनीक न केवल सुरक्षा को मजबूत करती है बल्कि विज्ञान, उद्योग, रोजगार और अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है बेटा।
4: दादाजी, अब समझ में आया कि हाल की उपलब्धियाँ केवल तकनीकी उपलब्धियाँ नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की उपलब्धियाँ भी हैं।
2: सही कहा बेटा तुमने। इन उपलब्धियों के पीछे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों और कर्मचारियों का समर्पण छिपा हुआ है। क्योंकि जब सपनों को विज्ञान का साथ मिलता है तब जन्म लेती हैं नई उड़ानें।
4: और जब देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर मिलकर काम करते हैं ना, तब आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है।
2: सही कहा बेटा तुमने। विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार ही विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव है।
4: दादू, जब मैं तेजस या प्रचंड जैसे विमानों के बारे में सुनती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि इन्हें बनाना कितना कठिन होता होगा।
2: बहुत कठिन है बेटा। किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर का निर्माण केवल कारखाने में पुर्जे जोड़ देने भर का काम नहीं होता। इसके पीछे वर्षों का अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और सुधार की बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है।
4: यानी पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि विमान किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद इंजीनियर उसकी संरचना, वजन, गति, सुरक्षा और तकनीकी प्रणालियों का डिजाइन तैयार करते हैं।
4: और फिर से उड़ाया जाता होगा?
2: नहीं, उससे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन, प्रयोगशाला परीक्षण और जमीन पर कई तरह की जांच की जाती है बेटा। जब सभी परीक्षण सफल हो जाते हैं तभी परीक्षण उड़ान की अनुमति मिलती है।
4: मतलब एक सफल उड़ान के पीछे वर्षों की तपस्या होती है।
2: हाँ बेटा, जब हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तब हमें केवल उसका परिणाम दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और समर्पण होता है।
4: दादू, इन स्वदेशी विमानों और हेलीकॉप्टरों से हमारी सेनाओं को क्या लाभ होता है?
2: बहुत लाभ होता है बेटा। सबसे बड़ा लाभ है आत्मनिर्भरता। यदि हमारे पास अपनी तकनीक और अपने विमान है तो आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार और उन्नयन भी हम स्वयं कर सकते हैं।
4: यानी हमें हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
2: हाँ बेटा, इसके साथ ही देश में अनुसंधान, उद्योग, रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा।
4: दादू, क्या आज के विद्यार्थी भी भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं?
2: क्यों नहीं बन सकते? यदि विद्यार्थी विज्ञान, गणित और तकनीक में रुचि रखें, जिज्ञासु बने रहें और निरंतर सीखते रहें, तो वे भी भविष्य में हाल DRDO, इसरो या अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में कार्य कर सकते हैं।
4: यानी आज की पढ़ाई कल देश की शक्ति बन सकती है दादाजी।
2: बिल्कुल, आज की कक्षा में बैठा कोई छात्र भविष्य में नया विमान डिजाइन कर सकता है बेटा, नया इंजन विकसित कर सकता है या ऐसी तकनीक बना सकता है जो देश की सुरक्षा को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दे।
4: वाह, अब तो मुझे भी लगने लगा है दादू कि विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी माध्यम है।
3: और यही तो हमारी इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है बेटा।
4: हाँ दादू, आज हमने जाना कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि यह विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
3: तो चलो रुचि बेटा, इसी बात पर मिलकर कहें जय हिंद। अच्छा, एक कप चाय और ले आओ।
4: अरे दादू, आप भी ना, बार बार चाय, रुकिए लेकर आती हूँ।
3: थैंक यू बेटा।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे थे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की, जो है आकाश की शक्ति का निर्माण। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना
3: और मैं दीपक निमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।
3: नमस्कार।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1830 में बनारस में हुआ था। उन्होंने बचपन में लिखाई पढ़ाई के साथ साथ हथियार चलाना भी सीख लिया था। 14 साल की उम्र में उनका विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र बना लिया। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात डलहौजी की हड़प नीति के चलते अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन कर लिया। 1857 में जैसे ही मेरठ के सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत की, रानी ने भी झांसी की बागडोर अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। वे क्रांतिकारी सिपाहियों की मदद करने लगी। उन्होंने काफी समय तक झांसी किले की रक्षा की, लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने एक बार फिर झांसी पर हमला किया। रानी की 14,000 सैनिकों की फौज ने 2 हफ्तों तक अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया और अंततः रानी को झांसी छोड़कर कालपी जाना पड़ा। अंग्रेजों ने रानी को पकड़वाने वाले को 20,000 रूपये का इनाम देने की घोषणा की। झांसी की रानी को मर्दानी की संज्ञा सबसे पहले अंग्रेजों ने ही दी थी। कालपी में रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर भावी रणनीति बनाई और ग्वालियर को अंग्रेजों से छीन लिया। अंग्रेजों ने ग्वालियर वापस पाने के लिए फिर उनसे मुकाबला किया। 17 जून 1858 को युद्ध में लड़ते लड़ते रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई हमेशा के लिए वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक बन गईं।

0: भरते भरते प्याज और मिर्ची लगा दी है, बता है। ना रोटी का पता है ना दाल का पता है।
1: और कुछ बोलो तो बुरा मान जाते हैं।
0: अरे गजबी है काका, अरे दाल तो भिजवा दो इधर।
2: अरे आ रही है भाई, लड़का ला तो रहा है। अरे दाल लगा दे जल्दी से इधर।
3: और ये कहाँ का गाना लगा दिया रेडियो पर?
2: क्यों, क्या बुराई है इसमें?
1: अरे बुराई की बात नहीं है, अरे सुनवा दो कजू चटपटा सुनवाओ। ऐसे कजू भी करते
3: हैं।
2: अरे चटपटे बटपटे ही गाने सुनते रहोगे या कभी उनके भी गाने सुन लिया करो जो देश के लिए शहीद हुए हैं। ये कोई चलता हुआ गाना नहीं है, 150 बरस से बुंदेलखंड के गांव गांव में गाया जाता रहा है ये लोकगीत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी।
0: झांसी वाली रानी? काका सुना तो बहुत कुछ है इसके बारे में
1: पर मालूमात कुछ भी नहीं है काका।
2: अरे तो फिर हम किस लिए हैं?

0: मन में ठानी थी।
1: सन 1857 ईस्वी में प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की फौजों को शिकस्त देने के बाद फिरंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते कदमों को रोक पाना असंभव सा हो गया था। बंगाल और बिहार के साथ साथ समूचा अवध उसके खूनी चंगुल में आ चुका था। इधर पूना की पेशवाई को तहस नहस कर कंपनी सारी देशी रियासतों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेने के लिए नित नए मंसूबे गढ़ रही थी। इन्हीं मंसूबों के तहत पूना के बाजीराव पेशवा को अपना सब कुछ छोड़कर दूर कानपुर के पास बिठूर की छोटी सी जागीर पर संतोष करना पड़ा। पेशवा के विश्वस्त सहयोगी मोरोपंत भी उन्हीं के साथ बिठूर चले आए। साथ में थी उनकी इकलौती बेटी मनुबाई, जो आगे चलकर लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। बाजीराव पेशवा निसंतान थे, अतः उन्होंने एक बालक को गोद लिया। नाम था नाना धुंधू पंत, जिन्हें आगे चलकर महान क्रांतिकारी नाना साहब के नाम से जाना गया। और मनुबाई इन्हीं नाना की मुंहबोली बहन थी।
0: हर चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में।
1: नाना साहब और तात्या टोपे के साथ हर तरह के हथियार चलाने में निपुण होने के साथ साथ मनुबाई राजनीतिक दांव पेचों को भी बारीकी से समझती जा रही थी। इन्हीं दिनों झांसी के राजा गंगाधर ने मनुबाई को विवाह का प्रस्ताव भेजा।

0: अब आप इस झांसी की महारानी हैं। दास दासियां, सेवक चाकर सब आपकी सेवा में हाजिर हैं। जिस चीज की इच्छा हो बस इशारा भर कीजिए कि हाजिर।
1: जिस भी चीज की?
0: हाँ, जिस चीज की भी।
1: तो ठीक है, कुछ बहुत अच्छे घोड़े।
0: घोड़े?
1: कुछ बंदूकें, कुछ तलवारें, ढाल, पर्चियां, भाले।
0: रानी, ये आप क्या?
1: महाराज, आपने मुझे अपनी रानी का सम्मान दिया है तो मैं उसी के अनुकूल वो सब कुछ तुरंत आरंभ कर देना चाहती हूँ जो एक रानी के नाते मुझे करना चाहिए। मैं यहाँ स्त्रियों को फौजी प्रशिक्षण दूंगी ताकि वक्त आने पर वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकें।
0: ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
1: शाबाश, हम सबकी अब एक अच्छी खासी घुड़सवार टुकड़ी तैयार हो चुकी है। लेकिन मैं इतने पर भी सब्र नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ तुम्हें तोपे चलाने का भी भरपूर मौका दिया जाए। क्यों गुलाम गौस खां?
2: जो हुक्म रानी साहिबा।
3: इसी बीच रानी ने एक बालक को जन्म दिया। झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। नवजात राजकुमार असमय राजा रानी को रोता बिलखता छोड़ चले गए। रानी ने जल्द ही अपने दुख पर काबू पा लिया, लेकिन राजा जी ये आघात सहन न कर सके, वे बीमार रहने लगे। रानी ने इन हालात में हिम्मत से काम लिया और शासन के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया।
0: रानी, मेरा विचार है अपने ही वंश का कोई बालक गोद ले लिया जाए।
1: जैसी आपकी इच्छा महाराज, शायद विधाता की भी यही मर्जी है, वरना आपका उत्तराधिकारी यूं आकर भी गोद क्यों सूनी कर जाता।
0: तो जिस बालक को तुम उचित समझो गोद लेने के लिए चुन लो। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो ये रस्म पूरी कर ली जाए।
1: जी अच्छा।
0: मैं झांसी का राजा गंगाधर राव आज विधि और विधान के अनुसार अपने पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर राव को अपने दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण करता हूँ और घोषित करता हूँ कि दामोदर राव मेरे बाद इस राजगद्दी के असली वारिस होंगे। दीवान जी।
4: जी महाराज।
0: कंपनी बहादुर को इस बाबत एक खत तुरंत भेजा जाए।
4: जो हुक्म महाराज।
3: गोद लेने की रस्म पूरी होने के कुछ ही दिनों बाद अचानक राजा गंगाधर राव स्वर्ग से धार गए। 18 बरस की कच्ची उम्र में रानी लक्ष्मीबाई पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन संकट की घड़ियों में रानी ने असीम धैर्य और साहस का परिचय दिया। अपने नाबालिग दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी पर बिठाकर रानी ने उसकी संरक्षिका के रूप में शासन की बागडोर संभाल ली। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल डलहौजी ने किसी भी राजा के दत्तक पुत्र को वारिस के रूप में मान्यता न देने की एक अजब सी नीति चला रखी थी।
5: रानी साहिबा, हम लॉर्ड साहब डलहौजी का फरमान लेकर आया है। हम आपको बताना मांगता है कि झांसी का राजगद्दी खाली है।
1: खाली कैसे? इस पर महाराज के वारिस दामोदर राव बैठे।
5: लेकिन उनको गद्दी पर बैठने का इख्तियार नहीं है।
1: क्यों नहीं? वो बाकायदा गोद लिए बेटे हैं, दत्तक पुत्र हैं।
5: नो नो नो, हिज एक्सीलेंसी गोद लिया बेटा को कानूनी वारिस नहीं मानता है।
1: उनके मानने न मानने से क्या होता है? हमारे शास्त्रों में विधान है कि दत्तक पुत्र असल पुत्र की जगह होता है।
5: नो, अगर गवर्नर जनरल नहीं मानता है तो नहीं माना जाएगा, दैट्स ऑल। आज और इसी वक्त से झांसी पर आपका हुकूमत खत्म होता है। झांसी स्टेट कंपनी बहादुर की हुकूमत में शामिल होता है।
1: नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
6: रानी साहिबा, फिरंगी फौजों ने झांसी पर घेरा डाल दिया है और हम इनका मुकाबला करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। मेरी विनती है रानी साहिबा, इस वक्त सब्र से काम ले वरना झांसी बर्बाद हो जाएगी।
1: शायद आप ठीक कहते हैं दीवान जी, ठीक है। आज मेरे देखते देखते जो झांसी हांसते जा रही है, एक ना एक दिन मैं इसे वापस लेकर रहूंगी और वो दिन जल्द ही आएगा।
3: अंग्रेज बेखबर थे और रानी बड़ी होशियारी से अपनी तैयारी में व्यस्त थी। आसपास के इलाकों में घूम घूम कर वो जंगल, पहाड़ों, नदी नालों का युद्ध की दृष्टि से जायजा भी ले रही थी और जनमानस को भी टटोल रही थी। इस दौरान तात्या टोपे, नाना साहब और अन्य क्रांतिकारियों से उसका निरंतर संपर्क कायम था।
7: मनु?
1: हाँ तात्या, मैंने तो अपनी तरफ से काफी तैयारी कर ली है। देसी पलटन की एक बड़ी टुकड़ी मेरा साथ देने तैयार है, लड़कियों की भी एक बड़ी टुकड़ी तैयार है। इसके अलावा फिरंगियों ने जो हमारी फौज भंग की थी, उसके भी ज्यादातर फौजी हमारे साथ हैं।
7: वाह, बहुत अच्छी तैयारी है। मैं भी अवश्य दिल्ली तक घूम घूम कर सबसे मिलता रहा हूँ। रुपया पैसा भी काफी जमा हो चुका है। सन्यासी और फकीरों के वेश में अपने साथी गाँव गाँव, शहर शहर घूमते हुए विद्रोह की अलग जगा रहे हैं। नाना साहब और अजीमुल्ला खां का कई हिंदुस्तानी फौजियों से संपर्क कायम है।
1: दूर दूर तक सबको एकता के सूत्र में बांध रहे हैं।
7: मनु, अहमद शाह की खैरावादी की जोशीली तकरीरों ने मुर्दों में नई जान फूंक डाली है। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। फिरंगी फौजों के हिंदुस्तानी सैनिक बस उस दिन के इंतजार में है कि इशारा पाते ही वो एक साथ फिरंगियों पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे।
1: कोई तारीख तय हुई?
7: बात चल रही है मनु, बस पक्की होते ही खबर पहुंचा दूंगा।
1: तो ठीक है। वैसे शाहगढ़ के बखतबली और बानपुर के मर्दन सिंह मेरे संपर्क में हैं। वो लोग बांदा के नवाब को भी साथ लेने की तैयारी कर चुके हैं। अब बस तुम्हारी तरफ से इशारे की देर है। फिरंगी फौजों ने बानपुर फतेह कर लिया है और अब वो झांसी की तरफ बढ़ रही हैं। तात्या टोपे को संदेश भेजा है कि मदद के लिए फौरन आ जाए। गुलाम गौस खान
2: जी, सरकार,
1: आपकी तोपे तैयार हैं?
2: जी, हर तोप तैयार है। कुछ तोपों की मरम्मत भी पूरी हो चुकी है।
1: ठीक है। सुंदर
8: जी, रानी साहिबा,
1: झांसी के आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ घास नजर आए उसे जला डालो, जहाँ जहाँ घने दरख्त हो उन्हें गिरा दो। मैदानी इलाका इतना उजाड़ हो कि फिरंगी फौजों को न चारा नसीब हो न दरख्तों का साया। रसद मिलने के भी सारे ठिकाने खत्म कर डालो। इस काम पर अलग अलग दिशाओं में अपनी टुकड़ियां फौरन लगा दो। मुंद्रा, मुझे दूरबीन दे। सर हीरोज भारी नाव लश्कर के साथ बढ़ा आ रहा है। गुलाम गौस खां, मेरा इशारा मिलते ही अपनी शानदार घन गर्जन तोप को दाग देना।
2: जी सरकार।
1: दागो। आज इसी वक्त से झांसी आजाद है। मैं दामोदर राव के सरपरस्त की हैसियत से झांसी की गद्दी संभालूंगी। ऐलान किया जाए।
9: हलक खुदा का, मुनक बादशाह का, राज रानी लक्ष्मीबाई का, महा

0: ओह, इसका मतलब हमारा किला पूरी तरह फिरंगियों के लिए खुल चुका है।
1: फिरंगी फौजें किसी वक्त किले में दाखिल हो सकती हैं।
0: तो ठीक है, तुम सब लोग सुरंग के रास्ते किले से बाहर निकल जाओ। मैं तोपखाने के बारूद भंडार में जाकर खुद को खत्म कर लूंगी।
2: नहीं, नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता।
3: जब इसी तरह मरना है तो आप अकेली क्यों रानी साहिबा? हम सभी मरेंगे।
4: हम भी इसी तरह जान दे देंगे, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे।
1: हम सिर्फ कमजोर हुए रानी जी, हारे नहीं है। आपकी छत्र छाया रहे तो हम अभी भी फिरंगियों को खदेड़ सकते हैं। हो सकता है तात्या टोपी हमारी मदद के लिए प्रयत्न कर रहे हो।
0: तो ठीक है, तात्या काल्पी ना आ सके तो क्या हुआ, हम तो काल्पी जा सकते हैं।
2: हाँ।
0: तो चलो काल्पी।
2: रानी लक्ष्मीबाई की।
5: उसी रात मर्दाना भेज में रानी किले की दीवार से हाथी की पीठ पर कूदी, पीठ पर दामोदर राव को बांधा और एक सफेद घोड़े पर सवार होकर काल्पी की ओर चल पड़ी। अंग्रेज लगातार उसका पीछा कर रहे थे, दोनों हाथों से तलवार चलाती, फिरंगियों को मारती काटती रानी लक्ष्मीबाई बिना रुके मीलों दूरी का सफर तय कर काल्पी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही रानी के वफादार घोड़े ने दम तोड़ दिया। रानी ने वहां मौजूद तात्या टोपे, नवाब बांदा, बानपुर और शाहगढ़ के बखतबली व मर्दन सिंह से सलाह ली। नाना साहब की ओर से उनके छोटे भाई राव साहब ने रानी का स्वागत किया। रानी ने यहाँ फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला।
0: बहादुर सिपाहियों, मेरी टुकड़ी का नाम होगा लाल कुर्ती। हीरोज की फौजें किसी भी दम काल्पी पर हमला कर सकती हैं। अपनी फौज में मुझे जाबाज सिपाहियों की जरूरत है। तुम में से जिसे भी मौत का डर हो वो इसी वक्त मेरी फौज से जा सकता है।
6: नहीं, हम मरते दम तक आपकी आज्ञा मानेंगे।
1: हम आपके एक इशारे पर हस्ते हस्ते सर कटा देंगे।
4: हमारा एक ही नारा है, फिरंगियों से लड़ेंगे,
1: मारेंगे या मर जाएंगे।
0: शाबाश।
7: मनु, खबर मिली है कि हीरोज की फौजें काल्पी की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही हैं।
0: मुझे तो अपनी लाल कुर्ती टुकड़ी पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या राव साहब की सारी पलटन मैदान में फिरंगियों से लोहा ले सकेंगी?
7: क्या बताऊं मनु भाई, नाना साहब की गैर मौजूदगी में राव साहब यहाँ की कमान संभाले बैठे हैं।
0: लेकिन वो खुद तो भांग की तरक भी रहते हैं।
7: हाँ, उनके ज्यादातर फौजी और अफसर भी वैसे ही हैं। इसके अलावा जाने कहां कहां के लुटेरे और डकैत भी इनकी फौज में घुस आए हैं।
0: मैंने उनसे कहा था राव साहब, अपनी फौज को थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनाओ।
7: तो क्या जवाब दिया उन्होंने?
0: बस हाँ हूँ कह के टाल गए।
7: वो कुछ नहीं करेंगे, और दोबारा कहोगी तो हो सकता है कि बुरा मान जाएं।
0: पर क्यों?
7: कई बार कोशिश करने के बाद मैंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। बुरा मत मानना, राव साहब को उच्च कुल के होने का घमंड है, लिहाजा मुझ सरीके साधारण हैसियत वाले की बात मानना।

0: और देखते ही देखते सर ह्यूरोज अपनी फौजों के साथ कालपी पर टूट पड़ा। जबरदस्त युद्ध हुआ लेकिन कालपी अंग्रेजों के हाथ आ गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहब और उनके कुछ साथी वहां से दूर एक सुरक्षित स्थान पर ठहरे।
1: कहिए, आप सबकी क्या राय है? इस वक्त तो हम फिरंगियों से मुकाबला करने की हालत में नहीं है।
2: मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत किला चाहिए और वो किला है ग्वालियर।
1: ग्वालियर के सिंधिया महाराज नाबालिग हैं और उनका दीवान फिरंगियों से मिला हुआ है।
2: और फौजी?
1: बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी फौजी हमारा साथ देने को तैयार है। मैं उनसे अरसे से संपर्क में हूँ।
2: तो फिर ठीक है, आप पहले जाकर उन फौजियों को आगाह कीजिए, फिर हम ग्वालियर की तरफ बढ़ेंगे।
1: ठीक है।
0: हवा से बातें करते तात्या टोपे भी आन की मान में ग्वालियर जा पहुंचे और वहां सिंधिया की फौज में विप्लव की चेतना फूंक आए। राव साहब की सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी लाल कुर्ती टुकड़ी के साथ ग्वालियर की ओर कूच किया। सिंधिया के दीवान ने एक टुकड़ी राव साहब की फौज का मुकाबला करने भेजी। हिंदुस्तानी फौजी तो पहले ही फिरंगियों के खिलाफ हथियार उठाने पर आमादा थे। नतीजा यह हुआ कि राव साहब की फौजें ग्वालियर के किले में घुस गईं। नाबालिग सिंधिया को लेकर दीवान आगरा भाग गया।
3: खला खुदा का, मुलुक बादशाह का, हुकुम राव साहब का, महारानी लक्ष्मीबाई की।
4: रानी साहिबा, किले पर तो सिंधिया और फिरंगी का झंडा उतारकर पेशवाई का झंडा फहरा दिया है। सिंधिया महाराज के खजांची अमर सिंह बाठिया ने तो सारा खजाना सौंप दिया है।
5: अपने सब फौजियों को तनख्वाह बांट दी गई है। राव साहब दरबार बुलाकर पेशवाई का राज तिलक भी करवाने वाले हैं।
4: ऐसी धूम, ऐसी रौनक की पूछिए मत। जगह जगह नाच गाने हो रहे हैं,
5: मिठाइयाँ लुटाई जा रही हैं,
4: भांग बूटी की तो बरसात हो रही है।
2: बस यही एक बात है जो मुझे खटक रही है। राज तिलक हो रहा है, खुशी की बात है, थोड़ी धूमधाम भी हो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये भांग बूटी और नाच गाना इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं। फिरंगी इसी वक्त भी इस तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? जिन्हें जो करना है करते रहें, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे। आसपास के पहाड़ी इलाके, घाटियों और मैदानों का जायजा लेंगे।
0: और रानी ने यही किया। तपती दोपहरी और तेज लू के झोंकों में रानी अपने कुछ साथियों के साथ ग्वालियर का भौगोलिक और सामाजिक निरीक्षण करने में जुट गई। और तभी फिरंगी फौजों ने ग्वालियर को घेर लिया। तात्या टोपे अपनी सेना लेकर मुकाबला करने बढ़े, लेकिन फिरंगी फौजों ने उन्हें तितर बितर कर दिया। रानी ने उनमें नई हिम्मत फूंकी और नए सिरे से व्यूह रचना की।
2: तात्या जी, इस समय किले का पूर्वी फाटक सबसे ज्यादा खतरे में है।
1: आप ठीक कहती हैं।
2: तो इस फाटक की रक्षा का भार मुझ पर रहेगा।
6: वो देखो, जनरल स्मिथ ने अपनी फौज के साथ पूर्वी फाटक पर हमला बोल दिया है।
7: और रानी को तो देखो, किस बहादुरी से उसने फिरंगियों को खदेड़ दिया है।
8: देखो, घोड़े पे सवार रानी अपनी तलवार चमकाती फाटक से बाहर निकल आई है।
7: फिरंगियों को गाजर मूली की तरह काट छाट कर फिर फाटक पर जम गई है।
6: सुबह से शाम हो गई, लेकिन रानी ने अपने घोड़े से उतरने का नाम तक नहीं लिया।
7: बिजली की तरह हर मोर्चे को संभाल रही है।
8: थक हार कर जनरल स्मिथ ने पूर्वी फाटक का रुख ही छोड़ दिया।
5: रानी जी, हमारी तोपें ठंडी हो गई हैं,
2: हमारी सारी फौज तितर बितर हो गई है, हम चारों ओर से घिर चुके हैं।
5: हम लोग भी गिनती के ही रह गए हैं, 15-20 फौजी ही बचे हैं।
2: हम फिरंगी फौजों को चीरते हुए दूसरी तरफ मौजूद अपने साथियों से मिल जाएंगे। घोड़ों को एड़ लगाओ, जय भवानी,
9: जय भवानी।
5: रानी जी, फिरंगी पीछे ही आ रहे हैं।
2: मुड़कर मत देखो, मारते काटते आगे बढ़ते चलो।
1: रानी जी, सामने लाला है, उसे पार कर लें, उसे पार कर लें तो फिरंगी हमें छू भी नहीं सकेंगे।
2: पर ये क्या, मेरा घोड़ा तो नाला पार करने के बजाय आसपास चक्कर काट रहा है। ये नया घोड़ा है, तभी अड़ रहा है।
1: रानी जी, जैसे भी वो नाला कूद

0: रही है, प्रेम के पास आते जा रहे हैं।
1: मैं कोशिश करती हूँ रामचंद, लगता है ये घोड़ा साथ नहीं देगा।
0: रानी जी,
1: तुम मेरी चिंता छोड़ो रामचंद्र, तुम्हारे साथ दामोदर राव है, उसे लेकर फौरन निकल जाओ। हाँ, अपनी तलवार से मुझे।
0: नहीं, ये आप क्या कह रही हैं रानी जी?
1: फिरंगी, फिरंगी मेरी देह को छुए, इससे अच्छा है तुम ही मेरे देह का अंत कर दो। अरे मैं कहती हूँ।
2: Look, रानी is there. Come on, boys.
0: रानी जी, संभालिए, वो फिरंगी। सर पर वार कर दिया। हाय आधा माता कट गया, एक आग बाहर निकल आई। रानी जी, दुष्ट फिरंगी ने छाती पर वार कर दिया।
3: जय भवानी।
0: रानी जी, ओ सिर और छाती से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। वार करने वाले दोनों फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया लगता है। रानी जी, बेहोश हो रही है। मैं आता हूँ रानी जी, मैं आ रहा हूँ रानी जी।
1: रामचंद्र राव,
0: मैं आगे रानी जी।
1: अब मैं नहीं बचूंगी।
0: ऐसा ना कहिए रानी जी।
1: देखो फिरंगी मेरी देह को हाथ ना लगा सके। तुम
0: रानी जी आके खोलो। आप निश्चिंत रहे रानी जी, मैं आपको बाबा की कुटिया में ले चलता हूँ रानी। गंगादास बाबा, फिरंगी वहां तक नहीं पहुंच सकते, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ बाबा।
4: कौन? अरे
0: ये रानी जी है बाबा। बाबा, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई।
4: इन्हें भीतर ले चलो बेटा। हाँ हाँ, यहाँ लेटा दो। हाँ बेटी बेटी, मुंह खोलो बेटी, मुंह खोलो। हाँ पियो, पी लो बेटा, गंगा जल है ये, पी लो।
0: रानी जी,
4: आज भवानी से जा मिली है।

आनन फानन में बाबा ने अपनी कुटिया तोड़ डाली। एक तपस्वी की कुटिया की पवित्र लकड़ियों की चिता बनी। रानी की मृत देह को देखते ही देखते आग की लपटों ने भस्म में परिवर्तित कर दिया।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, ये सुनते हैं परिक्रमा। आले माटी आले राज, यानी मेरी मिट्टी मेरा राज। ये जंगल सत्याग्रह का वो पहला नारा है जिसने पूरे जनजातीय आंदोलन को एक दिशा दी, वनवासियों को एहसास दिलाया कि वे सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी के लिए नहीं हैं, वे अपनी आवाज़ उठाकर थोपी गई व्यवस्था का बहिष्कार कर सकते हैं। जल जंगल जमीन के हक की मांग करने वाले इसी जंगल सत्याग्रह पर केंद्रित था नाटक आले माटी आले राज। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के 15वें स्थापना दिवस के मौके पर 4 दिनों की स्थापना रंग महोत्सव की शुरुआत बुधवार को रविंद्र भवन में हुई। पहले दिन कन्हैयालाल कैथवास के निर्देशन में ये नाटक खेला गया। अहम ये था कि ये नाटक सिर्फ जंगल सत्याग्रह की कहानी नहीं कहता, ये कोरकू जनजाति की पूरी संस्कृति को मंच पर लेकर आता है।

मिसेस वर्ल्ड वुमेन नेशन 2026 का खिताब मेरे लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं बल्कि 11 साल लंबे संघर्ष की जीत है। जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे लेकिन सपनों को कभी मरने नहीं दिया, ये कहना है भोपाल की राधिका बसंत जीठा का, जिन्होंने हाल ही में मलेशिया में आयोजित मिसेस वर्ल्ड वुमेन नेशन 2026 का खिताब अपने नाम किया। राधिका ने बताया कि 2013 में बेटी के जन्म के बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसकी परवरिश की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ी। एकल अभिभावक के रूप में 11 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष करते हुए चुनौती का सामना किया लेकिन अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। मिसेस सेंट्रल इंडिया गोल्ड कैटेगरी का पहला खिताब उन्होंने जीता है। राधिका ने मलेशिया में आयोजित प्रतियोगिता में 22 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था

सुकून और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच राहत के दुपल निकालना मुश्किल है। वहीं नीचे से लगातार दूर हो रहे हैं लोग। ऐसे में भोपाल एक उम्मीद बनकर उभरा है। यहाँ हर साल 4 लाख से ज़्यादा पर्यटक पहुँच रहे हैं। ये प्रदेश का अकेला ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा पिकनिक डेस्टिनेशन है, जो नेचर से लेकर कल्चरल से वाकिफ करा रहे हैं। राजधानी में पिकनिक के लिए नेचर बेस्ड जगहों पर जाने का क्रेज लोगों में बढ़ा है। बात हो रही है विश्व पिकनिक डे की, जो आज है। नेचर, एडवेंचर और कल्चर का राजधानी में समागम माना जाता है।

राजधानी में पत्रकारिता विश्वविद्यालय में नवग्रह और नक्षण वाटिका बनेगी, जहां विद्यार्थियों को खगोल विज्ञान, ज्योतिषीय परंपराओं, औषधीय पौधों तथा भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन एक ही जगह पर करने का मौका मिलेगा। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिसर में इसका निर्माण होगा। उच्च शिक्षा को भारतीय ज्ञान परंपरा और वैदिक विज्ञान से जोड़ने ये पहल हुई है।

शहर में 11 स्टेट से आए 80 प्रतिभागियों ने स्किल डेवलपमेंट की सीख दी है। भविष्य की जरूरतों के आधार पर उन तकनीक की जानकारी दी जो रोजगार देने में मददगार बनेंगी। मौका था PSSC IVE कौशल बौद्ध कार्यक्रम का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आयोजन हुआ इस कार्यक्रम का। मास्टर ट्रेनर्स ने प्रशिक्षण कार्यशाला ली गई। वहीं विश्व संगीत दिवस के अवसर पर 19 जून को भोपाल के भारत भवन में ऑल राइट मेला का अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अलियांस फ्रांसिस द भोपाल इंस्टीट्यूट फॉर से इंडिया भारत में फ्रांस दूतावास एवं अलियांस फ्रांसिस इंडिया के जरिए मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजन होगा। इस सांस्कृतिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। पब्लिकेशन का 5वां वार्षिक उत्सव 12 जुलाई को होगा। इस मौके पर राष्ट्रीय सम्मानों की घोषणा हो गई है। इसमें साहित्यकार से जुड़े लोगों को सम्मान मिलेगा। सुरेश पटवा को भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान और डॉक्टर मीनू पांडे को मारन रत्न सम्मान दिया जाएगा। तो ये थे आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: गेल्मर वोसबर्ग एक डच सर्जन और मुगल दरबार की कूटनीति। 17वीं शताब्दी के बंगाल के आर्द्र नदी क्षेत्रों में शक्ति हमेशा औपचारिक संधियों या भव्य दूतावासों के माध्यम से नहीं दिखाई जाती थी। अक्सर ये एक शासक और डॉक्टर के बीच पाई जाती थी। इस अनूठी गतिशीलता के केंद्र में गेल्मर वोसबर्ग थे, जो एक डच सर्जन थे। वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक मीर जुमला के बीच एक कूटनीतिक सेतु बन गए थे। 1660 तक मुगल उत्तराधिकार के युद्ध ने साम्राज्य के पूर्वी सीमांत को उच्च तनाव की स्थिति में छोड़ दिया था। सम्राट औरंगजेब के मामा और एक प्रतिभाशाली उद्यमी सेनापति मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मीर जुमला का राजनैतिक और व्यापारिक प्रभाव इतना अधिक था कि वे अक्सर यूरोपीय कंपनियों पर अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए धन, हथियार और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए दबाव डालते थे। कपड़ा और शोरा के आकर्षक व्यापार को बनाए रखने के लिए बेताब वीओसी को लगा कि वे केवल तटस्थ नहीं रह सकते। जीवित रहने के लिए उन्हें मीर जुमला की सेवा में खुद को शामिल करना ही पड़ा। इस जबरन सहयोग के हिस्से के रूप में मीर जुमला ने वीओसी से विशेषज्ञ कर्मियों को लीज पर लेना शुरू किया, जिनमें जहाज निर्माता, नाविक और सर्जन गेल्मर वोसबर्ग शामिल थे। जहां उनका प्राथमिक कार्य नवाब और उनके आंतरिक घेरे के स्वास्थ्य की देखभाल करना था, वहीं बटविया के डच निदेशकों और ढाका के फैक्ट्री प्रमुखों ने डॉक्टर के लिए कहीं अधिक रणनीति उपयोग देखा। मीर जुमला के साथ निकटता के कारण कंपनी वोसबर्ग को दैनिक कूटनीतिक व्यवहार करने के लिए सबसे उपयोगी व्यक्ति मानती थी। प्रांतीय कूटनीति की दुनिया में जहां विशिष्ट स्थानीय बातचीत अक्सर दिल्ली के शाही फरमानों से अधिक महत्वपूर्ण होती थी, वोसबर्ग एक मुख्य कड़ी थे। जहां ढाका के डच प्रतिनिधि को सप्ताह में एक बार नवाब से मिलने की उम्मीद थी, वहीं वोसबर्ग नवाब के घेरे के भीतर ही रहते थे। वे कंपनी की आंख और कान थे, जो मीर जुमला के मूड को भांपने और चिकित्सा देखभाल के अनौपचारिक क्षणों के दौरान चुपचाप डच हितों की वकालत करने में सक्षम थे। ये व्यवस्था एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थी, जहां वीओसी ने अपनी विशेषज्ञता नौसैनिक शक्ति से लेकर चिकित्सा ज्ञान तक को महत्वपूर्ण बार्गेनिंग चिप्स के रूप में इस्तेमाल किया। वोसबर्ग की सेवा ने कंपनी को उस कठिन दौर में रास्ता खोजने में मदद की, जब मीर जुमला आक्रामक रूप से हिजली द्वीप जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर रहे थे। एक ऐसा सर्जन प्रदान करके जिस पर नवाब भरोसा कर सके, वीओसी ने यह सुनिश्चित किया कि सैन्य समर्थन के लिए दबाव के बावजूद उनका व्यापार चलता रहे। गेल्मर वोसबर्ग की कहानी उस युग के ऐसे प्रविधि को दर्शाती है जहां यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई शक्ति संरचनाओं के साथ तालमेल बैठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये याद दिलाता है कि वैश्विक व्यापार का इतिहास अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक निकटता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के बंगाल में एक सर्जन की कैंची और गवर्नर के तंबू में फुसफुसाए गए कुछ शब्द कभी कभी वैश्विक साम्राज्य के हितों को सुरक्षित करने में युद्ध पोतों के बेड़े जितने ही शक्तिशाली होते थे।

0: वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने पेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि भारत के सपूत सुभाष चंद्र बोस पर स्वामी जी का कितना प्रभाव पड़ा था।
1: राममोहन राय के युग से विभिन्न आंदोलनों के जरिए भारत की मुक्ति कामना धीरे धीरे प्रकट हुई। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वाधीनता के अखंड रूप का आभास रामकृष्ण विवेकानंद के भीतर से झलकता है। फ्रीडम, फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ द सोल, स्वाधीनता ही आत्मा का संगीत है। ये संदेश जब स्वामी जी के हृदय से निकला, तब उन्होंने समग्र देशवासियों को मुग्ध और उन्नत कर दिया। उनकी साधना के द्वारा, आचरण के द्वारा, वचनों और भाषणों के द्वारा ये सत्य प्रकट हुआ।
0: स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य को तरह तरह के बंधनों से मुक्त होकर सही मनुष्य बनने को कहा और दूसरी तरफ सर्वधर्म समन्वय प्रचार के जरिए भारतीय राष्ट्रीयता की आधारशिला स्थापित की। राममोहन राय ने सोचा था कि साकारवाद का खंडन और वेदांत के निराकारवाद की स्थापना के द्वारा वे राष्ट्र को एक सार्वभौमिक नींव पर खड़ा कर सकेंगे। ब्रह्म समाज भी उसी पथ पर अग्रसर हुआ था, परंतु इसके फलस्वरूप हिंदू समाज मानो और भी दूर चला गया।
1: इन्हीं सब बातों का प्रभाव सुभाष के जीवन को एक नई मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। विवेकानंद के बताए हुए रास्ते पर वे चल पड़े और देश सेवा में ही अपने को झोंक दिया।
0: सुभाष बाबू विवेकानंद की बातें लिखते लिखते आत्म विभोर हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है,
2: वे इतने महान, गहन और बहुमुखी थे कि मैं घंटों तक लिखकर भी इन महापुरुष की महिमा के प्रति तनिक भी न्याय नहीं कर सकूंगा। वे विश्व के प्रथम ऐसे सर्वोच्च स्तर के योगी थे जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद भी स्वदेश एवं मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। आज यदि वे जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। जहां तक मेरा ख्याल है, वर्तमान भारत उन्हीं की कृति है।
1: एक अन्य पत्र में उन्होंने विवेकानंद को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था,
2: स्वामी विवेकानंद के प्रति मैं कितना ऋणी हूँ, ये शब्दों में लिखकर भला मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उन्हीं के पुण्य प्रभाव से मेरे जीवन में चेतना का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ था। निवेदिता के समान ही मेरा भी विश्वास है कि रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही अखंड व्यक्ति के दो रूप हैं। आज यदि स्वामी जी जीवित होते तो निश्चय ही वे मेरे गुरु होते, अर्थात मैंने अवश्य ही उनका गुरु के रूप में वर्ण कर लिया होता। अस्तु कहना ना होगा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा रामकृष्ण विवेकानंद का अनन्य अनुगत तथा अनुरागी बना रहूंगा।
1: सुभाष बाबू तब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। 9 जनवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने कोलकाता के हाजरा पार्क में आयोजित एक विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए श्रमिकों से भी आजादी के संग्राम में सहायता करने का अनुरोध किया। किसानों, मजदूरों और नवयुवकों को स्वाधीनता संघर्ष के लिए प्रेरित एवं संगठित करने का उनका ये कार्य ब्रिटिश सरकार की आंखों में खटकता था। 23 जनवरी 1930 को उनके 33वें जन्मदिन पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। 25 दिसंबर को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। तभी कोलकाता नगर निगम का चुनाव हुआ और नेताजी महापौर निर्वाचित हुए।
0: अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद के 69वें जन्म दिवस के अवसर पर 10 जनवरी 1931 ईस्वी की शाम को बेलूड़ मठ के प्रांगण में गंगा तट पर मठ के मुख्य भवन के समक्ष एक आम सभा आयोजित हुई थी। मठ से आमंत्रण पाकर कोलकाता के महापौर के रूप में उस सभा की अध्यक्षता करते हुए सुभाष बाबू ने जो भाषण दिया था उसका सार संक्षेप इस प्रकार है।
2: स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। मेरे समय का छात्र समुदाय स्वामी जी की रचनाओं और व्याख्यानों से जैसा प्रभावित होता था वैसा और किसी से भी नहीं होता था। वे मानो उन छात्रों की आशाओं आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते थे। स्वामी जी का यथार्थ मूल्यांकन करने के लिए उन्हें परमहंस देव के साथ मिलाकर देखना होगा। वर्तमान स्वाधीनता आंदोलन की नींव स्वामी जी की वाणी पर ही आश्रित है। भारतवर्ष को यदि स्वाधीन होना है तो उसमें हिंदुत्व या इस्लाम का प्रभुत्व होने से काम न होगा। उसे राष्ट्रीयता के आदर्श से अनुप्राणित कर विभिन्न संप्रदायों का सम्मिलित निवास स्थान बनाना होगा। रामकृष्ण विवेकानंद की धर्म समन्वय की वाणी भारतवासियों को संपूर्ण हृदय के साथ अपनानी होगी। त्याग और चरित्र गठन, स्वामी जी इन दो तत्वों पर बल देते थे। त्याग के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। भारत में महापुरुषों का अभाव नहीं है। यहाँ ऐसे अनेक प्रतिभावान लोगों का जन्म हुआ है जो अन्य देशों के श्रेष्ठतम व्यक्तियों के समतुल्य हैं। परंतु हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है जनता को जगाने की। इसीलिए तो स्वामी जी ने प्राच्य और पाश्चात्य, धर्म और विज्ञान तथा अतीत एवं वर्तमान के बीच समन्वय साधित किया। वे इसी कारण महान हैं। उनकी शिक्षाओं में हमारे देशवासी अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मप्रतिष्ठा का बोध कर रहे हैं।
1: 6 मई को नेताजी ने पूना के मराठा संवाद पत्र के संपादकीय विभाग के श्री A.R. भट्ट के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने स्वामी जी के विषय में अपने विचार सविस्तार लिपिबद्ध किए थे। उक्त पत्र का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है।
2: स्वामी जी के बारे में लिखते समय मैं आनंद विभोर हुए बिना नहीं रह पाता। उनका व्यक्तित्व समृद्ध, गहन और बहुमुखी था और उनके इसी व्यक्तित्व ने उनके स्वदेशवासियों पर अद्भुत प्रभाव विस्तार किया था। वे अपने त्याग और असंयमित कर्म में अथक, प्रेम में असीम, विद्या बुद्धि में गहन एवं बहुमुखी, भावुकता में अतिरेकी तथा संघर्ष में निर्मम थे और इसके बावजूद वे एक शिशु के समान सरल थे।

0: इसके कुछ समय बाद ही अपनी एक अन्य रचना दलबंदी दूर हूँ में नेताजी ने लिखा,
1: आजकल की आम जनता और विशेषकर युवा समाज में एक प्रकार का ऊंचापन और विलास प्रीता का भाव प्रविष्ट हो रहा है, जबकि आजकल हमारे देश की आर्थिक अवस्था पूर्वापेक्षा सोचनीय हो चुकी है। क्या ये बात सच है? यदि है तो फिर इसका कारण क्या है? हम लोग जब छात्र थे तो उन दिनों छात्र समाज में रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का खूब प्रचार था। आजकल लगता है युवा समाज में उस साहित्य का वैसा प्रचार नहीं रह गया है, बल्कि उसके बदले शायद हल्के फुल्के और बीच बीच में अश्लीलता पूर्ण साहित्य का भी खूब प्रचार होता रहा है। क्या ये सच है? यदि ऐसा ही है तो फिर ये अत्यंत दुख की बात है, क्योंकि मानव समाज जैसे साहित्य से पुष्ट होता है उसकी वैसी ही मनोवृत्ति भी गठित होती है। चरित्र निर्माण की दृष्टि से रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य की अपेक्षा उत्कृष्ट साहित्य की मैं कल्पना तक नहीं कर सकता।
2: 13 जनवरी 1933 को अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था और बंदी अवस्था में ही भारत से निर्वासित किया। इस काल में उन्होंने यूरोप के ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों का दौरा किया। इसी काल में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन स्ट्रगल, भारत का स्वाधीनता संघर्ष लिखा, जिसमें उन्होंने 1920 से 1934 तक के कालखंड का इतिहास प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने विवेकानंद का उल्लेख कर लिखा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका कितना अवदान है।
1: स्वामी जी राष्ट्र में हर प्रकार के स्वस्थ क्रियाकलापों के प्रेरणा स्रोत रहे। उनके लिए धर्म राष्ट्रवाद का प्रेरक था। उन्होंने भारत की नव संतति में अपने अतीत के प्रति गर्व, भविष्य के प्रति विश्वास और स्वयं में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना फूंकने का प्रयत्न किया। यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने कोई राजनीतिक विचार या संदेश नहीं दिया, तथापि हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में आया या जिसने भी उनके लेखों को पढ़ा वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया और स्वतः ही उसमें राजनीतिक चेतना पैदा हो गई। कम से कम जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को वहाँ के आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक माना जा सकता है। यद्यपि उनका देहावसान बहुत जल्दी 1902 ईसा में ही हो गया, लेकिन उनका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद और अधिक बढ़ गया।
0: अप्रैल 1936 ईस्वी को सुभाष बाबू भारत लौटे। मुंबई में अपार जनता उनका स्वागत करने को एकत्र हुई थी, परंतु जलयान से उतरते ही उन्हें सरकारी आदेश के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मुक्त कराने के लिए सरकार पर काफी दबाव पड़ा और प्रायः एक वर्ष बाद 10 मार्च 1937 ईस्वी को वे निःशर्त रिहा कर दिए गए। 5 वर्ष के निर्वासन और कारावास के बाद अब वे पुनः सक्रिय राजनीति में प्रविष्ट हुए। फरवरी 1938 ईस्वी में उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वे अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में कुछ मतभेदों के कारण इस पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
2: इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत के वायसराय ने भारत के भी युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। सुभाष बाबू ने अपने साथियों के साथ युद्ध विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया और 2 जुलाई 1940 ईस्वी के दिन उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इस अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के विरोध में 29 नवंबर से प्रेसिडेंसी जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन आरंभ किया। एक सप्ताह के भीतर ही ब्रिटिश सरकार को उनके नैतिक बल के समक्ष झुक जाना पड़ा और 5 दिसंबर को उन्हें निशर्त छोड़ दिया गया। वे घर लौटकर आ गए, परंतु वहीं पर उन्हें नजरबंद रखा गया। उनके कोलकाता के मकान पर 24 घंटे पुलिस तथा गुप्तचरों का पहरा बना रहता था।
0: 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में ब्रिटिश सेना ने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 1 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान संभालने नेताजी भी सिंगापुर आ पहुंचे।
2: नेताजी के सिंगापुर प्रवास के कुछ संस्मरण स्थानीय रामकृष्ण मिशन के तत्कालीन प्रमुख स्वामी भास्वरानंद जी ने लिपिबद्ध किए थे, जिसमें नेताजी के व्यक्तिगत जीवन में उनके आध्यात्मिक रुझान की किंचित झलक मिल जाती है और ये भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार वे महाभारत के वीर अर्जुन के ही समान एक महान सेनानी के साथ ही साथ एक गंभीर साधक भी थे। स्वामी भास्वरानंद जी ने लिखा है,
3: सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर स्थित एक प्रसाद नुमा भवन को अपना आवास बनाया। उस भवन के द्वार पर सर्वदा सशस्त्र प्रहरी खड़े रहते थे। 1943 ईस्वी की विजयादशमी की रात को सुभाष बाबू ने अपने निवास स्थान से भारतीय स्वाधीनता संघ की मार्फत गाड़ी भेजकर मुझसे अनुरोध किया कि मैं यथाशीघ्र आकर उनसे मिलूं। उस समय रात के 9 बजे थे। मैं गाड़ी में बैठकर उनसे मिलने गया। गाड़ी के द्वार पर पहुंचते ही वहां खड़े सशस्त्र पहरेदारों ने बड़े अदब के साथ ले जाकर नेताजी के निजी सचिव के साथ मेरा परिचय कराया। सचिव मिस्टर हसन मुझे नेताजी से मिलाने ले गए। मेरे पहुंचते ही उन्होंने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धापूर्वक मुझे प्रणाम करके बैठने को कहा और सहकर्मियों को चाय लाने का आदेश दिया। इसी बीच हमारी बातचीत आरंभ हो गई। हमारे सिंगापुर आश्रम के क्रियाकलापों को जानने की उनकी उत्सुकता देखकर मैंने विस्तारपूर्वक उन्हें सारी सूचना दी। फिर चाय के साथ पुनः बातचीत होने लगी। नेताजी ने मुझे बताया कि किस प्रकार कोलकाता से निकलकर वे जापान पहुंचे और मुझे अपनी भावी योजनाओं से अवगत कराया। थोड़ी देर वार्तालाप के बाद मैंने कहा, हमारे मिशन की कार्य प्रणाली से तो आप परिचित हैं ही। मिशन के आदर्श तथा उद्देश्यों को बनाए रखकर हम लोग भी यथासंभव आपके कार्य में सहायता करेंगे, इस विषय पर आप निश्चित रहें। उनके अनुरोध पर मैंने वहीं भोजन किया और आश्रम लौटते लौटते रात के 12 बज गए। उनसे मिलने जाने पर वे कभी बिना भोजन कराए नहीं छोड़ते। उनके स्नेह यत्न पर कोई भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था।
0: युद्ध के कार्य में व्यवस्था के दौरान भी सुभाष का आध्यात्मिक ज्ञान रुझान खत्म नहीं हुआ था। वे बराबर वहां से रामकृष्ण आश्रम में जाते रहते थे।
3: अपने सिंगापुर अवस्थान काल में नेताजी माँ श्री शारदा देवी के जन्मदिन पर आमंत्रित होकर रामकृष्ण मिशन के भवन में आए थे। उस दिन वे मंदिर में जाकर लगभग आधे घंटे तक ध्यानमग्न बैठे रहे। फिर पूजा होने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे। इसी प्रकार 1 घंटा बीत जाने के बाद उन्होंने दुर्गा सप्तशती की एक प्रति के लिए इच्छा व्यक्त की। मेरी अपनी चंडी उन्हें उपहार दिए जाने पर उन्होंने अतीव आनंद व्यक्त किया।
2: उन मुश्किल के दिनों में भी उनका सेवा व्रत बंद नहीं हुआ था।
3: नेताजी हमारे मिशन के कार्यों के एक महान पृष्ठपोषक थे। आश्रम के अनाथालय हेतु अपील जारी करने पर उन्होंने भवन आदि के निर्माण में काफी मदद की थी। निर्माण कार्य के लिए उन्होंने अपने पास से $50,000 दिए तथा और भी $50,000 एकत्र कर दिए थे। फिर उन्होंने स्वयं आकर बाल भवन का उद्घाटन भी कर दिया था। युद्ध काल में कालाबाजारी तथा खाद्य नियंत्रण के फलस्वरूप 300 बच्चों के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था करना हमारे लिए टेढ़ी खीर थी, परंतु अनाथालय के बालक बालिकाओं के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था उन्होंने स्वयं ही कर दी थी। हमारे मिशन के विद्यालय को भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय में परिणत कर दिया गया। हमारे विद्यालय में सैन्य शिक्षक की भी व्यवस्था थी और एक दिन नेताजी हमारे बच्चों का प्रदर्शन देखने भी आए। एक अन्य दिन वे उनके द्वारा आयोजित संगीत सभा में आए। 5वीं बार वे तब आए जब उन्होंने हमारे हॉल में एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में कई जापानी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने जापानी मित्रों को भी मिशन के बारे में अनेक बातों से अवगत कराया।
2: इस संदर्भ में नेताजी के उन दिनों के घनिष्ठ सहयोगी तथा आजाद हिंद सरकार के प्रचार एवं प्रकाशन मंत्री श्री एस ए अय्यर के संस्मरण भी उल्लेखनीय है। अपनी सुप्रसिद्ध नेताजी की जीवनी में वे लिखते हैं,
4: अपने सिंगापुर निवास काल में कई बार रात को भोजन के पश्चात वे अपनी कार भेजकर रामकृष्ण मिशन से वहां के प्रमुख स्वामी जी अथवा उनके सहकारी ब्रह्मचारी कैलासम को बुलवा लेते और उनके साथ करीब 2 घंटे तक आध्यात्मिक चर्चा में बिताकर आधी रात के बाद अपने प्रशासनिक कागजात देखने अपने अध्ययन कक्ष में चले जाते। कभी कभी रात गए गाड़ी चलाकर गुप्त रूप से मिशन में पहुंच जाते और वहां उपासना की रेशमी धोती पहनकर हाथ में माला लिए प्रार्थना गृह में जाकर द्वार बंद कर लेते तथा वहां ध्यान करते हुए कोई 2 घंटे बिता देते। इससे उन्हें जटिल समस्याओं का सामना और उन्हें हल करने में सहायता मिलती थी। अत्यंत आवेग पूर्वक वे ईश्वर से पथ प्रदर्शन के लिए प्रार्थना करते। उनके विकारहीन मुखमंडल, दृढ़ संकल्प चरम पर, शांत आत्मविश्वास तथा सफलता व असफलता में अनासक्ति के पीछे था उनका ये बोध कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें ईश्वर ही मेरा हाथ पकड़कर मार्गदर्शन कर रहे हैं।
0: अय्यर जी से हमें सुभाष के सिंगापुर प्रवास के दिनों की और बातें भी मालूम पड़ती हैं।
4: उनकी साधु

0: उत्तेजना पूर्ण घटनाओं के बीच भी उनके मुखमंडल पर व्यक्त होने वाली प्रशांति का इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत नहीं हो सकता था। वे जनसभा में एक बार भी अपने ईश्वर के बारे में नहीं बोले, क्योंकि वे उन्हीं में निवास कर रहे थे।
1: अपने रंगून प्रवास के दौरान भी सुभाष बाबू ने वहां के रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से अपना आंतरिक संपर्क बनाए रखा। वे प्रायः ही मिशन में जाकर वहां के मंदिर में बैठकर ध्यान किया करते थे। विदा की पूर्व संध्या अर्थात 23 अप्रैल की रात को नेताजी श्री रामकृष्ण के मंदिर में अंतिम बार दर्शन करने गए थे।
2: नेताजी के घनिष्ठ सहयोगी और प्रत्यक्षदर्शी देवनाथ दास से सुनकर नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने इस घटना का निम्न शब्दों में वर्णन किया है।
3: सचमुच ही एक विचित्र और अद्भुत दिन था, आत्मनिवेदन का एक अविस्मरणीय दिन। उनके रंगून त्याग की पूर्व निशा थी, उनके स्वप्न और लक्ष्य का पूरा ढांचा उनकी आंखों के सामने ही चूर्ण विपूर्ण होकर भरा पड़ा था। सामने दिख रहा था अंधकार का अनंत सागर। उस चरम संकट की बेला में, रंगून त्यागने के पूर्व की घड़ी में, नेताजी ने अपनी सामरिक वेशभूषा उतार कर रेशमी वस्त्र धारण कर लिए थे। शुचि शुभ्र निर्विकार योगी एकाकी ही अपने आदर्श पुरुष के प्राण देवता के सेवायतन रामकृष्ण मिशन के मंदिर चले गए। युगश्री की मूर्ति के समक्ष वे शांत तद्गत तन्मय बैठे रहे। स्वयं को जानने की आकांक्षा थी। क्या वे स्वयं को पहचान सके थे? क्या उनके मन में ये बात उठी थी कि मृत्यु ही मरण नहीं है? कौन जाने।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पुलोरन और मैनहट्टन जायफल के लिए हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सौदा। क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे प्रसिद्ध रियल एस्टेट सौदा मैनहट्टन की खरीद वास्तव में इंडोनेशिया के एक छोटे और सुदूर द्वीप पुलोरन से जुड़ा था। आज भले ही मैनहट्टन गगनचुंबी इमारतों का एक वैश्विक जंगल है, लेकिन 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ये केवल एक दलदली बस्ती हुआ करती थी, जिसमें कोई मसाले का उत्पादन भी नहीं होता था। नक्शे पर पुलोरन को खोजने के लिए आपको कमरे के आकार के कागज की जरूरत होगी। ये केवल 2 मील लंबा और आधा मील चौड़ा है। इसके चारों ओर घूमने में मात्र 1 घंटा लगता है और यहाँ ताजे पानी का कोई स्रोत नहीं है। फिर भी ये द्वीप मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस का घर था, जिसे आमतौर पर जायफल के पेड़ के रूप में जाना जाता है। 1603 में जायफल और उसकी बाहरी झिल्ली जावित्री वनस्पति जगत की कीमती वस्तुएं थीं, जिनका उपयोग मांस को सुरक्षित रखने और महंगे स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि बांदा में 10 पाउंड जायफल की कीमत आधे पैसे से भी कम थी, लेकिन यूरोप में इसे 32,000% के चौंका देने वाले मुनाफे पर बेचा गया। जायफल का लालच इतना अधिक था कि राजा जेम्स प्रथम ने अंततः खुद को इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, पुलोवे और पुलोरन का राजा घोषित कर दिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के लिए पुलोरन का महत्व जायफल की एक पौध में निहित था। 1616 में यहाँ के द्वीपवासी, जो कि ओरांग काया नामक प्रधानों द्वारा शासित स्वशासी गणराज्य थे, उन्होंने डच उत्पीड़न से बचने के लिए अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। उन्होंने अंग्रेजों को पुलोरन की पीली मिट्टी में लगा हुआ जायफल का एक पौधा भेंट किया। ये विश्वास का एक बड़ा कार्य था, क्योंकि बांदावासी अपने एकाधिकार की रक्षा के लिए इन पौधों की कड़ी निगरानी करते थे। क्या आप जानते हैं कि इस नन्ही सी पौध ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना स्वरूप बदलने पर मजबूर कर दिया? चूंकि उस समय कंपनी को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसने क्राउन की ओर से द्वीप को स्वीकार किया। इसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल ने एक नया चार्टर जारी किया, जिसने कंपनी को विदेशी क्षेत्रों में किलेबंदी करने और बसने की अनुमति दी। हालांकि डचों के खिलाफ पुलोरन पर कब्जा बनाए रखना एक तनावपूर्ण और महंगा दायित्व था, जिसमें 4 साल की लंबी नाकेबंदी शामिल थी। इन मसालों के द्वीपों को लेकर अंग्रेजों और डचों के बीच प्रतिद्वंद्विता इतनी तीव्र थी कि डचों के अलावा किसी और के साथ व्यापार करना देशद्रोह माना जाता था। अंततः 1667 में 60 वर्षों के दबाव के बाद ब्रिटिश क्राउन ने हिसाब बराबर करने का फैसला किया। ब्रेडा की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पुलोरन के सभी अधिकार डचों को सौंप दिए। बदले में उन्हें उत्तरी अमेरिकी समुद्र तट पर न्यू एम्स्टर्डम नामक एक बस्ती मिली, जिसका नाम उन्होंने तुरंत बदलकर न्यूयॉर्क रख दिया। उस समय डचों को लगा होगा कि उन्होंने अंग्रेजों को ठग लिया है। दुनिया के सबसे मूल्यवान मसाले पर एकाधिकार के बदले मैनहट्टन जैसा बिना मसालों वाला द्वीप देकर। क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया के इस छोटे से द्वीप के बिना बिग एप्पल का इतिहास डच भाषा में लिखा गया होता? भले ही बाद में पुलोरन उपेक्षित हो गया और इसके पेड़ काट दिए गए, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के जन्म में मैनहट्टन की तुलना में पुलोरन के इस छोटे से जायफल की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इंडोनेशिया के उस छोटे से पौधे के बिना आज न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों पर शायद अभी भी डच झंडा फहरा रहा होता। ये एक याद दिलाता है कि ऑनरेबल ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा इंडिया से अधिक ईस्ट के बारे में थी।
2: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अजय सिंह टिपानिया का गायन, उसके बाद क्लेरनेट वादन की प्रस्तुति दी जाएगी डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी और साथियों द्वारा, और अंत में गायन प्रस्तुत किया जाएगा आरती अंकलीकर टिकेकर का। तो आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं अजय सिंह टिपानिया का गायन।

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं,

सब आप लोगों की एक मोहब्बत से हम बजाए, आप लोग प्यार से सुन रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ा क्रिएशन हो गया। अभी नेक्स्ट एक धुन बजाएंगे पीलू का मध्यलय में।

0: अभी आप डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी तथा साथी बेंगलोर द्वारा क्लेरिनेट वादन का आनंद ले रहे थे।
1: आइए आज की सभा के दूसरे क्षण में हम कुछ ही क्षणों बाद आनंद लें। कबीर गायन की एक और शैली का और हमारे बीच कुछ ही क्षणों में मंच पर हाजिर होंगी विश्वख्याति प्राप्त शास्त्रीय गायिका सुश्री आरती अंकलीकर टिकेकर।

तो श्रोताओं, अजय सिंह टिपानिया के गायन के बाद अब बारी है क्लेरनेट वादन की, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर पंडित नरसिम्हा वड़ावाटी और उनके साथ साथी कलाकार।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत इस कार्यक्रम से। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, रिटायरमेंट नौकरी की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार सरकारी गीता के अनुसार जो नौकरी में भर्ती हुआ है तो उसका रिटायरमेंट भी निश्चित है। अब अगर मुलाजिम रिटायर होगा तो दो बातें होंगी, या तो उसे पेंशन की पात्रता होगी या नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हुई तो इसे पाने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने होंगे यह तो वे रिटायर होने के बाद ही जान पाएगा। यहां तक कि पेंशन चालू रहने के दौरान भी उसे बार बार अपने जिंदा होने का सबूत पेश करना पड़ेगा। जीते जागते आदमी से पूछा जाएगा कि साबित करो कि तुम जिंदा हो। और यह बात अलग है कि परलोकवासी का भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट हो तो उसकी पेंशन नहीं रुकेगी। आज का हमारा नाटक इसी थीम पर आधारित है, पेंशन की टेंशन।

0: भाई साहब, ये पेंशन तो आपको नहीं मिल सकती।
1: नहीं मिल सकती? क्यों?
0: आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा।
1: जिंदा होने का सबूत? अरे आपके सामने वन पीस में खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी पेंशन मांग रहा हूँ, क्या इतना काफी नहीं है?
0: जी नहीं, वन पीस में तो क्या, अगर आप थ्री पीस में भी होते ना तो भी चलता, बशर्ते कोई सबूत होता आपके पास अपने जिंदा होने का।
1: तो आप ही बता दीजिए ना कि कैसे साबित करूं कि मैं जिंदा हूं।
0: कोई लेटेस्ट डॉक्यूमेंट दे दीजिए जो इस बात को साबित करे कि आप जिंदा।
1: जैसे?
0: जैसे जैसे हाँ, किसी अस्पताल का कोई पर्चा जिसमें आपका नाम लिखा हो।
1: अस्पताल का पर्चा होगा तो जरूर, मगर घर पर ढूंढना पड़ेगा उसे।
0: तो ढूंढिए ना, जाइए, जाकर ले आइए। अगर पेंशन चाहिए तो ये तुच्छ पीड़ा तो आपको सहन करनी ही होगी।
1: मगर है वो 1.5 साल पुराना, चलेगा?
0: अजीब इंसान है आप। अरे 1.5 साल पुराना दस्तावेज चलता तो 3 महीने पहले के आपके सिग्नेचर ना चल जाते। जाने कैसे भर्ती हो गए थे सरकारी नौकरी में, इतना भी नहीं समझते।
1: अजीब आदमी है जी आप, एक सीनियर सिटीजन से बात करने की भी तमीज नहीं है आपको? सीट पर क्या बैठ गए, खुद को खुदा समझने लगे आप?
0: ओ भाई साहब, पेंशन लेने आए हैं तो पेंशन की टेंशन लीजिए, मुझे तमीज की कमीज ना पहनाइए। अब सीनियर सिटीजन हैं आप तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या साष्टांग दंडवत करूं आपको?
1: साष्टांग दंडवत करेंगे ये? अरे दो शब्द सभ्यता से तो बोल नहीं सकते। ये नहीं सोचते कि 4 दिन बाद इन्हें भी रिटायर होना है।
0: ओ बड़ो बाबा, भुनर भुनर मत करो, जो कहना है साफ साफ कहो, समझे?
1: नहीं नहीं श्रीमान जी, मेरा तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय हो जिससे मुझ गरीब का कुछ काम चल जाए तो कृपा करके हमें बताएं।
0: ये हुई ना सही बात। अरे उपाय एक तो क्या हजार हैं, एक 4 अंगुल का कागज ही तो चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा हो और कोई ताजी तारीख पड़ी हो। अच्छा आप ये बताइए कि राशन कार्ड पर राशन लिया है आपने हाल में?
1: नहीं भैया, मैं तो कंट्रोल का राशन लेता ही नहीं हूँ।
0: अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, राशन लेते नहीं? अरे कोई तो ऐसी हरकत हो आपकी जो जिंदा लोग करते हैं, आखिर कैसे साबित हो कि आप जिंदा हैं? अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि बैंक से कोई विड्रॉल किया है आपने हाल में?
1: अरे कैसी बात करते हैं भाई आप, अरे बैंक से विड्रॉल करना होता तो पेंशन ही ना निकाल लेता।
0: बात तो सही है आपकी भाई साहब, फिर तो आप मुझे माफी कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। रूल यानी रूल, मैं उस आदमी को पेंशन नहीं दे सकता जिसके जिंदा होने की कोई गारंटी नहीं।
1: फिर वही बात, अरे कागज कहिए जनाब, कागज। आपको जिंदा होने का कागज चाहिए? मेरे जिंदा होने की गारंटी तो मैं खुद हूं। अरे मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है कि जो आदमी सांस ले रहा है, जिसके दिल की धड़कन चल रही है, जिसका दिमाग काम कर रहा है, वो जिंदा है।
0: तो जाकर ले आइए इस बात का सबूत उससे।
1: किससे?
0: मेडिकल साइंस से। जाइए किसी अस्पताल से एक सर्टिफिकेट ले आइए कि आपकी सांस चल रही है, आपका दिल धड़क रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है। मेडिकल ऑफिसर के सील सिग्नेचर करवा लीजिए। गॉड प्रॉमिस, 5 मिनट के अंदर आपकी पेंशन दे दूंगा।
1: हंसी खेल है क्या? क्या है? अरे वो डॉक्टर मुझे पागल समझेगा जिससे मैं कहूंगा कि ये सब बातें मुझे सर्टिफाई करके दो।
0: तो ठीक है, फिर पागल खाने से ही लिखवा लाइए आप। अरे कुछ तो खिलाकर कागज का पेट भरिए।
1: क्या भाई साहब, अरे यार मेरी पेंशन अटकी हुई है और आपको दिल लगी सोच रही है।
0: अच्छा छोड़िए, ये बताइए।

0: इसमें क्या गलत किया मैंने? अरे गांधी जी भी तो थर्ड क्लास में ही चला करते थे। आम आदमी हूँ, आम जनता के साथ सफर करता हूँ, ये कोई गुनाह तो नहीं है?
1: हाँ गुनाह तो नहीं, मगर पेंशन भी नहीं मिल सकती इसके बिना आपको।
0: काय सता रहे पेंशन बाबू इस बुड्ढे को? अरे पेंशन नहीं मिलेगी तो मैं खाऊंगा क्या?
1: खाना जिंदा आदमी खाता है बाबा, मरा आदमी नहीं।
0: यही बात तो आपको समझनी है भैया, जब मैं खाना खाने की चिंता कर रहा हूँ तो मैं जिंदा ही होऊंगा, मरा आदमी थोड़े ही खाने की फिक्र करता है।
1: मेरे समझने से तो काम नहीं चलेगा ना बाबा, मुझे तो कागज चाहिए रिकॉर्ड में लगाने के लिए। अच्छा चलिए ये तो बताइए कि अभी म्युनिसिपल इलेक्शन में आपने वोट तो डाला ही होगा ना?
0: कैसे डालता भैया, बताया तो कि मैं यहाँ नहीं था यार, तीरथ पर गया हुआ था।
1: तीरथ पर गया था तो जाइए भगवान से ही लिखवा लाइए कि आप तीरथ पर गए थे, मान लूंगा मैं।
0: काहे मजबूर की हंसी उड़ा रहे हो भैया, कहीं भगवान भी लिखा पढ़ी करते?
1: जानता हूँ भगवान लिखा पढ़ी नहीं करते, मगर उनके एजेंट तो करते हैं। अरे पंडे पुरोहित की यहाँ हाजिरी लगाई होगी आपने तीर्थ यात्रा के दौरान, उनके बही खाते में नाम लिखवाया होगा, उनकी बही की ही सर्टिफाइड कॉपी ले आइए, हम उसी से मान लेंगे कि आप जिंदा हैं अभी।
0: अरे यार लेकिन मैंने तो सारा काम डायरेक्ट किया है, भगवान के एजेंटों से तो दूर ही रहा हूँ मैं।
1: एक काम कीजिए फिर, पेंशन भी डायरेक्ट सरकार से ही ले लीजिए।
0: अरे यार
1: काहे बीच में मुझ कर्मचारी की जान ले रहे हैं आप, हैं? पता चला आपको पेंशन देने के चक्कर में मेरी पेंशन बंद हो गई है? अरे ये नहीं वो नहीं, धरती पर कोई जिंदा इंसान ऐसा होता है कि एक आध महीने में कहीं किसी कागज पर उसका नाम ही ना लिखा जाए?
0: अरे भाई क्यों भरमा रहे हो यार मुझे, पेंशन के बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा यार?
1: देखिए सीनियर सिटीजन जी, देखिए मैं ठहरा सरकारी आदमी, कायदे कानून के हिसाब से चलता हूँ। माना कि मुझे आपसे हमदर्दी है, मगर मुझे भी तो अपनी नौकरी प्यारी है। अरे इतने दिनों में आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो जिंदा लोग करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे कुछ नहीं तो किसी से मारपीट ही कर लिए होते, एक आध रात हवालात में काटे होते, कम से कम थाने से ही कोई रिकॉर्ड मिल जाता।
0: अरे काय मेरी भद्द बना रहे हो भैया, 65 साल का ये आदमी आपको मारपीट करने वाला दिखता है। अरे जवानी में भी कभी नहीं की ऐसी हरकत हमने, और आप कहते हो कि इस बुढ़ापे में
1: फिर तो भाई साहब आप मेरा पीछा छोड़ दो, अकेले आपका ही काम नहीं करना है मुझे? चलिए हटिए, मुझे दूसरों का काम करना है, चलिए हटिए।
0: मगर मैं अपनी पेंशन लिए बगैर नहीं जाऊंगा आज, कह देता हूँ आपसे, चाहे इसके लिए मुझे।
1: अच्छा, वाह, बुढ़ापे में ये जोश, क्या करेंगे आप? चलिए नहीं देता आपकी पेंशन, जो करते बने कर लीजिए।
0: ओ साहब इस बुड्ढे के सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए।
1: अरे जाइए जनाब जाइए, किसी और को आंखें दिखलाइए, अपन नहीं डरने वाले इन लाल लाल आंखों से। हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, च्यवनप्राश खाया करो, ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जाता और डरा रहे ऐसे। चल फुट, बात सुन ली तेरी बड़बड़, चल फुट फुट फुट।
0: फूटने को बोलता है पेंशन नहीं देता तो ले।
1: लाठी से कमर तोड़ दी मेरी, अरे राम कोई है, अरे पुलिस को बुलाओ पुलिस।
2: भगवान ना करे किसी को डॉक्टर वकील या पुलिस के पास जाना पड़े। इन तीनों जगहों पर इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, लेकिन एक बार अगर पहुंच गया तो पीछा छुड़ाना जरूर मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे इन दोनों पात्रों के साथ भी।
1: दरोगा जी देखिए, इस बुड्ढे ने जबरदस्ती मुझसे पेंशन लेने की कोशिश की। मैंने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट ले आओ, तो बोला नहीं लाऊंगा, जो करते बने कर लो। मैंने रोका तो गालियां देने लगा, देखिए डंडा खींच कर मारा मुझे, अरे गिरफ्तार कर लीजिए, बहुत खतरनाक बुड्ढा है।
0: अरे कोई गाली वाली नहीं दी है दरोगा साहब, हाँ छड़ी जरूर उठाई है इस पर, वो भी इसलिए कि इसने पेंशन देने से मना कर दिया था। कहने लगा जिंदा होने का सबूत लेके आओ। मैंने कहा तुम्हारे सामने अच्छा भला खड़ा हूँ, क्या इतना सबूत काफी नहीं है? तो बोला मैं नहीं मानता इस सबूत को। तो ठीक है, जब मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो मैंने कोई जुर्म भी कैसे किया है? किस कानून में लिखा है कि मुर्दे को गिरफ्तार करो? जाइए पहले ये साबित कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, फिर गिरफ्तार करिएगा मुझे।
1: सुन रहे हैं दरोगा जी, आप आपके सामने खड़ा होकर बकर बकर कर रहा है, आपसे बहस कर रहा है दरोगा जी, आपको कानून सिखा रहा है और कह रहा है कि पहले ये साबित कीजिए कि ये जिंदा है।
3: चुप, एकदम चुप। तुम दोनों ने मेरा दिमाग गरम कर दिया। अरे ऐसा टिपिकल केस मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और तो मैं सीनियर सिटीजन, ये सरकारी आदमी के काम में बाधा पहुंचाते हो, गाली बकते हो, मारपीट करते हो। आईपीसी की धारा 294, 332, 33, 34, 353 की धाराएं जब लगाऊंगा ना तुम्हारे ऊपर, तो सारी जवानी ठंडी हो जाएगी तुम्हारी।
0: अरे ऐसे कैसे लगाएंगे जी, पहले साबित तो कीजिए कि मैं जिंदा हूँ, हैं? कि कोर्ट में बताएंगे कि दयाराम नाम के भूत ने ये सब किया है जी।
3: ये तुम साबित करना है कि तुम जिंदा नहीं हो। अरे भूत प्रेत पिशाच हो क्या हो, मैं तो तुम्हें जिंदा मानकर तुम्हारी चार्जशीट भर दूंगा, दैट्स इट।
0: अच्छा ऐसे कैसे दैट्स इट? थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ, जुर्म साबित करना पुलिस का काम है, ना कि मुलजिम का, कि वो खुद को बेगुनाह साबित करे। आप साबित कीजिए कि मैं गुनाहगार हूँ, मगर इसके पहले आपको मुझे जिंदा तो साबित करना पड़ेगा।
1: इस बुड्ढे की बातचीत में मत आइए दरोगा जी, मैं कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ कि इसने मुझे गाली दी और मारा। अरे गाली गलौच और मारपीट कोई जिंदा इंसान ही कर सकता है, ना कि कोई मुर्दा। मैं गवाह हूं कि ये जिंदा है, आप पकड़ लीजिए इसको।
0: वाह वाह वाह वाह, सुना आपने दरोगा जी, ये पेंशन बाबू मुझे जिंदा मान रहा है, मगर इसके बाद भी पेंशन देने को तैयार नहीं है। कहता है कि साबित करो कि मैं जिंदा हूँ। अरे गिरफ्तार तो इसे कीजिए, एक सीनियर सिटीजन को प्रताड़ित करने के जुर्म में, दुर्व्यवहार करने के जुर्म में, गाली गलौज करने के जुर्म में, धक्का देकर पब्लिक प्लेस से बाहर निकालने के जुर्म में, इसे तो जिंदा भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में हाजिरी लगाई होगी इसने, है ना, इतना ही काफी है।
3: हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? मुर्दा जिंदा है, लेकिन जो जिंदा है वो जिंदा नहीं।
0: वही तो, जो जिंदा है उसे जिंदा होने का सबूत पेश करने को कहा जा रहा है, ये देखिए आप। लेकिन लॉकअप में डालने के लिए जिंदा होना जरूरी नहीं है, अंधेर गर्दी मचा रखी है, हैं?
3: बस बस, अब मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, और अब किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। दोनों पार्टियों के खिलाफ केस बनाऊंगा, और ज्यादा बड़बड़ की तो पुलिस ऑफिसर को ऑन ड्यूटी मेंटल टॉर्चर देने का एक कस और बनाऊंगा। सब लड़ाई झगड़ा भूल जाओगे, चलो थाने तुम दोनों, चलो।
1: अरे मुझे छोड़ दीजिए दरोगा जी, छोड़ दीजिए। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, इस बुड्ढे का क्या, मजे से सरकारी ने मेहमानी करेगा, मगर मैं तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ।
0: हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, अब तो मैं भी अंदर और तू भी अंदर, ना मुझे पेंशन की जरूरत और ना तुझे तनख्वाह की जरूरत। सरकारी खाना, सरकारी रहना, सरकारी इलाज, चारों ओर कमांडो। अब तो ऐसी ऐसे
1: क्या बक रहा है बुड्ढे तू, हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे जेल जा रहे हैं हम दोनों, जेल का मतलब जानता भी है तू?
0: नहीं जानता तो जान जाऊंगा, अरे ये तो अपनी जेल है, अपनी, भारत सरकार की। गांधी जी तो अंग्रेजों की जेल में रहे थे, हैं? वो भी सत्य के लिए गए थे, और मैं भी सत्य के लिए ही जा रहा हूँ, बढ़िया है।
1: अरे ये बात बात में तू गांधी जी को क्यों बीच में ले आता है भाई, आपस का मामला है, मिलकर निपटा लेते हैं। चल भाई मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता हूँ, अब तो खुश।
3: ओए क्या फालतू समझ रखा है पुलिस को? जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट कर दी और जब मर्जी हुई तो कंप्लेंट वापस। पुलिस तो जैसे तुम्हारे बाप की नौकर है, जैसे चाहो वैसे नचाओ, कोई कंप्लेंट वम्प्लेंट वापस नहीं होगी। 24 घंटे हवालात में रहोगे, इसके बाद तुम दोनों को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो कुछ बोलना है वहीं जाके बोलना।
1: अरे आप भी तो कुछ बोलिए अंकल जी, अपनी तो वाट लग जाएगी।
0: अंकल जी, अरे वाह वाह अंकल जी, अरे वक्त ये बुड्ढा अब अंकल जी हो गया। अरे बात तो तेरी लगेगी पेंशन बाबू, नहीं अपने राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे घर में रहे चाहे जेल में, दो वक्त की रोटी कपड़े से मतलब है। ना आगे कोई रोने वाला है ना पीछे।
1: हे राम, कहाँ फंस गया रे, हमें छोड़ दीजिए दरोगा जी, दरोगा जी हमें छोड़ दीजिए, हम अपना मामला आपस में ही सुलटा लेंगे। देखिए देखिए मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे आप भी तो नौकरी वाले हैं, कुछ तो ख्याल कीजिए।
0: बहुत खूब बहुत खूब। अरे मैं भी तो कभी नौकरी वाला था और कल मेरी तरह तुम भी पेंशनर बनोगे, ये सब नहीं सोचा, पेंशन देने से मना कर दिया, बोला बाहर निकलो, ये नहीं सोचा कि पेंशन के बिना ये बुड्ढा खाएगा क्या।
1: अरे अब जाने भी दो भाई साहब, भाई साहब गुस्सा गुस्सा जो है ना, थूक दो एकदम, थूक दो आप तो। अरे दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, अरे सुनिए तो, दयाराम जी जो है ना मान गए हैं, अब तो हमें छोड़ दीजिए।
3: देखो भाई ये थाने का मामला है, कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी ही होगी, अब नहीं तो कल तुम ही लोग शिकायत करोगे मेरे खिलाफ कि पुलिस बेकसूर को पकड़ ले गई थी।
1: अरे नहीं दरोगा जी, हम वादा करते हैं हम कोई शिकायत विकायत नहीं करेंगे। अरे मैं तो याद भी नहीं रखूंगा कि मैं कभी थाने गया था, मेरा भरोसा कीजिए।
3: थाने में आने के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं, और मगर छूटने के बाद SP DSP से लेकर DGP तक को शिकायत करते हैं। ना भाई ना, देखो तुम्हारी नौकरी की मैं उतनी ही हिफाजत कर सकता हूँ जितने में हमारी नौकरी खतरे में ना आए, तो 107-16 तो मुझे लगानी पड़ेगी दादा।
1: है 107-16? ये तो बहुत ज्यादा है। अरे जरा इकाई दहाई में सही कोई धारा लगा दिए ना, आप तो पूरे सैकड़े में पहुंच गए डायरेक्ट।
3: अबे तो धारा क्या, तुम्हारे बाप की डायरी में लिखी है, जो जैसे चाहे काट छांट कर लो, और ज्यादा बड़बड़ की तो 151 और लगा दूंगा, प्रेस DM कोर्ट से जमानत करवाना।
1: देखिए मुझे ये पुलिसिया भाषा समझ में नहीं आती साहब, आप तो किसी तरह मेरी नौकरी बचा लीजिए।
3: इसीलिए तो कह रहा हूँ पेंशन बाबू के ज्यादा पकाओ मत मुझे, सबसे नरम वाली धारा है 107-16, इसमें कोई जेलवेल भी नहीं होती है, ये तो एक बांड भर है कि इसमें आगे तुम दोनों कोई झगड़ा नहीं करोगे, और अगर किया तो बांड कैंसिल और तुम दोनों जेल।
0: अच्छा तो है मेरे लिए, फिर तो हमें इसकी नकल भी मिल जाएगी और ये साबित हो जाएगा कि मैं जिंदा हूँ, आने का पक्का कागज, फिर तो पेंशन देने में कोई एतराज नहीं होगा ना बाबू साहब।
1: अरे माफ करो अंकल, मैं तो ऐसे ही मान रहा हूँ कि आप जिंदा हो। अरे काहे कि 107 और 207 करवा रहे हो मेरा। अजी माफ कर दो।
2: तो श्रोताओं ये था आज का नाटक पेंशन की टेंशन। आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने। भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जेमनी, आलोक चटर्जी और आदित्य शर्मा। सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। ध्वनांकन अमित कुंदानी। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम भारत भारती में सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी सुनिएगा, जिसे पेश कर रहे हैं अब्दुल हमीद लतीफ और जावेद लतीफ खां, और इसके बाद प्रस्तुति होगी सुगंध देवी गंधर्व के गायन की। तो सबसे पहले पेश है सारंगी और वायलिन वादन की जुगलबंदी, जिसे पेश कर रहे हैं अब्दुल हमीद लतीफ और जावेद लतीफ खां।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारा हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओ यार, ये जूते कहाँ रख दिए? ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे का। अरे सुनती हो का? क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
3: सुनिए जी, टिफिन। अरे सुन रहे हैं? हाँ? आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूँ।
2: क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
3: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकूपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटते ही नहीं।
4: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए, लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ। पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
3: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
3: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
3: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
3: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं। अब कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माय फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांध कर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं?
3: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा, मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
3: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
5: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है, पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीनने ना जाऊ ना तो लकड़ी भी ना मिले। एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर। अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे हैं।
3: अरे सुनिए साहब, अरे सुनिए तो, टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या?
5: साहब नाराज हो गए क्या भाई साहब?
3: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
5: भाई साहब नाश्ता तो कर लूंगी, पर आज है ना वो है ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
3: अच्छा बनाती हूँ।
5: हाँ हाँ तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
3: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता। देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी। तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
5: मालूम है भाई साहब। रो मत रो नको। मालूम है मेरे को सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
3: मैं क्या कर लूं। सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस। अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना। मैं ही जाती हूँ।
5: रो
3: हो गई ना तेरी चाय। अब जा बाकी काम कर।
5: हाँ,
3: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
5: हाँ,

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
2: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
3: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया है।
1: क्या?
3: हाँ, बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
2: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
3: हाँ बोलो।
2: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें।
3: हाँ।
2: सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
3: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहन साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
2: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
3: बिल्कुल।
2: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
3: हाँ।
2: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर हाँ। आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे। हाँ। हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
2: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
3: वाह वाह, संकट
2: सोलर कुकर देव की जय।
3: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
2: माफ करना जी,
3: क्या
2: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल, ये सोलर कुकर में डाला है ना। और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
3: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अर्थपका ये भर दो तुम टिफिन में यार, पेट की आग से ही पक जाएगा आप तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
2: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे तो मैं क्या कर लूं?
3: क्या करूं?
2: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
3: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
2: हटो जी,
3: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल तुम उठा लाओ उसे, लाओ जल्दी लाओ, लाओ तो।
2: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
3: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ? अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
2: सच
3: लाओ, लाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ,
2: ये लीजिए।
3: हाँ,
2: ये
3: हाँ,
2: बताइए अब क्या करूं इस कच्चे पक्के खाने का।
3: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
2: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
3: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, है? आधा गैस।
2: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश मतलब दिनेश।
3: हाँ, मतलब हम दिनेश।
4: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम

0: वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट नष्ट।
1: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
0: वाह, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
1: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
0: हैं?
1: जान ही दे देते हैं ना माँ बाप अपनी, है?
0: अरे
1: न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म। अब
0: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
1: क्या
0: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
1: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद,
0: हा?
1: मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
0: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, गरीबी में आटा गीला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
1: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, हैं? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
0: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है। कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए?
1: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में। अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे। बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
0: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है।
1: क्या
0: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
1: अच्छा
0: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
1: क्या
0: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा।
1: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा, आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे?

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? हाँ। सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भैये?
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ।
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ।
1: अरे भैया, जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी,
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कि कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ। और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था, बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं। लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूं भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ। यार मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहां से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह।
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो धांस हुए। चल जाए तो सुपर हिट। कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या?
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं? सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा। देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: जलाओ।
3: चल गया, जल जल चल गया। ये देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।

0: सिलेंडर ही आ जाएगा।
1: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
1: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए भाई। खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है।
1: चिंता ना करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
1: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी।
1: साल भर
0: है?
1: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही है। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो। पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा? 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
1: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी। गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
1: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
1: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई, कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
1: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
1: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी। अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
1: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये, जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे?
1: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
1: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
1: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
1: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
1: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
1: अरे

0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है, चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए
1: बुकलेट?
0: जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
1: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बोलो।
1: लिखा है
0: हाँ
1: हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो। हाँ पढ़ो
1: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स।
0: जी।
1: नंबर एक,
0: हाँ
1: गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें।
0: जी।
1: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी। अरे
0: जी
1: वाह, ये तो बहुत अच्छा
0: हाँ
1: आइडिया है।
0: हाँ हाँ
1: अच्छा, नंबर दो,
0: हाँ
1: सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
1: वाह।
0: हाँ आगे बढ़ो।
1: नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं। ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की जरूरत। ज्यादा गैस, अरे बाप रे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आंच धीमी कर दो। सिंपल। ओके, एक और है।
0: हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
1: दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखें।
0: हाँ अब मुझे दो, मैं आगे में पढ़ रहा हूँ, मुझे दो।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: लाओ
1: चलो
0: लाओ
1: पढ़ो पढ़ो
0: लाओ।
1: पढ़ो। हाँ, सिक्स्थ वाला।
0: जहां तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें,
1: अच्छा,
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी वह एक जैसी ना हो।
1: अच्छा,
0: समझी
1: हाँ
0: है।
1: हाँ
0: अच्छी लौ की

0: रोटी भी आधी हो जाए।
1: नहीं नहीं,
0: हाँ आगे चलकर कौन भरोसा है कि रोटी भी आधी हो जाए।
1: नहीं नहीं,
0: मेहमानों को आने से पहले सैंक्शन लेनी पड़े,
1: क्या?
0: संख्या बतानी पड़े कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिन बाद जाएंगे, पहले वीजा लें फिर टेक ऑफ करें, नहीं तो घर में लैंड करने की

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 147वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं अग्नि, छंद है त्रिष्टुप।
4: कथा ते अग्ने शुचयंत आयोर ददाशुर वाजे भिरा शुषाणाः उभे यत्तो के तनये दधाना रितस्य सामान्रणयंत देवाः। हे अग्निदेव, यज्ञ द्वारा वायुमंडल का शोधन करने वाली, सर्वत्र प्रकाश बिखेरने वाली आपकी ज्वालाएं किस प्रकार पोषक अन्नों के द्वारा जीवन तत्व प्रदान करती हैं। बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठ महिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः पीयति त्वो अनुत्वो गृणाति वंदा रुस्ते तन्वम वंदे अग्ने। उत्तम तरुण रूप वैभव संपन्न हे अग्निदेव, आप हमारे महिमा युक्त बार बार किए गए निवेदन को स्वीकार करें। कोई आपके निंदक हैं तो कोई प्रशंसा करने वाले हैं, लेकिन हम स्तोता स्वभाव से युक्त आपकी प्रज्वलित ज्योति की वंदना ही करते हैं। ये पायवो मामतेयम् ते अग्ने पश्यन्तो अंधम दुरितादरक्षन् ररक्ष तान् सुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह देभुः। हे अग्निदेव, आपकी जिन प्रख्यात संरक्षक किरणों ने ममता के पुत्र के अंधेपन को दूर किया, ज्ञान से संपन्न लोकहित के कार्यों को करने वाले को आपने संरक्षण प्रदान किया, लेकिन अहंकारी दुष्कर्मी आपको प्रभावित न कर सके। यो नो अग्ने अररिवाम अघायुर रातीवा मर्चयति द्वयेन मंत्रो गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट तन्वम दुरुक्तैः। हे अग्निदेव, जो दुष्ट कर्मों में लिप्त पापी जन हमें सार्थक दान देने में बाधा पहुंचा रहे हैं, जो स्वयं भी यज्ञीय कर्मों में सहयोग नहीं करते तथा छल पूर्ण चालों से हमें भी परेशान करते हैं, उनकी वे छल रूपी समस्त योजनाएं उनके स्वयं के ही विनाश का कारण बने। दूसरों के लिए कटु वचन बोलने वालों के शरीर क्षीण हो जाएं। उत वायह सहस्य प्रविद्वान मर्तो मर्तम मर्चयति द्वयेन अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने मार्किनो दुरिताय धायीहि। शक्ति के पुत्र हे अग्निदेव, जो मनुष्य छल कपट पूर्ण व्यवहार से हमें कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, उनसे हम उपासकों को बचाएं। हे स्तुत्य अग्निदेव, हमें दुष्कर्म रूपी पापों की दुखाग्नि में जलने से बचाएं।
3: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 147वें सूक्त से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मूर्खों का संग न करना, विद्वानों का संग करना और पूजनीय पुरुषों का सत्कार करना उत्तम और शुभकारक कर्म है।

ईश्वर भक्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा दादा धर्माधिकारी की, जिनके बारे में आचार्य विनोबा भावे ने कहा था कि दादा के बारे में क्या कहा जाए। एक छोटे से बच्चे से कोई पूछे कि उसकी माँ कैसी है, तो हो सकता है उसकी माँ बहुत सुंदर हो, लेकिन बच्चा ये नहीं कहेगा। हो सकता है उसकी माँ विद्वान हो, लेकिन बच्चा ये भी नहीं कहेगा। वो तो बस यही कहेगा कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है। दादा के बारे में भी यही कह सकेंगे कि दादा बहुत प्रेमी हैं। दादा धर्माधिकारी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, लेखक और गांधीवादी चिंतक थे। मानव मात्र के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें सबके हृदय में बिठा दिया। उन्हें गांधी युग का प्रकाश पुंज कहा गया, तो वहीं पत्रकारों ने उन्हें लोकतंत्र का शिल्पी माना। उनका जन्म 18 जून 1899 को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मूलतापी यानी मुलताई नामक स्थान पर हुआ था। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान होने के कारण इस स्थान का नाम मूलतापी पड़ा और कालांतर में इसे मुलताई कहा जाने लगा। दादा धर्माधिकारी का मूल नाम शंकर त्रयंबक धर्माधिकारी था, लेकिन आगे चलकर वो दादा धर्माधिकारी के नाम से ही पुकारे गए। उनका बचपन होशंगाबाद जिले में बीता। बचपन से ही पढ़ने लिखने में उनकी गहरी रुचि थी। वो कहा भी करते थे कि उन्होंने अनेक किताबें पढ़ीं। इस अध्ययन वृत्ति से ही उन्हें व्यापक संस्कार मिले और भौगोलिक सीमाओं से परे उनके मन में मानवीय प्रेम जागृत हुआ। उन्हें हिंदी, संस्कृत, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। वो कहा करते थे कि मुझे मनुष्य प्रिय हैं, इसीलिए मनुष्यों की सारी भाषाएं मुझे प्रिय हैं। वो अपने हॉस्टल के अधीक्षक कुमारेंद्र चटर्जी से अत्यधिक प्रभावित थे, जो उन्हें इतिहास और भूगोल पढ़ाया करते थे। अध्यापन के दौरान ही वो महान देशभक्तों के त्याग और साहस की चर्चा भी करते, जिसका गहरा प्रभाव दादा धर्माधिकारी के मन पर पड़ा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तब दादा धर्माधिकारी ने उनके विषय में काफी कुछ पढ़ लिया था। समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेद से जो विषमता फैली हुई थी, उससे दादा धर्माधिकारी बहुत आहत थे और उन्होंने महसूस किया कि ये विषमता गांधी जी को भी बहुत अखरती है। यही कारण है कि वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने लगे। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। उस समय दादा धर्माधिकारी नागपुर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। गांधी जी ने उस समय कहा कि असहयोग बुराई के साथ हो, न कि बुराई करने वाले व्यक्ति या समाज के साथ। जीवन की नीति तो सहयोग की ही हो सकती है। असहयोग नैमित्तिक प्रतिकार का साधन मात्र है और बिना तलवार के भी अपना राज आ सकता है। असहयोग सफल हो सकता है। दादा धर्माधिकारी कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के इन विचारों ने उन्हें इतना अधिक प्रभावित किया कि उन्होंने गांधी जी से कहा कि मैं आपके पीछे आने के लिए तैयार हूं, और उसके बाद वो कभी भी कॉलेज नहीं गए।

दादा धर्माधिकारी को गांधीवादी मूल्यों ने गहरे तक प्रभावित किया था। जब वो सार्वजनिक जीवन में आए तो उन्होंने युवाओं को संगठित करना आरंभ किया। उन्होंने दो संस्थाओं का गठन किया, एक आर्योतेजक समाज और दूसरा मूलतापी में तप्तेश्वर मंडल। इसके साथ ही वो हस्तलिखित समाचार पत्र भी निकालने लगे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया, तब अपने चुने हुए 78 लोगों के साथ उन्होंने दांडी की ये यात्रा आरंभ की। दादा धर्माधिकारी की ये इच्छा थी कि उन चुने हुए लोगों में गांधी जी उन्हें भी शामिल करें, लेकिन परिस्थितिवश ये संभव नहीं हो सका। तब दादा धर्माधिकारी ने नागपुर में धंतोली पार्क में विद्यार्थियों को भाषण दिया। इस उद्बोधन को सुनकर अनेक विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी और इस आंदोलन में वो कूद पड़े। दादा धर्माधिकारी को अंग्रेजों ने अपने लिए खतरा माना और 29 जुलाई सन 1930 को उन्हें गिरफ्तार कर नागपुर जेल में बंद कर दिया। उन्हें एक साल की सजा हुई। 30 के दशक के अंतिम वर्षों में दादा धर्माधिकारी ने काका कालीलकर के साथ मिलकर सर्वोदय मासिक पत्रिका के संपादन का कार्य संभाला। वो सर्वोदयी समाज के लिए प्रतिबद्ध एक सिपाही की तरह प्रयत्नशील रहे। वो सर्वोदय के एक समर्थ आचार्य और भाष्यकार थे। उनका मानना था कि समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। दादा धर्माधिकारी वर्धा में भी रहे। वो गांधी सेवा संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी से छूटने के बाद वो मध्य प्रांत असेंबली के सदस्य चुने गए। दरअसल उन दिनों ये विचार जन्मा कि गांधीवादी विचार के कुछ लोगों को भी विधानसभा या संसद में जाना चाहिए, लेकिन दादा धर्माधिकारी ने पहले इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि मैंने देखा है कि हमारे देश में पहला स्थान लेने वालों की कोई कमी नहीं है, दूसरा स्थान लेने वाले योग्य आदमियों की बहुत कमी है। सत्ता और सम्मान से अलिप्त रहकर सेवा करने वालों की आवश्यकता है, इसलिए मैंने विचार पूर्वक दूसरा स्थान लेने का निश्चय किया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद गांधी जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, ये मेरा निर्णय है, तुम अपनी इच्छा से तो नहीं जा रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते हो, इसे तो मैं तुम्हारी योग्यता मानता हूं, ऐसे लोगों को तो जरूर जाना चाहिए। बापू के इतना कहने के बाद दादा धर्माधिकारी कुछ कह नहीं सके। वो मध्य प्रांत में 1945 से 1951 तक विधानसभा के सदस्य रहे। दादा धर्माधिकारी संविधान परिषद के सदस्य भी थे। इस तरह संविधान निर्माण में भी उन्होंने अपना सकारात्मक योगदान दिया। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने गांधीवादी मूल्यों के साथ ही पूरा जीवन व्यतीत किया। वो कहा करते थे कि समाज में परिवर्तन के लिए लोगों के विचारों में परिवर्तन आवश्यक है।

दादा धर्माधिकारी ने अपने जीवन का लंबा समय दलितों और महिलाओं के उत्थान में लगाया। वो कहा करते थे कि इस देश का सबसे बड़ा रोग जातीयता है। वो भारतीय समाज को मनुष्य के आधार पर संगठित करना चाहते थे। वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो सामंजस्य प्रधान हो। वो वर्ण व्यवस्था को तिलांजलि देते हुए कहते थे कि धर्म तो एक ही है और वो सार्वदेशिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक है। धर्म का उद्देश्य मनुष्यों को एक दूसरे के साथ संबद्ध करना है, उनका एकत्र धारण करना है। यही प्रभु ईसा मसीह का ईश्वरीय राज है, यही गांधी जी का राम राज्य है और आदर्शवादियों का आदर्श समाज है। उनका कहना था कि जो मनुष्य को संयुक्त करता है, जोड़ता है, वो धर्म है। जो उन्हें विभक्त करता है वो अधर्म है। यानी समत्व की विद्या और संयोग की कला का नाम ही धर्म है। वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जहां सब धर्मों का, सब जमातों का, सब जातियों का, यानी जाति धर्म वर्ण निरपेक्ष सामान्य जन का राज होगा। यही उनका संकल्प था और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। स्त्रियों की दशा से उन्हें हमेशा असंतोष रहा। वो कहा करते थे कि हमारे समाज में स्त्री सहधर्मिणी रही है, वो कभी भी मुख्य धर्मिणी नहीं रही। वो सहजीवनी है, जैसे उसका व्यक्तिगत जीवन कुछ हो ही नहीं। स्त्री की भूमिका सदा गौण और दोयम रही है, जबकि हमारी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों ने ही धर्म, परंपरा और सदाचार को जीवित रखा है। उनका मानना था कि स्त्रियों के उत्थान से ही देश और समाज का उत्थान संभव है। दादा धर्माधिकारी ने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनकी संख्या लगभग 2 दर्जन है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया, क्रांति शोधक, गांधी जी की दृष्टि, नए युग की नारी, नागरिक विश्वविद्यालय एक परिकल्पना, मानवनिष्ठ भारतीयता, मैत्री, युवा और क्रांति, लोकतंत्र, विकास और भविष्य, समग्र सर्वोदय दर्शन आदि। उनके लेखन में एक कलाकार सी सौंदर्य दृष्टि और साहित्यिक प्रतिभा दिखाई देती है। अति क्लिष्ट संकल्पनाओं को भी उन्होंने सहज सरल शैली में अभिव्यक्त किया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में दादा ने अपनी डायरी में लिखा, जहां मेरी मृत्यु हो वहीं या पास की किसी जगह पर मेरे शरीर का दहन किया जाए, शव को कंधे पर न ढोया जाए, जुलूस न हो, भाषण न हो, दहन में चंदन कपूर घी का उपयोग ना हो, मेरी मृत्यु पर शोक सभाएं ना की जाएं, मेरा कोई स्मारक ना हो। इस तरह गांधीवादी विचारों को जीते हुए 1 दिसंबर 1985 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी मनीषा दीदी। और फिर बाल सभा लेकर आपको तो पता ही है, मैं हर सप्ताह आपसे मिलती हूँ। बच्चों की बातें, बच्चों की दुनिया, उनके मन से जुड़े हुए विषय, और एक बार फिर से उन सब विषयों पर बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, आप जानते आज का विषय क्या है? आज का विषय है खेलना क्यों जरूरी है। बच्चों, खेल बचपन की ना सबसे सुंदर पहचान होते हैं, क्योंकि खेल केवल समय बिताने के माध्यम नहीं है, बल्कि ये खेल बच्चों को स्वस्थ, आत्मविश्वासी और मिलनसार बनाते हैं। खेल में एक बात और होती है बच्चों, वो होती है जीवन की छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सीखें। अब आप सोचोगे कि खेल से कैसे सीख मिलती है, तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि मैं आपसे कोई भी बात, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो, वही बात करती हूँ जिसमें कोई ना कोई सीख छुपी होती है। क्योंकि बच्चों, हमेशा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मीनिंगफुल हो, थॉटफुल हो, जो हम देख रहे हैं उसका कोई अर्थ निकले। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, है ना। अगर हम सिर्फ ऐवे कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो बच्चों वो समय का दुरुपयोग है। और इस विषय पर हमने पिछली बाल सभा में बात की थी। आज जो बच्चा मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में आने वाला था, उसका मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आया, बोला दीदी मैंने ना आज ही सुबह बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मैंने कहा किस काम से जाना है, तो उसने बताया कि एक कॉलोनी में उनकी खेल प्रतियोगिता है, उसमें जाना है। तो बोला दीदी सॉरी, मैं आज स्टूडियो ना आऊँ, आज मैं अपनी खेल प्रतियोगिता में चला जाऊँ। बस वहीं से मुझे ये विषय मिल गया। मैंने कहा ठीक है, तुम जाओ प्रतियोगिता में, न सिर्फ खेल के आओ बल्कि जीत के आओ। और आज मैं अपने सभी श्रोताओं से, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने श्रोताओं से बात करूंगी कि खेलना क्यों ज़रूरी है, और क्यों मैंने उस बच्चे से कहा कि हाँ यहाँ बच्चों से बात करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो प्रतियोगिता में तुम नाम लिखवा चुके हो, पहले जाकर उसमें खेलो, और ना सिर्फ खेलो बल्कि जीतने का प्रयास भी करो। क्योंकि बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि आज के समय में जब बच्चों का अधिक समय स्क्रीन पे जा रहा है, और ये बात बिल्कुल सच भी है, छोटे छोटे बच्चों को मैं कितने, इतने छोटे बच्चों को देखती हूँ, 4 साल के, 5 साल के, जो खाना खाते वक्त अपनी मम्मा से ये बात ज़रूर कहते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए फ़ोन दे दीजिए। मतलब भाषा में तोतलापन है, मतलब आप सोचिए मम्मा पानी पीना है लेकिन स्क्रीन देखते हुए पीना है। कितने बच्चे छोटे छोटे वजहों से स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन स्टडी भी है, उसका एक रीज़न है। लेकिन बच्चों, जितना ज़रूरी है उसके अलावा हमें स्क्रीन पर समय नहीं बिताना है, बल्कि हमें खेलने जाना है। अब मैं पूछूं आप लोगों को कौन कौन से खेल पसंद हैं, तो वहाँ से आवाज़ आएगी कि मुझे कबड्डी पसंद है, क्रिकेट पसंद है, रस्सी कूद पसंद है, है ना, जो मैं अपने दोस्तों के साथ रोज़ खेलता हूँ या खेलती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को खेल खुश भी रखते हैं, पता है आपको। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले समय में ले जाऊँ, जब हम लोग खेलते थे, ये सारे खेल तो खेलते ही थे, इसके साथ साथ कुछ और भी खेलते थे बच्चों। क्या होता था कि मम्मियाँ ना दोपहर में काम करके थक जाती थी। अब जब थक गई तो उन्हें एक चीज़ ये भी है कि दोपहर में धूप बहुत है, तो धूप में एकदम बाहर तो खेलने आपको नहीं जाना है, लेकिन जब तक मम्मी सो रही हैं, जब तक माँ और घर में दादी नानी ये लोग सो रही हैं, तब तक बच्चों का हल्ला करना, शोर करना बिल्कुल मना था। और हम लोग अपनी पेरेंट्स की ना बात बहुत मानते थे। तो अब ऐसे में क्या खेल खेलें कि आवाज़ भी ना आए, तो छोटे छोटे से खेल बना लेते थे हम लोग। जैसे आंगन में गए और अष्टाचंगा खेलने लगे। अब आप सोचो अष्टाचंगा क्या होता है। इमली बहुत खाते थे बच्चे गर्मियों में ना, इमली खा रहे हैं तोड़ तोड़ के पेड़ों से, उसके जो बीज निकल रहे हैं उससे हम लोग खेलते थे। आप लोग जैसे पासा और ये सब खेलते हो, लूडो खेलते हो आप लोग, उसी तरीके से हम लोग पत्थर पे किसी चीज़ से, चौक से या और पेंसिल किसी ऐसी चीज़ से जिससे वहाँ पर निशान बन जाए, एक चौकोर खाना बना लेते थे और उसमें अष्टाचंगा खेलते थे। सारे दोस्तों को बहुत मज़ा आता था। और फिर जैसे ही सब लोग जग जाते थे और हमें परमिशन मिल जाती थी थोड़ा शोर मचाने की, थोड़ा ऊधम करने की, तो हम लोग पिट्ठू खेलते थे, कंचे बहुत खेलते थे बच्चे। उससे एक चीज़ होती थी बच्चों, जो कंचे कई जगह उसे अंटा भी बोलते थे, उससे ना निशाना बहुत अच्छा साध पाते थे। तीरंदाजी बच्चे छोटी छोटी जगहों पे बहुत करते थे, गुलेल खेलते थे आप सोचो, और तो और पिट्ठू के अलावा खो खो खेलते थे। खो खो तो अभी भी अब बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। एक खेल हुआ करता था गिल्ली डंडा, उसमें छोटी सी लकड़ी से बच्चे अपने लिए वो बना लेते थे, और तो और जो साइकिल के पुराने टायर होते थे ना बच्चों, उसको भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे छोटी सी लकड़ी से बहुत दूर दूर तक दौड़ा कर ले जाते थे। अब आप सोचिए कि इस खेल में क्या है। इस खेल में जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि बहुत सारा खर्चा नहीं है, है ना, ठीक है। हमको हर चीज के लिए बाजार का मुंह नहीं देखना पड़ रहा है। हम अपने खेल न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि उनको बना भी खुद रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो बच्चा साइकिल के पुराने टायर को एक लकड़ी से दूर तक दौड़ाता हुआ ले जा रहा है, उसका फोकस कितना अच्छा हो जाता होगा। सोचिए सोचिए, क्योंकि ये सोचना जरूरी है बच्चों। अगर वो बच्चा अपनी मम्मा से रोज कहेगी आज मुझे ये खेल खेलना है, कल मुझे वो खेल खेलना है, आज ये बाजार से ले आइए, आज वो बाजार से, तो पता चलता है कि गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा का बजट बहुत तेजी से ऊपर चला जाता है। तो हमको ये नहीं करना है। हमको ऐसे खेल खेलने की कोशिश करनी है जिसको हम थोड़े थोड़े खुद भी बना सकें। और सच बताऊं बच्चों, इसमें मजा भी बहुत आता है। एक और खेल हम लोग खेलते थे, वो पता है क्या था। उस खेल का नाम था किल किल कांटे। अजीबो गरीब सा नाम है ना, पर मुझे आज था कि मैं स्टूडियो में जब आप लोग के साथ खेलों की बात करूंगी तो वो सारे खेल आपको बताऊंगी जो हम लोग खेला करते थे, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन तब बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होते थे बच्चों, है ना, कि छोटी छोटी सी चीज़ के लिए हम लोग बाजार भाग जाए, नहीं होता था। इनफैक्ट बाजार में भी इतने खेल नहीं थे जैसे आजकल मैं देखती हूँ, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों काम करें उसके लिए नए नए गेम्स आ रहे हैं, नई नई बुकलेट्स आ रही हैं। ठीक है, बाजार में नई चीज़ों का इन्वेंशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि आप जब खुद कोई खेल बनाते हैं उसमें जो मजा आता है, उसमें जो आपका ब्रेन यूज होता है ना, वो कहीं नहीं होता और कभी नहीं होता, सच मानिए। जैसे वो किल किल कांटे में हम लोग क्या करते थे कि आपको खूब सारी लाइनें खींचनी है लेकिन ऐसी जगह जो दूसरे को पता ना चले, वो फिर आपकी लाइनें ढूंढता था कि आपने कहां बनाई है और उसको काटता था। तो जो आपने लाइन बनाई है उसने अगर सारी काट दी तो वो जीत गया, और नहीं तो बाकी बच्चे ना एक कपड़ा लेते थे और उसकी पीठ पर कपड़े से मारते थे, तो चोट भी नहीं लगती थी, मजा भी आता था और खूब दौड़ा भागी होती थी, खूब दौड़ा भागी होती थी। ऐसे ही खो खो खेलते वक्त हम लोग बोलते थे कि घोड़ा जमाल खाए पीछे देखा मार खाए, तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा हमारी भाषा को भी समृद्ध करती थी। इसलिए मैं आज आपसे खेलना क्यों ज़रूरी है इस विषय पर बातचीत करना चाह रही थी। एक बात और थी कि मेरी कुछ दोस्तों को ना गुड़िया के कपड़े बनाना बहुत पसंद था। अब वो अपनी मम्मी से पुराने कपड़े लेती थी, उसमें फिर सुई धागा लेती थी और हाथों से छोटे छोटे से कपड़े बनाती थी कैंची से काट काट के, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इनफैक्ट उनमें से एक दोस्त थी जिसको लगता था कि गुड़ियों को थोड़े से वेस्टर्न कपड़े पहनाने चाहिए, तो वो पता है किससे कपड़े बनाती थी, आश्चर्य करोगे, वो बैलून से कपड़े बनाती थी। वो गुब्बारे को पहनाकर गुड़िया को सजाती थी, और मैं आज आपको बताते हुए बहुत गर्व भी हो रहा है कि मेरी वो दोस्त इंडियन फैशन इंस्टीट्यूट में है। तो आपके बचपन के खेल की यात्रा कहाँ तक जाएगी बच्चों, ये किसी को नहीं पता, है ना। और आपको पता है आजकल आप देखते होंगे कि बच्चे चूंकि स्क्रीन टाइम बहुत है और चूंकि आंखों की बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, पहले हरियाली देखना, घूमना, टहलना, दूर दूर निशाना साधना, तो आपने देखा होगा कई बच्चों को आजकल बहुत कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं। पहले हमारे यहाँ सुई धागा रेस भी होती थी, सुई में धागा डालो। अब सोचो आप सुई में धागा डालना, अब अगर आप आज कोशिश करना कि अपनी मम्मी पापा को बोलो कि एक सुई और धागे की आपसे रेस करवाएं, कितने लोग सुई में धागा डाल पाएंगे ये आप मुझे अगली बाल सभा में जरूर बताना, ठीक है? या तो आप मुझे, जो बच्चे यहाँ स्टूडियो में आएंगे वो बताएंगे, या तो मैं कैसे ना कैसे अपने बच्चों से पूछ ही लूंगी, आज पार्क जाऊंगी शाम को तब भी पूछूंगी और ये बोलूंगी कि घर पे जाके एक्सरसाइज करो। अब आप देखिए कि सुई में धागा डालना कहने को बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन उसमें भी बच्चों आपका फोकस काम आता है ना। आप कितने ध्यान से सुई में जो छोटा सा बहुत बारीक सा छेद है उसको देख पा रहे हो और उसमें धागा पिरो पा रहे हो, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ है, जैसे बैलेंसिंग के लिए एक बहुत अच्छी होती थी, चम्मच में नींबू को रख कर और फिर रेस करवाते थे, तो ये मैंने अभी भी बहुत देखी है, अभी भी बच्चे बहुत खेलते हैं। तो इससे क्या होता था, इससे बैलेंसिंग आती थी। अब ये संतुलन, ये फोकस, ये हर चीज़ क्या आपकी ज़िंदगी में काम नहीं आती बच्चों? आती है ना। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये समझना होगा कि खेलों से दरअसल हमारी ज़िंदगी में क्या असर पड़ रहा है, क्या ख़ास बात हम सीख पा रहे हैं, है ना। क्योंकि बैलेंस तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अब जैसे एक छोटी सी बात बताऊँ आपको, एक बच्ची है, वो जहाँ मैं रहती हूँ उसके पास में ही रहती है। अब उस बच्ची में मैं हमेशा देखती हूँ कि थोड़ा व्यवहार में संतुलन कहीं ना कहीं कम हो रहा है। कैसे हो रहा है कि जैसे उसे बाहर खेलना पसंद है तो वो पूरे समय बाहर खेलना चाहती है, ठीक। अब उसका देखिए बैलेंस्ड बिहेवियर कैसे डगमगा रहा है कि मैंने देखा कि कल वो बहुत धूप में भी ना सबके घर जाकर बच्चों को बुला रही थी, बाहर आओगे खेलने आओगे। अब क्या हुआ कि एक दो घरों में गई वो, मैं वापस लौट रही थी कहीं से कुछ सामान लेकर, तो मैं चुपचाप खड़े होकर उसकी गतिविधियां देख रही थी, तो उसने किसी एक का दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी मम्मी ने बोला नहीं बेटा अभी हम नहीं भेजेंगे क्योंकि धूप बहुत है। फिर उसने क्या किया, बगल वाले घर का दरवाज़ा खटखटाया, आंटी उसको भेज दीजिए ना, मुझे उसके साथ खेलना है। तो उसकी मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं बेटा धूप बहुत है अभी नहीं भेजेंगे, शाम को आना। अब जब दो तीन घरों में उसे मना किया गया तो चूंकि मैं सिर्फ उसी को देख रही थी, वो बच्ची थोड़ी देर बाद ना रुआंसी हो गई, तो मैं उसके पास गई क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं, आप लोगों को तो पता ही है मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, कोई बच्चा दुखी हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उसके पास गई, मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, जबकि मैं देख सब रही थी, समझ सब रही थी कि यहाँ चल क्या रहा है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, उसने मतलब ऐसा लगा जैसे वो रोने के लिए तैयार बैठी थी, वो रो पड़ी एकदम से, आंटी मेरे साथ कोई खेलने नहीं आता। मैंने कहा सब तो आते हैं, कहाँ आया आंटी, मैं पिछले कितनी देर से सबके घर पे जाके बैल बजा रही हूँ कोई नहीं आया। मैंने कहा बेटा टाइम देखो कितना बज रहा है, तो उसने टाइम देखा, उसने बताया कि 3 बज रहा है। फिर मैंने कहा कि इस वक्त धूप देखो, तो ऊपर देखा उसने, मैंने कहा ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है सच में, मतलब ऐसा लगता है थोड़ी देर अगर खड़े हो जाओ बाहर तो जैसे जल रहे हैं। मैंने कहा इतनी धूप में आप कहाँ खेलोगे? बोली वो आंटी पेड़ के नीचे खेलूंगी। मैं कहा ये जो इतना धूप से एक्सपोजर होगा आपका उसका क्या, और कई बार लू जैसी भी स्थिति हो जाती, गर्म हवा भी चलती है धूप में। तो वो रोने लगी, बस उसको एक ही जिद थी कि नहीं मुझे अगर मैं बुलाऊं तो तुरंत दोस्त आ जाने चाहिए, अगर नहीं आ रहे तो वो अच्छे दोस्त नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा बहुत बैलेंस्ड बिहेवियर रखना ही पड़ेगा, आपको टाइम देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी ने आपसे मना किया है तो क्यों मना किया है। कई बार बच्चों हम सोचते हैं ना कि हमारे किसी दोस्त ने या दोस्त की मम्मी ने या उसकी बड़ी दीदी ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, तो मैं देखती हूँ बच्चे तुरंत बोलते वो अच्छी नहीं है, उसकी दीदी अच्छी नहीं है, उसकी मम्मी मेरी बात नहीं मानती है। आजकल मैं ये वाले चर्चाएं बहुत सुन रही हूँ बच्चों से, तब मुझे लगता था कि मैं बाल सभा में बैठूंगी तो आपसे ज़रूर बैलेंस्ड बिहेवियर की बात करूंगी बच्चों, है ना। पता है इसके लिए आप लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस करिए। मैं जो बाद में आपसे संकल्प के वक्त करवाती हूँ ना कि हम एक धीमा संगीत सुनेंगे, शांति से बैठेंगे, संकल्प लेंगे कि हम कुछ अच्छी चीज़ें करें, हम क्या करें और क्या ना करें, तो बच्चों सबसे पहले आप अपने अंदर धैर्य लाइए, सबसे पहले अधीर होना बंद कीजिए, है ना। थोड़ा शांति से 2 मिनट सोचना शुरू कीजिए। जो आपका कंसंट्रेशन टाइम है ना बच्चों, वो बहुत कम होता जा रहा है। मैं देखती हूँ एक बच्चा एकदम बैठता है, फिर दूसरे काम में लग जाता है, दूसरे काम से तीसरे काम में लग जाता है, और जब तक उसको उसके मन की चीज़ ना दे दी जाए वो तब तक शोर करता है। ऐसे कितने बच्चों की कहानियाँ है मेरे पास बच्चों, पर मुझे पता है जो बच्चे मेरी बाल सभा सुनते हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में आते हैं और जो हर बार मुझे बहाने बहाने से कहीं कभी स्कूल जाती हूँ मैं तब बच्चे बताते हैं कि बाल सभा सुनकर दीदी हमने ये सीखा। तो बच्चों जो भी मुझे सुन रहा है ना, एक चीज़ ज़रूर सीख लेना, अधीर होना नहीं अच्छी बात नहीं है। हाँ, आपको किसी ने कुछ चीज़ के लिए मना किया है तो आप खुद भी आत्म मूल्यांकन कीजिए। बच्चों रुकिए, ठहरिए, सोचिए कि आपको इस काम के लिए मना क्यों किया गया। कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वापस अपने विषय पर आ जाएं कि खेलना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से बच्चे आपने देखा ही है कि किस तरीके से अभी जो बातें मैं बता रही हूँ, एक दूसरे से गुस्सा हो जाना, एक बहुत खास बात है, खेल भावना की विकास होता है खेल खेलने से। इसमें जो सबसे बड़ी सीख है ना, जब बच्चे टीम में खेलते हैं तो वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट सिस्टम सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बास्केटबॉल हो, या आपने देखा होगा कि फुटबॉल हो, या इवन वॉलीबॉल हो, ये जो आउटडोर गेम है और जो टीम गेम है, आपने देखा होगा कि सिर्फ जो गोल करता है या जो बॉल को बास्केट में डालता है वही इम्पॉर्टेंट नहीं है, वही चैंपियन नहीं है। जो बॉल को पीछे से लेते चला रहा है, लाता चला रहा है नेट के

जैसे भी मैंने बताया ना कि टीम में जब आप रहते हो तब आप सपोर्ट सिस्टम सीखते हो। दूसरा, जिन बच्चों को लगता है कि हार गए तो झगड़ लिए, आपने कई जगह देखा होगा कि कई बच्चे एकदम से खेलते खेलते अगर हार रहे तो बैट पटक देते हैं या झल्ला जाते हैं या उनका टोन ऑफ वॉइस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता फिर। तो बच्चों, हमें वो चीज़ें भी सीखनी है और हमें वो चीज़ें भी सोचनी है। अब अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही मुझे एक बच्चे के पापा बता रहे थे कि वो बहुत मोबाइल पे खेलता है, मतलब हर खेल मोबाइल पे खेल लेता है, और बच्चा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है। अब कौन कौन से गेम खेलता है, तो आजकल तो क्रिकेट भी आप मोबाइल पे खेल सकते हो, आजकल तो आप फुटबॉल भी मोबाइल पे खेल सकते हो, आप गाड़ी की रेस मोबाइल पे लगाते रहते हो। लेकिन आप बच्चों बस मुझे ये बताओ कि हाथ में स्क्रॉल करते करते आप कितना भी खेल लेना, उससे क्या होगा? उससे आप बैठे बैठे अनफिट होते जाओगे। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी फूड क्रेविंग बढ़ती है ना? फिर आप सोचोगे कुछ पैकेट में आपको खाने को मिल जाए, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कुछ खा लोगे, फिर आप टॉफी चॉकलेट मुंह में डाल लोगे, और फिर थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं खेल रहे हैं, खेल कोई और ही रहा है जो वो खेल बना रहा है मोबाइल के लिए, है ना, और आप उसमें बंधते जा रहे हो, ठीक है। और बच्चों, फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे आप रियलाइज करना, आप अकेले होते जाते हो, क्योंकि आप बाहर नहीं जा रहे, मोबाइल बात तो कर नहीं सकता आपसे, है ना, बस वो आपके लिए खूब सारी गाड़ियां दौड़ाता जा रहा है, आप स्क्रॉल करते जा रहे हो और आपको लग रहा है आप खेल रहे हो। और ये बात मैं कर रही हूँ अपने छोटे छोटे बच्चों की, 7 साल के 8 साल के 9 साल के ऐसे बच्चों की। तो बच्चों, ये बात आपको बहुत समझना जरूरी है कि जब आप बहुत समय मोबाइल पर गेम खेलते हुए बिताओगे, आपका दोस्त कौन बचेगा? सोचो, आप किसके कंधे पर हाथ रखोगे? अगर आप स्कूल जाते वक्त आपके दोस्तों से बात नहीं करोगे तो आप बात करने का तरीका ही भूल जाओगे। सच्ची मानिए, मैंने बहुत बच्चों में ये चीज देख रही हूँ कि वो समझ ही नहीं पाते कि क्या बात करें। हेलो, बस चुपचाप बैठ गए, ये नहीं पूछते आज तुमने क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी क्या कोई, और आज तुम खेलने गए थे, कौन सा खेल खेल रहे हो? तो क्या बताओगे आप, मैं मोबाइल पर गाड़ियों की रेस लगा रहा हूँ? क्या बताओगे आप, मैं मोबाइल पे वो खेल रहा हूँ क्रिकेट, मैं मोबाइल पे ही बास्केटबॉल खेल रहा हूँ? तो ठीक है, आपके टीम प्लेयर्स कौन है? वो नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप अकेले रहते हो। जब आप स्क्रीन पे खेलते हो तब आप अकेले होते हो, और जब आप बाहर खेलते हो तो आपके साथ पूरी टीम होती है जो आपको एक संवेदनशील नागरिक बनाने में बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि जब कोई गिर जाता है तो आप उसका हाथ पकड़ के उठाते हो, जब किसी के चोट लग जाती है तो आप उसको पानी से साफ करते हो, उसके घर तक उसको लेके जाते हो। तो इससे आपको बिहेवियर में बहुत चेंजेस आने लगते हैं, आप अचानक से हेल्पिंग होने लगते हो, आप अचानक से बहुत मीठा बोलने लगते हो, आप अचानक से फ्रेंडली हो जाते हो, है ना। लेकिन ये सब कब आता है? जब आप घर के दरवाजे खोलते हो, अपने अकेलेपन से बाहर निकलते हो, जब आप लोगों के बीच उठते बैठते हो। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो एक कमरा, आपकी स्क्रीन, आपका हाथ, और उससे आपका सारा खेल, खेलते जा रहे हो। तो बच्चों, मैं नहीं सुनूं अब कि कोई भी बच्चा स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहा है। मैंने आज खेल क्यों ज़रूरी है इस विषय पे बात ही इसलिए रखी थी कि ये जो छुट्टियां चल रही हैं इसमें आप कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलोगे, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, जूडो हो, कराटे हो, कुछ भी हो, सेल्फ डिफेंस से लेकर गेम जो भी जुड़े हुए हैं वो आपको ज़रूर सीखने चाहिए, वो भी आपको काम आते हैं, है ना। वो खेल ज़रूर खेलिए, क्योंकि यही खेल बच्चों आपको न सिर्फ फिट करेंगे बल्कि आपको, मैं बार बार बोलती हूँ कि खेल से खेल भावना का विकास होता है, और खेल भावना से आप एक बहुत अच्छे बच्चों में बढ़ते जाते हो, तब्दील होते जाते हो, आपकी अचानक से सारी कमजोरियां आपको बाय बाय कहने लगती हैं, है ना। और अब ऐसी ही एक, आपको तो पता ही है एवरेस्ट की बातें हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो अब हम फिर से आपको सुनाते हैं बचेंद्री पाल जी का आगे का हिस्सा कि उनका जो प्रथम अभियान था एवरेस्ट का वो कैसा रहा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था।
जिसमें वो हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। काठमांडू में कुछ दिन बिताने के पश्चात हम जीरी चले गए, जो वहां से 4-5 घंटे की यात्रा पर था। जब हमने नामचे बाजार तक की 8 दिन की यात्रा आराम से की, पर्वतों के स्वभाव के विपरीत हम रोज लगभग 1000 मीटर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते, जिससे हम में मजबूती आई और ऊंचाइयों के वातावरण और जलवायु के अनुकूल स्वयं को ढालने में हमें मदद मिली। रास्ते में हमें हसमुख और मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ उस क्षेत्र के व्यक्ति विशेष शेरपा मिले। नामचे बाजार शेरपा लैंड की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरी क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को यहीं से निहारा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज जैसा लग रहा था। मुझे बताया गया कि ये दृश्य शिखर की ऊपरी सतह से लगभग 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ का पत्थर उड़ता रहता था। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। हम पर्वतीय लोग सदा से पर्वतों की पूजा करते आए हैं, अतः इस भय मिश्रित प्रेरणा स्प्रद दृश्य के प्रति मेरे ऊपर हावी भावना एक प्रकार से श्रद्धा भाव की थी। मैंने अपने हाथ जोड़े और सागर माथा की तरफ श्रद्धा से सिर झुकाया। एक दिन के बाद हम प्रसिद्ध थ्यांग बोके मठ तक पहुंचे, जहां मूर्तिमान थामा ने हमें आशीर्वाद दिया और हमारी सफलता तथा सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। थ्यांग बोके न केवल सुंदर था, बल्कि उसकी 4000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई हमारी जलवायु अनुकूलता प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थी। तो बच्चों, ये पर्वत पर जाने की, आप जो हिमालय तक पहुंचने की यात्रा सुन रहे हैं बछेंद्री पाल जी की, वो भी हमें हर पल यही संदेश देती है कि हमें जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है, थोड़ी हिम्मत करना ज़रूरी है। तो बस एक बार जो आप सोच लें उसे पूरा करके दिखा दीजिए। और यहाँ जो बच्चे अभी हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट टीम में हो, किसी स्टेट टीम में हो, या फिर हमारे यहाँ के कुछ बच्चे नेशनल भी खेल रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जूनियर सब

0: शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अब आज खुद से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कोई ना कोई खेल जरूर खेलेंगे। जो भी बच्चे इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वो अगर वीडियो गेम या स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, उसे कम करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। एक इंडोर गेम साथ ही साथ एक आउटडोर गेम में महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉलोनी, अपने मोहल्ले में या जहां भी आप रहते हैं, आसपास बच्चों की एक टीम बनाएंगे और सप्ताह में कम से कम 3 दिन कोई ना कोई टीम गेम खेलेंगे ताकि आप में खेल भावना का विकास हो। अब आंखें आप खोल सकते हैं और अब मुझे बाय बाय भी कह सकते हैं, क्योंकि बाल सभा का समय पूरा हो चुका है। बच्चों, चलती हूँ, अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए, भले ही चाहें तो रेडियो के पास आ जाइए। अगर आप मुझे कार में सुन रहे हैं, मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो अपने मन ही मन खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने मम्मी पापा की बात मानेंगे और कोई ना कोई खेल में हिस्सा ज़रूर लेंगे। तो चलती हूँ, अपना ख्याल रखिए, गर्मी से खुद को बचा कर रखिए, थोड़ा सा धूप में कम निकलिए जैसे मैंने उस बच्चे की कहानी सुनाई थी, और शाम को खूब जम कर खेलिए। बाय बाय, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।
1: बाल सभा।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था खेलना क्यों ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौर, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, और आपके साथ ही मैं आपकी दोस्त मनीषा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हम इन दिनों इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास में चलते चलते हम उस मोड़ पर अब आ पहुंचे हैं जहां हम अपनी सेना के तीनों अंगों को एक परिपक्व, अनुभवी और आधुनिक उपकरणों से लैस, आत्मविश्वास से भरी हुई सेना के रूप में पाते हैं, उसे नए कलेवर में पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध जीत के बाद के वर्षों में भारतीय सेना की स्थिति की। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी देश की सेना का रोल केवल दुश्मन से युद्ध करने का ही नहीं होता, बल्कि देश की सेना हर दिन हर वक्त देश की शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा करती रहती है और देश की सीमाओं पर 24 घंटे चाक चौबंद रहती है। श्रोताओं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, समय कोई भी हो, मौसम के तेवर कैसे भी हों, भारतीय सेना देश के हित को सर्वोपरि रखकर अपने कर्तव्यों में निरत रहती है। श्रोताओं, आज के इस कड़ी में हम देश की सीमाओं की सुरक्षा की ऐसी ही मिसाल पेश करने वाली एक शौर्य गाथा आपके लिए लेकर आए हैं। ये गाथा लिखी गई समुद्र से लगभग 20,000 फीट ऊंचे यानी दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन में। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए जानते हैं कि क्या है वो गौरव गाथा हमारे विषय विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से, जिन्होंने लगभग 20 तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और स्वयं सियाचिन का अनुभव भी रखते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर।
3: थैंक यू पुरवा जी, एंजॉय श्रोताओं, आपने बहुत अच्छा समराइज किया
2: जी।
3: जो आर्म फोर्सेस होती हैं वो सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में नहीं कार्य करती हैं, बल्कि उसके अलावा भी जो है 24/7 365 डेज अ ईयर दे आर एक्टिव ऑन द बॉर्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर एन नंबर ऑफ अदर ड्यूटीज आल्सो व्हिच दे परफॉर्म, लाइक असिस्टिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स। एनीवे, आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया सियाचिन ग्लेशियर, इंडीड इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये 76 किलोमीटर लंबा है एंड इट इज नोन एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड द इन द नॉन पोलर रीजन।
2: ठीक है, क्षेत्रों के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जी ग्लेशियर है।
3: और कहते हैं कि जो सिया होता है वो वर्ड जो है मल्टी लैंग्वेज में मतलब फ्लावर्स के लिए यूज होता है और चेन का मतलब होता है कि जो चीज बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अबंडेंस में होती है
2: जी।
3: तो सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड फुल ऑफ रोजेस।
2: क्या बात है, वहां पर तो एक भी नहीं होता होगा सर मेरे ख्याल से।
3: नहीं, समर्स में जब है काफी जगह है वहाँ पे जहाँ बहुत अच्छे फूल उगते हैं।
2: अच्छा, जी घाटियों में
3: वहाँ पे है काफी जगह है जहाँ समर्स में ये फूल होते हैं। एक्चुअली होते हैं ये जो जगह है सियाचिन जो है, इट इज लोकेटेड नॉर्दर्न मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में एंड काराकोरम रेंजेस जो है उसमें है। मैं उसको रेफरेंस के तौर पे बताऊं को जैसे अगर हम लेह है लद्दाख में, तो लेह से अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं खारदुंगला पास से, उसको क्रॉस करने के बाद नुब्रा वैली जाते हैं और उसके नॉर्थ में जो है जहाँ से नुब्रा रिवर शुरू होती है, दैट इज द प्लेस जहाँ ग्लेशियर जो है खत्म होता है एंड वहां से आगे 76 किलोमीटर तक जो है ऊपर जाता है। एंड ये जो जगह है मतलब इट इज अ वेरी रगेड स्नो कवर्ड टेरेन, मतलब बहुत ज्यादा बर्फीला इलाका है जिसमें कि टेम्परेचर -50 तक जाता है एंड माउंटेन हाइट्स उसमें जो है 20,000 से ऊपर है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है
2: जी,
3: उसके वेस्ट में जो है एक रिच लाइन है जिसको सोल्टोरो रिच बोलते हैं।
2: अच्छा
3: जी, एक तरह से जो हमारी डिप्लॉयमेंट है जो है वो सोल्टोरो रिच के ऊपर है।
2: अच्छा,
3: और यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे अभी मैंने बोला कि बहुत ही मतलब ज्यादा सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जी, तो फ्रिक्वेंटली वहाँ ब्लिजर्ड्स आते हैं, एवलांचेस रहते हैं, क्रेवासेस का खतरा रहता है, और इससे जो है मतलब ये टेम्परेचर जो है कंडीशंस और हाइट के कारण जो है एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो की एफिशिएंसी पे बहुत इफेक्ट करता है, और जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग होती है नॉर्मल जिसको हम समझते हैं एपेटाइट, सोना टाइम से, इवन मेंटल हेल्थ, इन सब के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो वर्किंग परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन सच एनवायरनमेंट, इट्स अ ग्रेट ग्रेट चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज। ये एक तरह से मतलब वो ऐसा इलाका है जहाँ पे कि पहुँच के हमने जो है अपनी पोस्ट बनाना और उसको गार्ड करना 24/7, इट्स अ मेजर चैलेंज एंड विच हैज बीन प्रूव्ड बाय द आर्म फोर्सेस कि वी कैन एक्चुअली डू इट। अगर आप वहाँ कभी हेलीकॉप्टर्स को उड़ते हुए देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस हाइट के ऊपर जो अपनी वो लिमिट है, उनकी जो लिमिट है उससे भी बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं
2: जी
3: है, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन है, उनके सपोर्ट के बगैर हम मतलब वहाँ नहीं रह सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मतलब वहाँ पे बातें होती हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड अहेड, लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ इट।
2: जी बिल्कुल सर, मेरा प्रश्न यही था कि आखिर इस युद्ध का क्या इतिहास है, ये क्यों हुआ, क्या कारण है?
3: ये जो डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेके, ये शुरू हुआ था जो एंड पॉइंट है हमारा इसका LOC का
2: जी,
3: उसके इंटरप्रिटेशन को लेके।
2: अच्छा,
3: देखिए जो 47 जब हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था
2: जी,
3: उसके बाद अगर आपको याद हो हमने जिक्र किया था कि सीज फायर हुआ था, तो जो सीज फायर लाइन थी
2: जी,
3: वो शुरू हुई थी जम्मू के ऊपर से एंड वहां से होते हुए पूरा एक पॉइंट पे जो कि काराकोरम रेंजेस पे है
2: जी,
3: इसको हम मैप पे NJ 9842 बोलते हैं
2: जी, बड़ा लोकप्रिय नाम,
3: बड़ा लोकप्रिय नाम है मतलब, तो वहां तक इसकी मार्किंग हुई थी
2: जी।
3: अब उस समय भी जो है इसके ऊपर का जो इलाका था और है आज भी, मतलब इट वाज अ वेरी रिमोट एरिया, रगेड, जैसे अभी हमने जिक्र किया उसके बारे में,
2: बिल्कुल निर्जन,
3: हाँ वहाँ पे ना कोई रहता था, ना अप्रोचेबल था, स्नो बाउंडेड था, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन थी। तो वहां तक मार्क करके इट वॉज चटकी एंड देंस नॉर्थ टूवर्ड्स द ग्लेशियर, मतलब उसके आगे नॉर्थ की तरफ ग्लेशियर की तरफ ये लाइन जाएगी।
2: अच्छा,
3: ऐसा ये हुआ। अब 71 का जो वॉर हुआ उसमें क्या हुआ कि ये CFL जो है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया था
2: जी,
3: क्योंकि उसमें काफी चेंजेस हुए थे वॉर के दौरान जो है, लेकिन इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम रहे,
2: वही रहा
3: NJ 9842 था,
2: यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
3: उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ उस पॉइंट पे। एंड अगेन इट वॉज सेम कि इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड कि भाई जो NJ 9842 है उसके आगे जो हमारे बीच में जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है वो देंस नॉर्थ टू ग्लेशियर, मतलब नॉर्थ की तरफ ग्लेशियर की तरफ जो है जाएगी।
2: स्पष्ट नहीं था यानी सर उसके आगे?
3: देखिए ये स्पष्ट तो बिल्कुल था
2: जी,
3: ऐसा है कि उस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो सोल्टोरो रिज है
2: जी,
3: बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचे 20-22,000 feet के ऊंचे पहाड़ है, ठीक है। एंड जो भी कभी बाउंड्री मार्क होती है तो हमेशा ये हाइट्स के ऊपर होती है।
2: अच्छा, पर्वतों की ऊंचाई पर
3: जी, जैसे हम अपने खेत की मेड़ भी बनाते हैं तो आप देखेंगे एक ऊंचा बना हुआ होता है जिससे हमें बिल्कुल क्लियर कट होता है। अगर हम देखें उस समय जिन्होंने भी मार्किंग करी थी शायद उनके भी मतलब जो है दिमाग में कोई किसी तरह का डाउट नहीं था इसको लेके, तो लॉजिक एम्प्लाइज की मतलब वो जो है नॉर्थवर्ड्स होना चाहिए एंड हाईएस्ट जो वाटरशेड है जैसे मैंने अभी बताया सोल्टोरो रिज लाइन है उसके साथ होना चाहिए। 63 में अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, पाकिस्तान ने उसके साथ में जो एरिया है शाक्सकाम वैली,
2: अच्छा,
3: उसको चाइना को हैंड ओवर कर दिया था जो है, और उससे क्या हुआ कि अब जब वो चाइना को हैंड ओवर हो गया तो जो चाइना की सीमा है वो और
2: करीब आ गई
3: भारत के करीब आ गई। अब ये जो शास्कांग वैली है उसके बाद जो अगर आपको याद होगा चाइना ने जो है काराकोरम हाईवे बनाना शुरू किया जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में
2: हमने जिक्र भी किया था
3: है ना, तो जो है उन्होंने शुरू किया एंड 78 में खत्म करा था
2: जी।
3: अब ये जो है अगर आप देखेंगे तो शास्कांग वैली हैंड ओवर करने के बाद एक तरह से नॉर्थ सिम की सीमा हमारी तरफ आई, ठीक है, ईस्ट में ऑलरेडी चाइना था, अब वेस्ट में जो पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं था कि जो सियाचिन वाला एरिया है वो हमारा है, इंडिया का है, है ना। और ये जो शास्कांग वैली को जो दिया है वो तो इंडिया रिकॉग्नाइज करता ही नहीं है, तो इंडिया के साथ है हमारा कि ये जो है J&K का हिस्सा है, तो पाकिस्तान को तो पहले कोई हक ही नहीं था कि वो देने का जो है। एनीवे तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर का एरिया जो उसके ठीक नीचे आता था, मतलब इट वाज अ रिमोट एरिया जैसे हमने अभी जिक्र किया है, अनविजिटेड, अनइम्पोर्टेंट, तो काफी टाइम तक तो मतलब डोरमेंट रहा
2: जी।
3: इसमें मतलब जो है कोई ज्यादा हलचल नहीं थी, कुछ नहीं था,
2: किसी भी देश की कोई हलचल नहीं, ना भारत ना पाकिस्तान।
3: या अब क्या हुआ कि उसके बाद में धीरे धीरे सेंटर स्टेज में आना शुरू हुआ जब इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों ने इसके ऊपर जो है अपना हक जमाना शुरू किया। इंडिया को तो हक है ही, पाकिस्तान और चाइना ने भी दी उस पे, इवन सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान की तरफ से जो हुआ। पाकिस्तान ने क्या किया, एक तो उन्होंने ना एक नया अलाइनमेंट दिखाना शुरू किया अपने मैप्स के ऊपर, जिसमें कि जो NJ 9842 है उससे उन्होंने एक सीधी लकीर ईस्ट की तरफ खींची, जिसमें कि NJ 9842 को उन्होंने काराकोरम पास से जोड़ दिया। अकबर ये अब सीधी लकीर खींचते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरा सियाचिन ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान के मैप में दिखने लग गया।
2: अच्छा, पाकिस्तान के नक्शे में पूरा सियाचिन चला गया।
3: हाँ, सियाचिन जो है वो उन्होंने दिखाना शुरू करा, जबकि उसका अलाइनमेंट जो हमने देखा जिक्र किया कि नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये जो नया अलाइनमेंट आया इसको उन्होंने अपने मैप्स में दिखाना शुरू किया, और उन्होंने एक और काम करना शुरू किया कि जो माउंटेनियर होते हैं उनको उन्होंने वहाँ पे माउंटेनियरिंग के लिए इनवाइट करना शुरू किया, उनको परमिशन देनी शुरू कर दी।
2: अच्छा, पाकिस्तान सरकार ने,
3: पाकिस्तान सरकार ने अपनी तरफ से जो है
2: जी।
3: तो मतलब ये एक तरह से सोची समझी
2: साजिश है
3: कि भाई
2: अपने नक्शे में
3: हम उसको धीरे से नक्शे में दिखाया,
2: अंतर्राष्ट्रीय
3: लेवल पे। इवन जब उन्होंने परमिशन देनी शुरू करी तो काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी देश भी, उनको भी ऐसा लगने लगा कि ये जो है पाकिस्तान का है, वो भी अपने मैप पे उसको वैसे ही दर्शाने लगे। तो जब ये बात सामने आई तो इंडियन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड टू इट, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप हमारे इलाके में कैसे आ रहे हैं, ठीक है। सोल्टोरो रिज जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, ठीक है, ये मैंने जैसे बोला था सियाचिन ग्लेशियर के वेस्ट में पड़ती है, एंड दिस इज द हाईएस्ट वाटरशेड, मतलब कि जो हाईएस्ट हाइट है उस एरिया में, जिसको कि मतलब मोर देन 20,000 जिसकी हाइट्स हैं, मतलब पीक्स हैं, इसको जो है चार जगह से मतलब क्रॉस करा जा सकता है।
2: अच्छा,
3: क्योंकि पहाड़ी काफी दुर्गम इलाका है, तो अगर हम नॉर्थ से देखें तो सबसे पहले सियाला आता है, फिर बिला फोंडला आता है, फिर ग्योंगला आता है, फिर चालोंगला आता है, ऐसे मतलब जो है चार प्रोमिनेंट पासेस हैं जहां से कि इसको क्रॉस किया जा सकता है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा था कि जो बिला फोंडला है इसका यूटिलाइज कर रहा था फॉर प्रमोटिंग फॉरेन माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन इन द रीजन। अब पाकिस्तान का जो ये क्लेम है इसको सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर अगर करना है, बंद करना है, तो सबसे ज्यादा पर्टिनेंट ये था कि हमें ये जो पासेस हैं इसमें हमारा नियंत्रण होना चाहिए, हमारा हक होना चाहिए। पासेस के लिए फिर उसकी जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उन पे भी नियंत्रण होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस इलाके में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस ऑर्गेनाइज करी, जिसमें कि जो आर्म फोर्सेस के आर्मी के जो एक्सपर्ट माउंटेनियर्स थे, जिसमें कि सबसे फेमस जो नाम आता है कर्नल कुमार साहब का आता है, जिनको कर्नल बुल कुमार भी बोलते हैं, और जिनके नाम पे जो है एक पोस्ट भी है सियाचिन में, उन्होंने वहाँ पे जो है माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन लॉन्च किया, जिसमें कि वो इंद्रा कॉल, सिया कांगरी वगैरह हाइट पे गए, और तभी उनको ये भी मालूम चला कि यहाँ पे पाकिस्तान जो एक्सपेडिशन करवा रहे हैं, और भी मतलब ये बात सब्सटैंशिएट हुई
2: जी,
3: इसके पुख्ता
2: सबूत
3: मिले हैं
2: जी, जी।
3: अब जब पाकिस्तान को पता चला कि इंडिया ने भी यहाँ पे एक्सपेडिशन शुरू करे हैं, तो उनको लगा कि हमें जो है इस इलाके पे कब्जा करना चाहिए, तो दे स्टार्टेड प्लानिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन टू कैप्चर दिस एरिया।
2: अच्छा, अभी तक तो सर नक्शे की लड़ाई थी,
3: अभी नक्शे की लड़ाई थी,
2: अब जमीनी लड़ाई,
3: अब जमीनी लड़ाई जो है जिसपे की आर्म फोर्सेस की लड़ाई वाली बात थी। अभी इसकी इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि इस जगह पे इस ऊंचाई पे लड़ने के लिए आपको स्पेशल क्लोथिंग चाहिए होती है, स्पेशल जो है आपको टेंट्स वगैरह चाहिए, आर्किटेक्ट टेंट्स वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट अलग से चाहिए। तो वो कहते हैं कि जहाँ पे मतलब जैसे ऑर्डर्स जब प्लेस करे थे पाकिस्तान ने
2: जी,
3: तो ये इंटेलिजेंस मिली। तो इंडिया गॉट अ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन कि भाई दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू, पाकिस्तान इज गोइंग टू लॉन्च एन ऑपरेशन।
2: अच्छा, इस षड्यंत्र का पता चल गया
3: कि हाँ, लॉन्च एन ऑपरेशन टू कैप्चर सियाचिन। इंडिया डिसाइडेड टू प्रीएम्प्ट, मतलब जो है इंडिया ने डिसाइड किया कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये इलाका हमारा है, इस पे हक हमारा है। तो इस एरिया पे उन्होंने पाकिस्तान के मंसूबों पे पानी फेरते हुए यहाँ पे अपने जो है फोर्सेस लॉन्च कर दिया।
2: अच्छा,
3: तो सबसे पहले जो है ये जो पासेस थे जिसका भी मैंने जिक्र किया, मेन जो है बिला कोंडला और स्याला, इसके ऊपर जो है इनिशियली हमने अपनी दो प्लटून स्ट्रेंथ भेजी थी। प्लटून मतलब आप ये देखिए करीब 35 से 40 लोग जो होते हैं।
2: अच्छा,
3: अब आप कहेंगे कि इतने कम लोग क्यों गए, एक तो अचानक उस इलाके में नहीं जा सकते हैं आप,
2: जी,
3: आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, आपके प्रॉपर रूट्स होने चाहिए, देन उसके बाद एक्लिमेटाइजेशन होना चाहिए, देन उसके बाद टाइम बहुत कम था
2: जी।
3: तो ये जो ट्रुप्स थे जो माउंटेनियरिंग के एक्सपर्ट थे, जो यूनिट्स वहां पे थी आसपास अल्टीट्यूड एरिया में, उनको लेके जो है
2: जी,
3: दो प्लटून जो है वहां पे गई।
2: अच्छा,
3: और इनको बाय एयर इंडक्ट किया गया था।
2: अच्छा,
3: अब जैसे हमने पहले जिक्र किया जो हेलीकॉप्टर्स हैं, अब वहां पे उनकी जो एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है
2: जी, हवा पतली हो जाती है
3: जी, और लोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो एक बार हेलीकॉप्टर सिर्फ दो जवानों को ले जाने की क्षमता रख रहे थे।
2: अच्छा,
3: हाल जी। तो सबसे पहले जो है 13 अप्रैल को पहली प्लटून जो है एयरलिफ्ट होके उन्हें बिला फोंडला के पास ड्रॉप किया गया था, और जो दूसरी प्लटून है वो 17 अप्रैल को सियाला में उनको लैंड किया गया था। अब पाकिस्तान ऑलरेडी मतलब वो तैयारी में था इसको ऑक्यूपाई करने की
2: जी।
3: जब उन्हें इस बात की भनक लगी कि इंडियन आर्म फोर्सेस ऑलरेडी वहां पहुंच गई है
2: जी,
3: तो उन्होंने भी जो है अपना ऑपरेशन तेज किया और उन्होंने बिला फोंडला पे कब्जा करने की कोशिश करी, और यहाँ से शुरू हुई लड़ाई। और जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है एट द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। इनिशियली जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रेंथ बहुत कम थी
2: जी,
3: ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये कंपनी स्ट्रेंथ से जो है, क्योंकि जब आप एक जगह पे वहां पहुंचे हैं तो आपको दूसरी जगह पे भी जाना है, उसकी डोमिनेटिंग हाइट्स भी लेनी है
2: जी,
3: फिर आपको वहां पे गन्स का सपोर्ट भी चाहिए, आपको लॉजिस्टिक बेस भी चाहिए
2: जी,
3: तो ये बढ़ते बढ़ते जो है ब्रिगेड प्लस लेवल पे स्ट्रेंथ पहुंच गई। मतलब जो एक शुरू हुई थी 60-70 बंदों से, 100 बंदों से जो शुरू हुई थी वो 4,000-4,500 तक पहुंच गई जो है। अब फाइटिंग स्टार्ट हुई, अब ऑपरेशन का साइज बढ़ता चला गया
2: जी।
3: इसमें जो ये जो ऑपरेशन किया था हमने प्रीएम्प्ट करके जो ऑक्यूपाई किया
2: जी,
3: वो एक बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही वेल प्लान्ड एंड इट वाज अ एक्सेलेंट मूव एक्चुअली। अगर हमने उस दिन यहाँ पे अपनी फोर्सेस नहीं भेजी होती
2: जी,
3: तो हो सकता है 15 दिन के अंदर जो है या सो पाकिस्तान ऑपरेशन लॉन्च करके इस पे ऑक्यूपाई कर लेता, कब्जा कर लेता, और फिर उसको हम नहीं निकाल सकते थे
2: जी।
3: तो ये मतलब एक बहुत ही इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड,
2: पहला कदम उठा के
3: हमने बहुत अच्छा
2: जंग लगभग जीत ली
3: जी, बिल्कुल जी। जो है तो ऑक्यूपेशन एंड डोमिनेशन ऑफ सॉल्टोर रिच जो है हमारे हाथ में आया, और जो ये जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है सियाचिन ग्लेशियर का और एंटायर रीजन जो है वो जो है हमारे हाथ में रहा है। तो सही, ये लड़ाई जो है काफी मुश्किल लड़ाई है, काफी ज्यादा जो है यहाँ पे हमने पहले भी बताया कि जो मौसम के कारण जो है आप सिर्फ एनिमी से नहीं लड़ते हैं,
2: मौसम से
3: ज्यादा लड़ते हैं जी है। यहाँ पे कैजुअलिटी भी जब हम देखेंगे तो मौसम के कारण ज्यादा हुई है बजाय जो है गोलियों से जो है।
2: सर, जैसे आप फौजियों की भाषा में एक सेंटेंस बोला जाता है कि पहाड़ों की जंग का एक उसूल होता है कि जो ऊंचाई पर बैठा है वही सिकंदर है।
3: बिल्कुल सही बोला
2: है, यहाँ पर ये सही है,
3: बिल्कुल सही है। ये जो फाइट थी
2: जी,
3: ये भी जो है इट वॉज अ कंट्रोल ऑफ सोल्टोरो रिज, ठीक है, जो कि 80 किलोमीटर लंबा है. तो इसको कंट्रोल करना, इसको डोमिनेट करना ही है मेन जो है. अगर आपने सोल्टोरो रिज लाइन कंट्रोल करी हुई है तो आपने सियाचिन ग्लेशियर कंट्रोल किया हुआ है. इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. आपने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बात बोली जो है. जैसे हमने तो ये इम्पोर्टेंट पासेस थे, इनको कंट्रोल कर लिया था, डोमिनेटिक हाइट्स को कंट्रोल कर लिया था. अब पाकिस्तान भी जो है स्ट्रगल कर रहा था कि किसी तरह से सोल्टोरो रिज लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं वो अपना हक जमा सके जो है. तो उसका जो फोकस था कि वो किसी तरह से बिला फांडला जो पास है उसको कब्जा कर सके, या उसके आसपास जो हाइट्स हैं उसके ऊपर जो है अपना वर्चस्व बना सके. क्योंकि अगर आपने वहां पे कोई भी हाइट भी ले ली जिससे आप जो है बिला फांडला के या कोई सियाला के पासेस में अगर आप इंटरफेयर कर सकते हैं तो भी जो है आप आधी लड़ाई जीत जाते हैं.
2: वही ऊंचाई पर बैठे रहेंगे तो आप नीचे सबको कंट्रोल कर सकते
3: हैं. एग्जैक्टली वही था. तो फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने एक लोकेशन सेलेक्ट करी एंड ये जो है काफी मतलब जो है स्टीप वर्टिकल एक हाइट थी
2: जी.
3: और उसके ऊपर जो है उन्होंने वो पोस्ट एस्टैब्लिश करी, छोटी सी बहुत पोस्ट थी. उसमें इवन जाने के लिए वो मतलब आप ये समझ के 90 डिग्री की चढ़ाई है, ठीक है. और उसको चढ़ने के लिए मतलब आपको रस्सी और लैडर के सहारे ही चढ़ सकते थे.
2: अच्छा.
3: तो उसको उन्होंने कैद पोस्ट का नाम दिया, कायदे आजम के नाम पे शायद उन्होंने. और ये जो क्या था, ये जो पोस्ट थी ये डोमिनेट करती थी बिला फांडला
2: पूरे दर्रे को,
3: जो बिला फांडला पे जो हमारी डिप्लॉयमेंट थी उसके ऊपर आ गई है. इस कारण से उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो प्रॉपर हो गया. तो उससे जो है आर्टिफायर जो है बिला फांडला पे जो है इंटेंस आने लगा. एंड इसके अलावा जो मूवमेंट होती थी, ट्रूप्स की मूवमेंट होती थी, उसमें भी वो लोग इंटरफेयर करने लगे, ठीक है. तो ये जो है कैद पोस्ट जो है इट बिकम ए मेजर प्रॉब्लम फॉर इंडियन आर्मी ड्यू टू इट्स डोमिनेंट लोकेशन एंड कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस. अब इसको कब्जा करना एक तरह से हमारे लिए निहायत जरूरी हो गया था,
2: चुनौती बन गया
3: था. चुनौती बन गया था
2: जी.
3: अब जैसे अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि ये जो लोकेशन थी इसको, लेकिन कब्जा करना जो है इसको कैप्चर करना इटसेल्फ वाज अ बिग चैलेंज. क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल हाइट थी 21,000 फीट के ऊपर और अप्रोच नहीं थी सीधा, मतलब जो है आपको क्लाइम करना है, ठीक है. अच्छा, ऊपर से एक और है कि स्नो बाउंडेड है तो वहां पे कोई कवर अवेलेबल नहीं है. आप जब मूव करते हैं तो दूर से नजर आता है, खुले में आप दिखते हैं, जैसे आप पहुंचेंगे तो नजर आएगा. इवन फायर सपोर्ट नहीं अवेलेबल हो सकता क्योंकि वो ऐसी पोस्ट थी कि आपको आसपास के वेपन भी कवर नहीं करते थे, इवन आर्टिफायर भी कवर नहीं कर पाता था. उस पोस्ट के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. एरियल से हम जो पता कर सकते थे वो तो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका लेआउट क्या था, उसमें कितने हथियार थे, क्या उसकी मैन पावर थी, उसका साइज क्या था, मतलब ये सब जानकारियां होना बहुत जरूरी होता है जब आप कोई भी ऑपरेशन ऐसे लॉन्च करते हैं. तो ये सब जानकारी हासिल करने के लिए एक पेट्रोल हम बोलते हैं कि जो एक टुकड़ी होती है जो कि जानकारी हासिल करने के लिए जाती है. उस टुकड़ी का जनरली काम यही होता है कि वो जानकारी हासिल करे, उसको हम पेट्रोल बोलते हैं. तो उसमें एक ऑफिसर साहब, एक जेसीओ साहब और 7 अदर रैंक, छोटी सी टीम थी, बहुत ही मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड पीपल. ये 24 मई को 87 को उधर गए थे, रात के टाइम मूव किया. अब वर्टिकल क्लाइम था
2: जी.
3: अब इन्होंने अच्छा ही काम किया कि जब वर्टिकल क्लाइम कर रहे थे तो साथ साथ रोप लगाते चले गए.
2: अच्छा.
3: क्योंकि ताकि जब अटैक करने के टाइम पे इसको सहायता से ऊपर जा सकते हैं. इवन उन्होंने क्या किया, वहां पे लेजेस भी बनाई थी, मतलब लेजेस मतलब इन द सेंस की जगह बर्फ काट के, ताकि वहां हम स्टोर रख सकते हैं. तो ये जो टीम है ये ऊपर पहुंची. अब ऐसा होता है ना, जैसे आप सीधे ऊपर चढ़े हैं वर्टिकल क्लाइम से और झट से आप उसके ऊपर पहुंच गए. अब वहां पे ये क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते रहे. इन्होंने जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करी. अब इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद मतलब इन्फॉर्मेशन इन द सेंस की लेआउट क्या है, उनको जो अंदाजा था
2: जी.
3: बट ये जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ रहे थे सडनली वहां से मशीन गन फायर शुरू हो गया.
2: दुश्मन ने देख लिया.
3: एंड जो ऑफिसर साहब थे साथ में, जो है इनके 4 जवान थे, वो वहीं पे मतलब जो शहीद हो गए. इट वाज इंटेंस फायर, तो जैसे वो जो रिमेनिंग सोल्जर्स थे वो किसी तरह से उन्होंने अपना को रिट्रैक्ट किया और जो है वापस अपनी पोस्ट पे पहुंचे, नीचे आए। मानने लायक वो है कि जो पेट्रोल थी ये जो वापस इंफॉर्मेशन लेके आई, इट वाज वेरी इमेंस वैल्यू, जो
2: जी, है
3: अमूल्य थी, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर जो है अटैक प्लान किया। और ये अटैक जो प्लान किया गया, जो ये शहीद हुए हैं ऑफिसर साहब और जवान, ये उनकी जो है शहादत, उनकी जो बहादुरी का एक बहुत बड़ा मतलब उनका योगदान रहा। They did a really outstanding and commendable job in this. तो वो इस information के बेस पे फिर जो है attack plan किया गया
2: जी।
3: और जून के महीने में जो है attack launch हुआ। And इस attack में भी जो force गई थी वो they were all volunteers, highly motivated people
2: जी।
3: अब ये भी मालूम था सबको कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ मतलब 90% तो ये है कि हो सकता है हम नहीं वापस आएंगे
2: जी।
3: उसके बावजूद भी आप में कितना हौसला, कितना जज्बा होता है, कितना देश प्रेम होता है, कितना अपनी यूनिट के लिए जो है प्राइड होता है, कि उसके बावजूद सब वॉलंटियर करके गए थे जो है,
2: सर पर कफन बांध के
3: गए थे। बिल्कुल सही बोला आपने जो है। और वर्टिकल स्टीप क्लाइम जो था, रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच था, तो उसमें क्या है बहुत सारे लोग भी एक साथ नहीं जा सकते, ठीक है। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, ठीक है, वेरीफाइड ऑक्सीजन है, सांस नहीं आ रहा है
2: जी।
3: और उसके बाद जो है
2: हथियारों के साथ चढ़ना
3: और ऊपर गए जो है। पहला जो अटैक हुआ उसमें जो है मतलब काफी फायरिंग चलती रही जो है। एंड उसके बाद फिर से दूसरी जगह से जो है अटैक किया, एक और पार्टी ने अटैक किया। तो वो जो एक स्मॉल टीम थी उसको नायब सुधा बाना सिंह साहब लीड कर रहे थे, जेसी साहब, उनके साथ सिक्स सोल्जर्स और थे, वो किस ऊपर पहुंचने में सफल रहे। एंड उन्होंने वहां जाके पोस्ट के ऊपर अटैक किया ग्रेनेड से और स्मॉल आर्म से। पाकिस्तानी सोल्जर जो थे वहां पे उन्होंने भी जो है डट के मुकाबला किया, जवाब दिया, लेकिन फाइनली द इंडियन सोल्जर्स और जो है इस पोस्ट के ऊपर कब्जा किया। तो ये जो पोस्ट है फिर इसी को हम आज बाना पोस्ट के नाम से जानते हैं, नायब सुधार बाना सिंह साहब। आफ्टर दैट ही बिकेम ऑनरी कैप्टन, ठीक है, जिन्होंने असॉल्ट लीड किया था उनके ऑनर में ये पोस्ट उनके नाम से जानी जाती है,
2: परमवीर चक्र विजेता।
3: जी, he was awarded the highest gallantry award, परमवीर चक्र, for his outstanding bravery and leadership, ना, under most adverse conditions. मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशन हुआ था इस conditions में, by the way मैंने खुद देखी वो पोस्ट और वो रियली वर्टिकल हाइट है, उस पे चढ़ना मतलब इट्स रियली इम्पॉसिबल। जब हेलीकॉप्टर भी जाता है तो बिल्कुल जाके ऊपर जाके बैठ जाता है, ऐसा लगता है। It was unparalleled in the history, I believe. It was one of the best operations ever carried out. Okay. And we salute this brave soldiers who participated in this and brought us pride.
2: वाकई में सर, बाना सिंह सर की इस परमवीरता को नमन है जिनके कारण हम इस महत्वपूर्ण पोस्ट को अपने कब्जे में ले पाए। श्रोता, सियाचिन की ये जंग सन 1984 में उसी दिन समाप्त नहीं हुई। आज भी इस वक्त जब आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारी सेना के जवान -50 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में सेना ताने वहां खड़े हैं। दुश्मन से ज्यादा घातक वहां का बर्फीला मौसम, फ्रॉस्ट बाइट, लो ऑक्सीजन और बर्फीले तूफान में भी उनके हौसलों को डिगाया नहीं जा सकता। ये गौरव गाथा आगे भी जारी रहेगी हमारे कार्यक्रम की अगली कड़ी में। सर, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने ऑपरेशन मेघदूत के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू पूर्वा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं।
2: तो श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश पाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। अब दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

श्रोताओं, शहीद बिरसा मुंडा जी के बलिदान दिवस के मौके पर स्मरण उत्सव के तहत शहीद भवन में निमाणी लोक गायन की प्रस्तुति दी गई। अरे!

0: कलाकार थे शिव भाई गुप्ता और उनके साथ ही। आइए सुनते हैं निमाणी लोक गायन। ये इस कार्यक्रम का पहला भाग है।
1: आज श्री शिव भाई गुप्ता निमाणी लोक गायन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। देवी और सज्जनों, आपको हम बता दें कि विगत 32 वर्षों से आप कला जगत में सक्रिय हैं। गायन के साथ साथ आपने लगभग 2000 गीतों की रचना की है तथा उसे संगीतबद्ध भी किया है। आपके अनेक एल्बम्स रिलीज हुए हैं तथा सोशल मीडिया पर भी आपके हजारों फॉलोअर्स हैं। आपने अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री शिव भाई गुप्ता जी का। सभी कलाकार इस वक्त मंच पर हैं। कलाकारों से आपका परिचय हम करवा दें। सहगायक

0: माता की
1: जय हो।
0: एक छोटी सी रचना आज बिरसा मुंडा जी, जिनकी शहादत दिवस है, उसी उपलक्ष्य में एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।

हिंदुस्तान का भारतवासी भाई ने के लिए संदेश है, आशा माता भारती का लाल, चाहे टंटिया मामा हो, बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह जी हो, सुभाष चंद्र जी बोस हो,

0: बोलो भारत माता की
1: जय हो,
0: बिरसा मुंडा भगवान की
1: जय हो।
0: जो हमारा बिरसा मुंडा जी की जितना महिमा चरित्र चित्रण बोला उतनी कम है, पर एक कलाकार को प्रयास है। देखो आज भी कहावत है, ये आजादी बड़ी अनमोल है,

0: ये देश का युवा न कहीं को संदेश है इस मंच का माध्यम से एक छोटा सा गायक।
1: बड़ी मुश्किल से आजादी रे मिली भारत का नौजवान तुम जा जो मत भूले।

0: देखता वो आनंद है।
1: आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शिव भाई गुप्ता और साथियों का निमाणी लोक गायन। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

भी धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, एयरोस्पेस का क्या अर्थ है, हाल किस तरह से अनुसंधान, डिजाइन और विकास के माध्यम से भारत की वायु शक्ति को सशक्त बनाता है, एवियोनिक्स और MRO जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का क्या महत्व है और देश के युवा किस तरह विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हाल जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं का हिस्सा बन सकते हैं।
0: लेकिन हाल की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण से आगे बढ़कर हाल भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों, विमान इंजनों, अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों और भविष्य की स्वदेशी तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: तो आइए श्रोताओं, देश के संस्थान की इस विशेष श्रृंखला विज्ञान से तकनीक की ओर, इसमें अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि हाल किस तरह भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दे रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है दादू और रुचि का रोचक संवाद।
2: अरे रुचि बेटा, कहाँ हो?
3: आई दादू।
2: अरे इधर आओ बेटा, जल्दी आओ।
3: आई दादू।
2: अरे अरे अरे, धीमे बेटा, आराम से आओ, कहीं गिर मत जाना।
3: चिंता मत करिए दादू, मैं बिल्कुल संभल कर आई हूँ और ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। मैंने वादा किया था ना कि अगली बातचीत में मैं आपको अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगी।
2: अरे वाह बेटा, चाय की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। थैंक यू बेटा।
3: अब मुझे जल्दी से बताइए कि आप आज क्या पढ़ रहे हैं?
2: बेटा अभी तो दिन शुरू हुआ है। आज अखबार में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल के बारे में कुछ रोचक लेख छपा है बेटा।
3: अच्छा?
2: हाँ
3: दादू, मुझे याद है आपने पिछली बार हाल के बहुत सारे रोचक तथ्यों के बारे में बताया था। आज ये बताइए कि आज क्या क्या नया जानने को मिलने वाला है दादू की प्यारी रुचि बिटिया को।
2: देखो बेटा, आज हम जानेंगे हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर ही नहीं बनाता, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों और भविष्य की रक्षा तकनीकों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।
3: अंतरिक्ष कार्यक्रम? यानी हाल और इसरो का भी कोई संबंध है दादाजी?
2: हाँ बिटिया, और बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जब हम इसरो की सफलताओं की बात करते हैं तो उसके पीछे कई भारतीय संस्थानों का योगदान होता है, जिनमें हाल भी शामिल है।
3: वो कैसे दादू?
2: हाल रॉकेटों और उपग्रह प्रक्षेपण यानों के लिए अनेक महत्वपूर्ण संरचनात्मक भाग, ईंधन टैंक, यांत्रिक अवयव और विशेष तकनीकी उपकरण तैयार करता है बेटा। इनका उपयोग अंतरिक्ष अभियानों में किया जाता है।
3: वाह, यानी हाल का काम केवल आकाश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच अंतरिक्ष तक भी है।
2: बिल्कुल बेटा, जब कोई भारतीय उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित होता है या कोई प्रक्षेपण यान सफलतापूर्वक उड़ान भरता है, तब उसके पीछे अनेक वैज्ञानिक संस्थानों की सामूहिक मेहनत होती है बेटा। हाल भी उस सफलता का एक महत्वपूर्ण भागीदार होता है।
3: ये तो बहुत ही कमाल की बात है दादू।
2: निश्चित रूप से कमाल की बात है बेटा, यही तो भारत की ताकत है। देश के विभिन्न संस्थान मिलकर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं।
3: दादू, आपने बताया था कि हाल अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी अपना योगदान देता है, तो वो किस तरह से भला?
2: अरे जरा ठहरो बिटिया, सब कुछ बताऊंगा, आराम से, थोड़ा क्रम से चलते हैं बेटा।
3: अच्छा ठीक है दादू।
2: तुम बहुत नटखट हो बेटा। सुनो बेटा, जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना तुम्हें कि किसी भी विमान का दिल होता है उसका इंजन। क्या बताया था?
3: कि किसी भी विमान का दिल होता है उसका इंजन।
2: हाँ, जैसे हमारे शरीर में हृदय रक्त का संचार करता है, वैसे ही इंजन विमान को शक्ति प्रदान करता है। यदि इंजन ना हो तो विमान उड़ ही नहीं सकता।
3: आपने बताया था कि हाल इंजन भी बनाता है।
2: हाँ बिटिया, हाल विभिन्न प्रकार के विमान और हेलीकॉप्टर इंजनों के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन का कार्य करता है बेटा। इसके साथ ही स्वदेशी इंजन तकनीक विकसित करने के प्रयासों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: यानी केवल विमान ही नहीं बल्कि उन्हें उड़ाने वाली शक्ति भी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
2: यही तो स्वदेशी तकनीक की असली पहचान है। जब किसी देश के पास अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान और अपनी निर्माण क्षमता होती है तब वो दूसरे देशों पर कम निर्भर रहता है।
3: अच्छा दादू।
2: हाँ बेटा।
3: क्या हाल भविष्य के लिए भी नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है?
2: बिल्कुल कर रहा है बेटा, और यही तो सबसे रोमांचक बात है। हाल कई अत्याधुनिक परियोजनाओं से जुड़ा हुआ है बेटा।
3: जैसे?
2: जैसे सबसे पहले है AMCA, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये भविष्य की पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान होगा बेटा, जिसमें आधुनिक स्टील्थ तकनीक और उन्नत प्रणालियां होंगी।
3: क्या सच में दादू, स्टील्थ तकनीक और उन्नत प्रणालियां होंगी? इसका क्या मतलब है
2: बिटिया? स्टील्थ तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिससे विमान दुश्मन के रडार पर बहुत कम दिखाई देता है या उसे पहचानना कठिन हो जाता है। विमान की विशेष बनावट, सामग्री और डिजाइन उसकी रडार पहचान को कम करने में मदद करते हैं।
3: यानी दुश्मन को उसकी मौजूदगी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।
2: हाँ बेटा, इससे विमान अपनी जिम्मेदारियाँ अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से निभा सकता है।
3: और ये उन्नत प्रणालियाँ क्या होती हैं दादाजी?
2: उन्नत प्रणालियों में आधुनिक रडार, संचार उपकरण, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर, कंप्यूटर आधारित नियंत्रण प्रणालियाँ और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा उपकरण शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर पायलट को बेहतर जानकारी देते हैं और विमान की क्षमता को बढ़ाते रहते हैं।
3: यानी भविष्य के विमान केवल तेजी नहीं होंगे बल्कि अधिक बुद्धिमान और सुरक्षित भी होंगे।
2: बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। आधुनिक तकनीक का उद्देश्य केवल गति बढ़ाना नहीं है बल्कि सुरक्षा, सटीकता और कार्य कुशलता को भी बेहतर बनाना होता है।
3: वाओ दादाजी, कितना कूल है ये तो। और बताइए ना दादू उसके बारे में।
2: बेटा इसके अलावा हाल का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर परियोजना पर भी बेहतरीन कार्य चल रहा है। ये एक ऐसा लड़ाकू विमान होगा जो विमान वाहक पोतों से उड़ान भर सकेगा और भारतीय नौसेना की शक्ति को और बढ़ाएगा।
3: और IMRH ये क्या है दादू?
2: इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। क्या बोला मैंने?
3: इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर।
2: ये भविष्य का बहु उद्देशीय हेलीकॉप्टर होगा बेटा।
3: अच्छा।
2: जिसका उपयोग सैनिकों के परिवहन, राहत एवं बचाव कार्यों और विशेष अभियानों में किया जा सकेगा।
3: मतलब दादाजी, हाल केवल आज की नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी तैयारी कर रहा है।
2: बिल्कुल सही, शाबाश, सही समझा तुमने बेटा।
3: दादू, आजकल हम अक्सर आत्मनिर्भर भारत की बात सुनते हैं, इसमें हाल की क्या भूमिका है?
2: बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा इसकी। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल भारत में वस्तुएं बनाना नहीं होता बल्कि अपनी तकनीक, अपना अनुसंधान, अपने वैज्ञानिक और अपनी निर्माण क्षमता को विकसित करना भी होता है।
3: यानी जब हम अपने विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और रक्षा प्रणालियां स्वयं बनाएंगे तब हम और अधिक आत्मनिर्भर बन जाएंगे दादाजी।
2: हाँ, हाल इसी दिशा में निरंतर काम कर रहा है बेटा, और यही कारण है कि आज ये संस्था भारत की तकनीक क्षमता, नवाचार और आत्मविश्वास का प्रतीक बन चुकी है।
3: दादू, आज मुझे समझ में आ गया कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है बल्कि ये विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत की एक अहम संस्था है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। हाल ने केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है बल्कि भविष्य की तकनीकों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया है। और यही कारण है कि ये संस्था भारत की वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है।
3: और अब तो मुझे हाल के विमानों और हेलीकॉप्टरों के बारे में और भी जानने की उत्सुकता हो रही है दादाजी।
2: तो फिर तैयार हो जाओ बिटिया, क्योंकि अब हम जानेंगे हाल की उन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाइयां दी बेटा।
3: ये तो मैं जानती हूँ कि अब आप मुझे क्या बताने वाले हैं दादाजी।
2: सच में?
3: यार।
2: अच्छा मेरी चुटकी जादूगर, बताओ मैं क्या बताने वाला हूँ अब आगे।
3: अब आप ये बताने वाले हैं कि हमारे स्वदेशी विमानों की स्टोरीज क्या होने वाली है।
2: हाँ वाह, तुम तो सच में मन की बातें जानने लगी हो बेटा।
3: आखिर पोती किसकी हूँ?
2: अच्छा
3: चलिए दादाजी अब बताइए भी।
2: हाँ बेटा सुनो, भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान HF-24 मरुत, आधुनिक हल्के लड़ाकू विमान तेजस, बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर ध्रुव, सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र और अत्याधुनिक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की प्रेरणादायक कहानी।
3: वाह दादू, उन भारतीय विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी जो हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का प्रतीक है।
2: बिल्कुल बिटिया, तुम ये जानकर आश्चर्यचकित रह जाओगी कि इन विमानों और हेलीकॉप्टरों के निर्माण के पीछे वर्षों का अनुसंधान, हजारों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के धैर्य और कई रातों की नींदों का अनुभव छिपा हुआ है।
3: दादू क्या हर विमान की अपनी अलग विशेषता होती है?
2: हाँ बिटिया बिल्कुल होती है। कोई विमान दुश्मन के विमानों का मुकाबला करने के लिए बनाया जाता है, तो कोई सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए, तो कोई कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए और सैनिकों को ले जाने के लिए। इसी तरह हर हेलीकॉप्टर भी अपनी विशेष भूमिका निभाता है।
3: यानी हाल ने समय समय पर देश की आवश्यकताओं के अनुसार नए विमान और हेलीकॉप्टर विकसित किए हैं।
2: हाँ बेटा, ये केवल विमानों और हेलीकॉप्टरों की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास की कहानी भी है।
3: तो दादाजी सबसे पहले हम किसके बारे में जानने वाले हैं?
2: हम शुरुआत करेंगे HF-24 मरुत के बारे में बेटा। ये भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान था। जब देश स्वतंत्रता के बाद अपनी तकनीकी क्षमता विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, तब स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाना एक बहुत बड़ा सपना माना जाता था।
3: और क्या वह सपना सच हुआ?
2: हाँ बेटा, अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने HF-24 मरुत का निर्माण किया। ये केवल एक विमान नहीं था बेटा, बल्कि इस बात का प्रमाण था कि भारत भी उन्नत एयरोस्पेस तकनीक विकसित कर सकता है।
3: यानी मरुत ने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाया।
2: बिल्कुल बनाया, मरुत ने भारत में विमान निर्माण की मजबूत नींव रखी बेटा।
3: और दादाजी तेजस के बारे में मैं अक्सर समाचारों में सुनती हूँ।
2: तेजस भारत का आधुनिक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे अत्याधुनिक तकनीकों से विकसित किया गया है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स, उन्नत नियंत्रण प्रणालियां और आधुनिक युद्ध क्षमताएं हैं।
3: तो क्या ये पूरी तरह भारतीय तकनीक से बना है दादाजी?
2: तेजस भारत की स्वदेशी क्षमता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके विकास में देश के अनेक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिकों और उद्योगों का योगदान रहा है।
3: तो दादाजी तेजस केवल एक विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी है।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने। वहीं अगर ध्रुव के बारे में बात करें तो ये एक बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर है बेटा।
3: दादू और क्या खास बात है ध्रुव की?
2: ध्रुव का उपयोग सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और नागरिक सेवाओं द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है बेटा।
3: कौन कौन से कार्य दादू?
2: सैनिकों का परिवहन, राहत एवं बचाव अभियान, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा सहायता, पर्वतीय क्षेत्रों में आपूर्ति पहुंचाना और कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य बेटा।
3: यानी एक ही हेलीकॉप्टर कई प्रकार की जिम्मेदारियां निभा सकता है।
2: यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है बेटा। ध्रुव शक्ति और सुरक्षा का संगम है।
3: और रुद्र?
2: रुद्र ध्रुव हेलीकॉप्टर का सशस्त्र संस्करण है। इसमें आधुनिक हथियार प्रणालियां और निगरानी उपकरण लगाए गए हैं।
3: तो ये केवल उड़ान भरने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा अभियानों के लिए भी उपयोगी है।
2: बिल्कुल है बेटा। ये कठिन परिस्थितियों में भी सेना को प्रभावी सहायता प्रदान कर सकता है।
3: और प्रचंड का नाम तो दादाजी बहुत प्रभावशाली लगता है मुझे।
2: जैसा कि नाम से प्रचंड है क्योंकि बेटा इसकी क्षमताएं भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। प्रचंड एक आधुनिक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे विशेष रूप से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संचालन के लिए विकसित किया गया है।
3: यानी जहां सामान्य हेलीकॉप्टरों को कठिनाई हो सकती है वहां भी ये काम कर सकता है।
2: हाँ, यही कारण है कि ये भारतीय सेनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा।
3: दादू, क्या हाल के बनाए विमान विदेशों में भी जाते हैं?
2: हाँ बेटा, हाल के हेलीकॉप्टर और विमान कई देशों तक पहुँचे हैं। इससे भारत की तकनीकी क्षमता का विश्व में सम्मान बढ़ा है।
3: दादू, इसका मतलब इन सभी उपलब्धियों का आत्मनिर्भर भारत से भी सीधा संबंध है।
2: बिल्कुल है बेटा। जब कोई देश अपने विमान, हेलीकॉप्टर, तकनीक और रक्षा प्रणालियां स्वयं विकसित करता है ना, तब उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं।
3: यानी हमें हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
2: स्वदेशी तकनीक न केवल सुरक्षा को मजबूत करती है बल्कि विज्ञान, उद्योग, रोजगार और अनुसंधान को भी बढ़ावा देती है बेटा।
3: दादाजी, अब समझ में आया कि हाल की उपलब्धियाँ केवल तकनीकी उपलब्धियाँ नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की उपलब्धियाँ भी है।
2: सही कहा बेटा तुमने। इन उपलब्धियों के पीछे हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और टेक्नीशियनों और कर्मचारियों का समर्पण छिपा हुआ है। क्योंकि जब सपनों को विज्ञान का साथ मिलता है तब जन्म लेती हैं नई उड़ानें।
3: और जब देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर मिलकर काम करते हैं ना, तब आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होता है।
2: सही कहा बेटा तुमने। विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार ही विकसित और आत्मनिर्भर भारत की नींव है।
3: दादू, जब मैं तेजस या प्रचंड जैसे विमानों के बारे में सुनती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि इन्हें बनाना कितना कठिन होता होगा।
2: बहुत कठिन है बेटा। किसी भी विमान या हेलीकॉप्टर का निर्माण केवल कारखाने में पुर्जे जोड़ देने भर का काम नहीं होता। इसके पीछे वर्षों का अनुसंधान, डिजाइन, परीक्षण और सुधार की बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है।
3: यानी पहले उसकी योजना बनाई जाती होगी दादाजी।
2: हाँ बेटा, सबसे पहले वैज्ञानिक ये तय करते हैं कि विमान किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है। उसके बाद इंजीनियर उसकी संरचना, वजन, गति, सुरक्षा और तकनीकी प्रणालियों का डिजाइन तैयार करते हैं।
3: और फिर से उड़ाया जाता होगा?
2: नहीं, उससे पहले कंप्यूटर सिमुलेशन, प्रयोगशाला परीक्षण और जमीन पर कई तरह की जांच की जाती है बेटा। जब सभी परीक्षण सफल हो जाते हैं तभी परीक्षण उड़ान की अनुमति मिलती है।
3: मतलब एक सफल उड़ान के पीछे वर्षों की तपस्या होती है।
2: हाँ बेटा, जब हम किसी विमान को आकाश में उड़ते देखते हैं तब हमें केवल उसका परिणाम दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे हजारों लोगों का परिश्रम और समर्पण होता है।
3: दादू, इन स्वदेशी विमानों और हेलीकॉप्टरों से हमारी सेनाओं को क्या लाभ होता है?
2: बहुत लाभ होता है बेटा। सबसे बड़ा लाभ है आत्मनिर्भरता। यदि हमारे पास अपनी तकनीक और अपने विमान हैं, तो आवश्यकता अनुसार उनमें सुधार और उन्नयन भी हम स्वयं कर सकते हैं।
3: यानी हमें हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।
2: हाँ बेटा, इसके साथ ही देश में अनुसंधान, उद्योग, रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलता है। यही कारण है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन किसी भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है बेटा।
3: दादू, क्या आज के विद्यार्थी भी भविष्य में ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं?
2: क्यों नहीं बन सकते? यदि विद्यार्थी विज्ञान, गणित और तकनीक में रुचि रखें, जिज्ञासु बने रहें और निरंतर सीखते रहें, तो वे भी भविष्य में हाल DRDO, इसरो या अन्य वैज्ञानिक संस्थानों में कार्य कर सकते हैं।
3: यानी आज की पढ़ाई कल देश की शक्ति बन सकती है दादाजी।
2: बिल्कुल। आज की कक्षा में बैठा कोई छात्र भविष्य में नया विमान डिजाइन कर सकता है बेटा, नया इंजन विकसित कर सकता है या ऐसी तकनीक बना सकता है जो देश की सुरक्षा को नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दे।
3: वाह, अब तो मुझे भी लगने लगा है दादू कि विज्ञान केवल किताबों का विषय नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी माध्यम है।
2: और यही तो हमारी इस पूरी बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है बेटा।
3: हाँ दादू, आज हमने जाना कि हाल केवल विमान और हेलीकॉप्टर बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि यह विमान इंजनों, अंतरिक्ष कार्यक्रमों, भविष्य की रक्षा तकनीकों और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।
2: तो चलो रुचि बेटा, इसी बात पर मिलकर कहें जय हिंद। अच्छा, एक कप चाय और ले आओ।
3: अरे दादू, आप भी ना, बार बार चाय, रुकिए लेकर आती हूँ।
2: थैंक यू बेटा।
1: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे थे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की, जो है आकाश की शक्ति का निर्माण। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना
2: और मैं दीपक निमा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।
2: नमस्कार।

यातायात के नियम आपकी हिफाजत के लिए हैं। गाड़ी चलाते समय अनावश्यक ओवरटेक ना करें। गाड़ी की गति पर नियंत्रण रखें। तेज स्पीड से गाड़ी ना चलाएं। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार पंडित नारायण ब्रज।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1830 में बनारस में हुआ था। उन्होंने बचपन में लिखाई पढ़ाई के साथ साथ हथियार चलाना भी सीख लिया था। 14 साल की उम्र में उनका विवाह महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। गंगाधर राव की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने दामोदर राव को दत्तक पुत्र बना लिया। 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात डलहौजी की हड़प नीति के चलते अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने अधीन कर लिया। 1857 में जैसे ही मेरठ के सैनिकों ने ब्रिटिश हुकूमत की खिलाफत की, रानी ने भी झांसी की बागडोर अपने हाथ में लेकर अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। वे क्रांतिकारी सिपाहियों की मदद करने लगी। उन्होंने काफी समय तक झांसी किले की रक्षा की, लेकिन 1858 में अंग्रेजों ने एक बार फिर झांसी पर हमला किया। रानी की 14,000 सैनिकों की फौज ने 2 हफ्तों तक अंग्रेजी फौज का मुकाबला किया और अंततः रानी को झांसी छोड़कर कालपी जाना पड़ा। अंग्रेजों ने रानी को पकड़वाने वाले को 20,000 रूपये का इनाम देने की घोषणा की। झांसी की रानी को मर्दानी की संज्ञा सबसे पहले अंग्रेजों ने ही दी थी। कालपी में रानी ने तात्या टोपे के साथ मिलकर भावी रणनीति बनाई और ग्वालियर को अंग्रेजों से छीन लिया। अंग्रेजों ने ग्वालियर वापस पाने के लिए फिर उनसे मुकाबला किया। 17 जून 1858 को युद्ध में लड़ते लड़ते रानी वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई हमेशा के लिए वीरता, साहस और शौर्य का प्रतीक बन गईं।

0: घंटे भर से प्याज और मिर्ची लगा दी है, बता रहे हैं ना, रोटी का पता है ना दाल का पता है,
1: और कुछ बोलो तो बुरा मान जाते हैं।
0: अरे गजबी है काका, अरे दाल तो भिजवा दो इधर।
2: अरे आ रही है भाई, लड़का ला तो रहा है, अरे दाल लगा दे जल्दी से इधर।
3: और ये कहाँ का गाना लगा दिया रेडियो पर?
2: क्यों, क्या बुराई है इसमें?
1: अरे बुराई की बात नहीं है, अरे सुनवा दो कचू चटपटा सुनवाओ।
3: और नहीं ऐसे
1: कचू भी करते यार,
3: अब तो मजा आया।
2: अरे चटपटे बटपटे ही गाने सुनते रहोगे, या कभी उनके भी गाने सुन लिया करो जो देश के लिए शहीद हुए हैं। ये कोई चलता हुआ गाना नहीं है, 150 बरस से बुंदेलखंड के गांव गांव में गाया जाता रहा है ये लोकगीत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी।
0: झांसी वाली रानी? काका सुना तो बहुत कुछ है इसके बारे में,
1: पर मालूमात कुछ भी नहीं है काका।
2: अरे तो फिर हम किस लिए हैं?

0: मन में ठानी थी।
1: सन 1857 ईस्वी में प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की फौजों को शिकस्त देने के बाद फिरंगी ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते कदमों को रोक पाना असंभव सा हो गया था। बंगाल और बिहार के साथ साथ समूचा अवध उसके खूनी चंगुल में आ चुका था। इधर पूना की पेशवाई को तहस नहस कर कंपनी सारी देशी रियासतों को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेने के लिए नित नए मंसूबे गढ़ रही थी। इन्हीं मंसूबों के तहत पूना के बाजीराव पेशवा को अपना सब कुछ छोड़कर दूर कानपुर के पास बिठूर की छोटी सी जागीर पर संतोष करना पड़ा। पेशवा के विश्वस्त सहयोगी मोरोपंत भी उन्हीं के साथ बिठूर चले आए। साथ में थी उनकी इकलौती बेटी मनुबाई, जो आगे चलकर लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। बाजीराव पेशवा निसंतान थे, अतः उन्होंने एक बालक को गोद लिया। नाम था नाना धुंधु पंत, जिन्हें आगे चलकर महान क्रांतिकारी नाना साहब के नाम से जाना गया। और मनुबाई इन्हीं नाना की मुंहबोली बहन थी।
0: हर चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में।
1: नाना साहब और तात्या टोपे के साथ हर तरह के हथियार चलाने में निपुण होने के साथ साथ मनुबाई राजनीतिक दांव पेचों को भी बारीकी से समझती जा रही थी। इन्हीं दिनों झांसी के राजा गंगाधर ने मनुबाई को विवाह का प्रस्ताव भेजा।

0: अब आप इस झांसी की महारानी हैं। दास दासियां, सेवक चाकर सब आपकी सेवा में हाजिर हैं। जिस चीज की इच्छा हो बस इशारा भर कीजिए कि हाजिर।
1: जिस भी चीज की?
0: हाँ, जिस चीज की भी।
1: तो ठीक है, कुछ बहुत अच्छे घोड़े,
0: घोड़े
1: कुछ बंदूकें, कुछ तलवारें, ढाल, बर्चियां, भाले।
0: रानी, ये आप क्या?
1: महाराज, आपने मुझे अपनी रानी का सम्मान दिया है तो मैं उसी के अनुकूल वो सब कुछ तुरंत आरंभ कर देना चाहती हूँ जो एक रानी के नाते मुझे करना चाहिए। मैं यहाँ स्त्रियों को फौजी प्रशिक्षण दूंगी ताकि वक्त आने पर वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकें।
0: ठीक है, जैसी आपकी इच्छा।
1: शाबाश, हम सबकी अब एक अच्छी खासी घुड़सवार टुकड़ी तैयार हो चुकी है, लेकिन मैं इतने पर भी सब्र नहीं करने वाली। मैं चाहती हूँ तुम्हें तोपे चलाने का भी भरपूर मौका दिया जाए। क्यों गुलाम गौस खां?
2: जो हुक्म रानी साहिबा।
3: इसी बीच रानी ने एक बालक को जन्म दिया। झांसी में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। नवजात राजकुमार असमय राजा रानी को रोता बिलखता छोड़ चले गए। रानी ने जल्द ही अपने दुख पर काबू पा लिया, लेकिन राजा जी ये आघात सहन न कर सके, वे बीमार रहने लगे। रानी ने इन हालात में हिम्मत से काम लिया और शासन के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया।
0: रानी, मेरा विचार है अपने ही वंश का कोई बालक गोद ले लिया जाए।
1: जैसी आपकी इच्छा महाराज, शायद विधाता की भी यही मर्जी है, वरना आपका उत्तराधिकारी यूं आकर भी गोद क्यों सूनी कर जाता।
0: तो जिस बालक को तुम उचित समझो गोद लेने के लिए चुन लो। मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी हो ये रस्म पूरी कर ली जाए।
1: जी अच्छा।
0: मैं झांसी का राजा गंगाधर राव आज विधि और विधान के अनुसार अपने पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में दामोदर राव को अपने दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण करता हूँ और घोषित करता हूँ कि दामोदर राव मेरे बाद इस राजगद्दी के असली वारिस होंगे। दीवान जी।
4: जी महाराज।
0: कंपनी बहादुर को इस बाबत एक खत तुरंत भेजा जाए।
4: जो हुक्म महाराज।
3: गोद लेने की रस्म पूरी होने के कुछ ही दिनों बाद अचानक राजा गंगाधर राव स्वर्ग से धार गए। 18 बरस की कच्ची उम्र में रानी लक्ष्मीबाई पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन संकट की घड़ियों में रानी ने असीम धैर्य और साहस का परिचय दिया। अपने नाबालिग दत्तक पुत्र दामोदर राव को गद्दी पर बिठाकर रानी ने उसकी संरक्षिका के रूप में शासन की बागडोर संभाल ली। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल डलहौजी ने किसी भी राजा के दत्तक पुत्र को वारिस के रूप में मान्यता न देने की एक अजब सी नीति चला रखी थी।
5: रानी साहिबा, हम लॉर्ड साहब डलहौजी का फरमान लेकर आया है। हम आपको बताना मांगता है कि झांसी का राजगद्दी खाली है।
1: खाली कैसे? इस पर महाराज के वारिस दामोदर राव बैठे।
5: लेकिन उनको गद्दी पर बैठने का इख्तियार नहीं है।
1: क्यों नहीं? वो बाकायदा गोद लिए बेटे हैं, दत्तक पुत्र हैं।
5: नो नो नो, हिज एक्सीलेंसी गोद लिया बेटा को कानूनी वारिस नहीं मानता है।
1: उनके मानने न मानने से क्या होता है? हमारे शास्त्रों में विधान है कि दत्तक पुत्र असल पुत्र की जगह होता है।
5: नो, अगर गवर्नर जनरल नहीं मानता है तो नहीं माना जाएगा, दैट्स ऑल। आज और इसी वक्त से झांसी पर आपका हुकूमत खत्म होता है। झांसी स्टेट कंपनी बहादुर की हुकूमत में शामिल होता है।
1: नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।
6: रानी साहिबा, फिरंगी फौजों ने झांसी पर घेरा डाल दिया है और हम इनका मुकाबला करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। मेरी विनती है रानी साहिबा, इस वक्त सब्र से काम ले वरना झांसी बर्बाद हो जाएगी।
1: शायद आप ठीक कहते हैं दीवान जी, ठीक है। आज मेरे देखते देखते जो झांसी हांसते जा रही है, एक ना एक दिन मैं इसे वापस लेकर रहूंगी और वो दिन जल्द ही आएगा।
3: अंग्रेज बेखबर थे और रानी बड़ी होशियारी से अपनी तैयारी में व्यस्त थी। आसपास के इलाकों में घूम घूम कर वो जंगल, पहाड़ों, नदी नालों का युद्ध की दृष्टि से जायजा भी ले रही थी और जनमानस को भी टटोल रही थी। इस दौरान तात्या टोपे, नाना साहब और अन्य क्रांतिकारियों से उसका निरंतर संपर्क कायम था।
7: मनु?
1: हाँ तात्या, मैंने तो अपनी तरफ से काफी तैयारी कर ली है। देसी पलटन की एक बड़ी टुकड़ी मेरा साथ देने तैयार है, लड़कियों की भी एक बड़ी टुकड़ी तैयार है। इसके अलावा फिरंगियों ने जो हमारी फौज भंग की थी उसके भी ज्यादातर फौजी हमारे साथ हैं।
7: वाह, बहुत अच्छी तैयारी है। मैं भी अवश्य दिल्ली तक घूम घूम कर सबसे मिलता रहा हूँ। रुपया पैसा भी काफी जमा हो चुका है। सन्यासी और फकीरों के वेश में अपने साथी गाँव गाँव शहर शहर घूमते हुए विद्रोह की अलग जगा रहे हैं। नाना साहब और अजीमुल्ला खां का कई हिंदुस्तानी फौजियों से संपर्क कायम है,
1: दूर दूर तक सबको एकता के सूत्र में बांध रहे हैं।
7: मनु, अहमद शाह की खैरावादी की जोशीली तकरीरों ने मुर्दों में नई जान फूंक डाली है। लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। फिरंगी फौजों के हिंदुस्तानी सैनिक बस उस दिन के इंतजार में हैं कि इशारा पाते ही वो एक साथ फिरंगियों पर मौत बनकर टूट पड़ेंगे।
1: कोई तारीख तय हुई?
7: बात चल रही है मनु, बस पक्की होते ही खबर पहुँचा दूंगा।
1: तो ठीक है। वैसे शाहगढ़ के बखत बली और बानपुर के मर्दन सिंह मेरे संपर्क में हैं। वो लोग बांदा के नवाब को भी साथ लेने की तैयारी कर चुके हैं। अब बस तुम्हारी तरफ से इशारे की देर है। फिरंगी फौजों ने बानपुर फतेह कर लिया है और अब वो झांसी की तरफ बढ़ रही हैं। तात्या टोपे को संदेश भेजा है कि मदद के लिए फौरन आ जाएं। गुलाम गौस खान
2: जी, सरकार
1: आपकी तोपे तैयार है?
2: जी, हर तोप तैयार है। कुछ तोपों की मरम्मत भी पूरी हो चुकी है।
1: ठीक है सुंदर।
8: जी रानी साहिबा।
1: झांसी के आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ घास नजर आए उसे जला डालो, जहाँ जहाँ घने दरख्त हो उन्हें गिरा दो। मैदानी इलाका इतना उजाड़ हो कि फिरंगी फौजों को न चारा नसीब हो न दरख्तों का साया। रसद मिलने के भी सारे ठिकाने खत्म कर डालो। इस काम पर अलग अलग दिशाओं में अपनी टुकड़ियाँ फौरन लगा दो। मुंद्रा, मुझे दूरबीन दे। सर हीरोज भारी नाव लश्कर के साथ बढ़ा आ रहा है। गुलाम गौस खां, मेरा इशारा मिलते ही अपनी शानदार घन गर्जन तोप को दाग देना।
2: जी सरकार।
1: दागो। आज इसी वक्त से झांसी आजाद है। मैं दामोदर राव के सरपरस्त की हैसियत से झांसी की गद्दी संभालूंगी। ऐलान किया जाए।
9: फलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, राज रानी लक्ष्मीबाई का।

0: ओह, इसका मतलब हमारा किला पूरी तरह फिरंगियों के लिए खुल चुका है।
1: फिरंगी फौजें किसी वक्त किले में दाखिल हो सकती हैं।
0: तो ठीक है, तुम सब लोग सुरंग के रास्ते किले से बाहर निकल जाओ। मैं तोपखाने के बारूद भंडार में जाकर खुद को खत्म कर लूंगी।
2: नहीं, ये नहीं हो सकता।
3: जब किसी तरह मरना है तो आप अकेली क्यों रानी साहिबा? हम सभी मरेंगे।
4: हम भी इसी तरह जान दे देंगे, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे।
1: हम सिर्फ कमजोर हुए रानी जी, हारे नहीं है। आपकी छत्र छाया रहे तो हम अभी भी फिरंगियों को खदेड़ सकते हैं। हो सकता है तात्या टोपे हमारी मदद के लिए प्रयत्न कर रहे हो।
0: तो ठीक है, तात्या काल्पी ना आ सके तो क्या हुआ, हम तो काल्पी जा सकते हैं।
2: हाँ।
0: तो चलो काल्पी।
2: रानी लक्ष्मीबाई की।
5: उसी रात मर्दाना भेष में रानी किले की दीवार से हाथी की पीठ पर कूदी, पीठ पर दामोदर राव को बांधा और एक सफेद घोड़े पर सवार होकर काल्पी की ओर चल पड़ी। अंग्रेज लगातार उसका पीछा कर रहे थे, दोनों हाथों से तलवार चलाती, फिरंगियों को मारती काटती रानी लक्ष्मीबाई बिना रुके मीलों दूरी का सफर तय कर काल्पी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही रानी के वफादार घोड़े ने दम तोड़ दिया। रानी ने वहां मौजूद तात्या टोपे, नवाब बांदा, बानपुर और शाहगढ़ के बखतबली व मर्दन सिंह से सलाह ली। नाना साहब की ओर से उनके छोटे भाई राव साहब ने रानी का स्वागत किया। रानी ने यहाँ फौज की एक टुकड़ी का नेतृत्व संभाला।
0: बहादुर सिपाहियों, मेरी टुकड़ी का नाम होगा लाल कुर्ती। हीरोज की फौजें किसी भी दम काल्पी पर हमला कर सकती हैं। अपनी फौज में मुझे जाबाज सिपाहियों की जरूरत है। तुम में से जिसे भी मौत का डर हो वो इसी वक्त मेरी फौज से जा सकता है।
6: नहीं, हम मरते दम तक आपकी आज्ञा मानेंगे।
1: हम आपके एक इशारे पर हंसते हंसते सर कटा देंगे।
4: हमारा एक ही नारा है, फिरंगियों से लड़ेंगे,
1: मारेंगे या मर जाएंगे।
0: शाबाश।
7: मनु, खबर मिली है कि हीरोज की फौजें काल्पी की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही हैं।
0: मुझे तो अपनी लाल कुर्ती टुकड़ी पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या राव साहब की सारी पलटन मैदान में फिरंगियों से लोहा ले सकेंगी?
7: क्या बताऊं मनु भाई, नाना साहब की गैर मौजूदगी में राव साहब यहाँ की कमान संभाले बैठे हैं।
0: लेकिन वो खुद तो भांग की तरक भी रहते हैं।
7: हाँ, उनके ज्यादातर फौजी और अफसर भी वैसे ही हैं। इसके अलावा जाने कहां कहां के लुटेरे और डकैत भी इनकी फौज में घुस आए हैं।
0: मैंने उनसे कहा था राव साहब, अपनी फौज को थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनाओ।
7: तो क्या जवाब दिया उन्होंने?
0: बस हाँ हूँ कह के टाल गए।
7: वो कुछ नहीं करेंगे, और दोबारा कहोगी तो हो सकता है कि बुरा मान जाएं।
0: पर क्यों?
7: कई बार कोशिश करने के बाद मैंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। बुरा मत मानना, राव साहब को उच्च कुल के होने का घमंड है, लिहाजा मुझ सरीके साधारण हैसियत वाले की बात मानना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं।
0: क्या कह रहे हो तात्या?
7: रही बात तुम्हारी, तो तुम एक स्त्री हो और ऊपर से उम्र में बहुत छोटी।
0: ये क्या बात हुई? ये छोटे और बड़े का फर्क, ये मर्द और औरत का भेदभाव आखिर क्यों?
7: फिरंगी से लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन ये खोखला दम्भ उनका पीछा नहीं छोड़ पाता।
0: कमाल है, नाना साहब में तो ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं।
7: यही तो फर्क है उनमें और नाना साहब में। खैर, जो भी हो, फिरंगियों से जंग तो मिलकर ही करनी है।
0: सही है, भले ही अलग अलग विचार हो, अलग अलग मानसिकताएं हो, लेकिन लक्ष्य तो हमारा एक ही है।
7: बिल्कुल सही।

0: और देखते ही देखते सर ह्यूरोज अपनी फौजों के साथ काल्पी पर टूट पड़ा। जबरदस्त युद्ध हुआ लेकिन काल्पी अंग्रेजों के हाथ आ गया। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, राव साहब और उनके कुछ साथी वहां से दूर एक सुरक्षित स्थान पर ठहरे।
1: कहिए, आप सबकी क्या राय है? इस वक्त तो हम फिरंगियों से मुकाबला करने की हालत में नहीं है।
2: मुकाबला करने के लिए हमें मजबूत किला चाहिए और वो किला है ग्वालियर।
1: ग्वालियर के सिंधिया महाराज नाबालिग हैं और उनका दीवान फिरंगियों से मिला हुआ है।
2: और फौजी?
1: बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी फौजी हमारा साथ देने को तैयार है। मैं उनसे अरसे से संपर्क में हूँ।
2: तो फिर ठीक है, आप पहले जाकर उन फौजियों को आगाह कीजिए, फिर हम ग्वालियर की तरफ बढ़ेंगे।
1: ठीक है।
0: हवा से बातें करते तात्या टोपे भी आन की मान में ग्वालियर जा पहुंचे और वहां सिंधिया की फौज में विप्लव की चेतना फूंक आए। राव साहब की सेना के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी लाल कुर्ती टुकड़ी के साथ ग्वालियर की ओर कूच किया। सिंधिया के दीवान ने एक टुकड़ी राव साहब की फौज का मुकाबला करने भेजी। हिंदुस्तानी फौजी तो पहले ही फिरंगियों के खिलाफ हथियार उठाने पर आमादा थे। नतीजा यह हुआ कि राव साहब की फौजें ग्वालियर के किले में घुस गईं। नाबालिग सिंधिया को लेकर दीवान आगरा भाग गया।
3: खला खुदा का, मुलुक बादशाह का, हुकुम राव साहब का, महारानी लक्ष्मीबाई की।
4: रानी साहिबा, किले पर तो सिंधिया और फिरंगी का झंडा उतारकर पेशवाई का झंडा फहरा दिया है। सिंधिया महाराज के खजानजी अमर सिंह बाठिया ने तो सारा खजाना सौंप दिया है।
5: अपने सब फौजियों को तनख्वाह बांट दी गई है। राव साहब दरबार बुलाकर पेशवाई का

0: मैदानों का जायजा लेंगे।
1: और रानी ने यही किया। तपती दोपहरी और तेज लू के झोंकों में रानी अपने कुछ साथियों के साथ ग्वालियर का भौगोलिक और सामाजिक निरीक्षण करने में जुट गई और तभी फिरंगी फौजों ने ग्वालियर को घेर लिया। तात्या टोपे अपनी सेना लेकर मुकाबला करने बढ़े लेकिन फिरंगी फौजों ने उन्हें तितर बितर कर दिया। रानी ने उनमें नई हिम्मत फूंकी और नए सिरे से व्यूह रचना की।
0: तात्या जी, इस समय किले का पूर्वी फाटक सबसे ज्यादा खतरे में है।
2: आप ठीक कहती हैं।
0: तो इस फाटक की रक्षा का भार मुझ पर रहेगा।
3: वो देखो, जनरल स्मिथ ने अपनी फौज के साथ पूर्वी फाटक पर हमला बोल दिया है।
4: और रानी को तो देखो, किस बहादुरी से उसने फिरंगियों को खदेड़ दिया है।
5: देखो, घोड़े पे सवार रानी अपनी तलवार चमकाती फाटक से बाहर निकल आई है।
4: फिरंगियों को गाजर मूली की तरह काट छाट कर फिर फाटक पर जम गई है।
3: सुबह से शाम हो गई लेकिन रानी ने अपने घोड़े से उतरने का नाम तक नहीं लिया।
4: बिजली की तरह हर मोर्चे को संभाल रही है।
5: थक हार कर जनरल स्मिथ ने पूर्वी फाटक का रुख ही छोड़ दिया।
6: रानी जी, हमारी तोपें ठंडी हो गई हैं।
0: हमारी सारी फौज तितर बितर हो गई है। हम चारों ओर से घिर चुके हैं।
6: हम लोग भी गिनती के ही रह गए हैं। 15-20 फौजी ही बचे हैं।
0: हम फिरंगी फौजों को चीरते हुए दूसरी तरफ मौजूद अपने साथियों से मिल जाएंगे। घोड़ों को एड़ लगाओ। जय भवानी,
7: जय भवानी।
6: रानी जी, फिरंगी पीछे ही आ रहे हैं।
0: मुड़कर मत देखो, मारते काटते आगे बढ़ते चलो।
2: रानी जी, सामने नाला है, उसे पार कर लें। उसे पार कर लें तो फिरंगी हमें छू भी नहीं सकेंगे।
0: पर ये क्या, मेरा घोड़ा तो नाला पार करने के बजाय आसपास चक्कर काट रहा है। ये नया घोड़ा है, तभी अड़ रहा है।
2: रानी जी, जैसे भी वो नाला कूद जाइए, फिरंगी पास आते जा रहे हैं।
0: मैं कोशिश करती हूँ रामचंद। लगता है ये घोड़ा साथ नहीं देगा।
2: रानी जी,
0: तुम मेरी चिंता छोड़ो रामचंद्र, तुम्हारे साथ दामोदर राव है, उसे लेकर फौरन निकल जाओ। हाँ, अपनी तलवार से मुझे।
2: नहीं, ये आप क्या कह रही हैं रानी जी।
0: फिरंगी, फिरंगी मेरी देह को छुए, इससे अच्छा है तुम ही मेरी देह का अंत कर दो। अरे मैं कहती हूँ।
8: लुक, रानी इज देयर, कम ऑन बॉयज।
2: रानी जी, संभालिए, वो फिरंगी सर पर वार कर दिया। हाय आधा माता कटिया, एक हाथ बाहर निकल आई। रानी जी, दुष्ट फिरंगी ने छाती पर वार कर दिया।
7: जय भवानी।
2: रानी जी, ओ सिर और छाती से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। वार करने वाले दोनों फिरंगियों को मौत के घाट उतार दिया लगता है। रानी जी, बेहोश हो रही है। मैं आता हूँ रानी जी, मैं आ रहा हूँ रानी जी।
0: रामचंद्र राव,
2: मैं आगे रानी जी।
0: अब मैं नहीं बचूंगी।
2: ऐसा ना कहिए रानी जी।
0: देखो फिरंगी मेरी देह को हाथ ना लगा सके। तुम
2: रानी जी आके खोलो। आप निश्चिंत रहे रानी जी, मैं आपको बाबा की कुटिया में ले चलता हूँ रानी।
0: हाँ,
2: गंगा दास बाबा, फिरंगी वहां तक नहीं पहुँच सकते, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ बाबा।
9: कौन? अरे
2: ये रानी जी है बाबा। बाबा, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई।
9: इन्हें भीतर ले चलो बेटा। हाँ हाँ, यहाँ लेटा दो। हाँ बेटी बेटी, मुंह खोलो बेटी, मुंह खोलो। हाँ पियो, पी लो बेटा, गंगा जल है ये, पी लो।
2: रानी जी,
9: आज भवानी से जा मिली है।

आनन फानन में बाबा ने अपनी कुटिया तोड़ डाली। एक तपस्वी की कुटिया की पवित्र लकड़ियों की चिता बनी। रानी की मृत देह को देखते ही देखते आग की लपटों ने भस्म में परिवर्तित कर दिया।

स्थापना रंग महोत्सव 20 जून तक आयोजित किया गया है, जिसमें 17 जून की शाम आले माटी आले राज की प्रस्तुति दी गई, जिसके निर्देशन किया कन्हैयालाल कैथवास ने। आले माटी आले राज यानी मेरी मिट्टी मेरा राज। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर स्थापना रंग महोत्सव 4 दिनों तक चलेगा। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।

0: टिंटा फॉरेस्ट का टिंटिंटा ऑफ फायर परसेंट टिंटिंटिंटिंटा।
1: बाबा बता रहे हैं कि तुम लोगों ने जंगल काट दिए और सीमेंट के जंगल बना दिए, तो गर्मी तो पड़नी है ना।
2: हमें हर बात में शंका रहती है। वोट वेद बाय हूम और हाउ।

make it.

जंगल देखा, पशु देखे और पक्षी भी, सब बुढ़ा की छाती देखी, देखा दृश्य अनोखा भी। हे बड़ा देव, मोरे महादेव, छुपे है तो में कितने भेद, कैसर ये संसार बनाया, अद्भुत है भाई जा की माया। ऊंचो ऊंचो ताड़ अनेक, सुंदर सुंदर साल को पेड़, नदी नर्मदे निर्मम धारो, गाए गीत दापती प्यारो, कितनी भारी बनो आकृति, झुके बिंद बड़े कीर्ति। हे बड़ा

0: माथा एक एक मुंह और एक नाक बना। हे बड़ा देव, रख जीव का नाम मानुष और फूक दे उसमें प्राण।
1: भक्त, तू मेरा परम भक्त, तुझसे करूं मैं चिंता व्यय। मन धन कर मन सृष्टि बनाऊं तो मानव रच उस पे क्यों आग लगाऊं।
0: हे बड़ा देव, तू ए ही जगत का स्वामी, बिन तेरी इच्छा करे कौन मनमानी। काम कला को लागे व्यर्थ और मानव बिनी का क्या है। दास में खुद को तब ही मानू जब तो से मानुष का उद्गम जानू।
1: भक्त, ये तेरी कैसी इच्छा, अरे क्यों मांगे हमारों की भिक्षा।
2: चलो

0: चमाटी दे दो फेंट वरना फोले देंगे मैं।
1: ये थी रेडियो रिपोर्ट स्थापना रंग महोत्सव की। अगली रेडियो रिपोर्ट तक दीजिए इजाजत।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: अब तक आपने जाना कि भारत के सपूत सुभाष चंद्र बोस पर स्वामी जी का कितना प्रभाव पड़ा था।
1: राममोहन राय के युग से विभिन्न आंदोलनों के जरिए भारत की मुक्ति कामना धीरे धीरे प्रकट हुई। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में स्वाधीनता के अखंड रूप का आभास रामकृष्ण विवेकानंद के भीतर से झलकता है। फ्रीडम, फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ द सोल, स्वाधीनता ही आत्मा का संगीत है। ये संदेश जब स्वामी जी के हृदय से निकला, तब उन्होंने समग्र देशवासियों को मुग्ध और उन्नत कर दिया। उनकी साधना के द्वारा, आचरण के द्वारा, वचनों और भाषणों के द्वारा ये सत्य प्रकट हुआ।
0: स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य को तरह तरह के बंधनों से मुक्त होकर सही मनुष्य बनने को कहा और दूसरी तरफ सर्वधर्म समन्वय प्रचार के जरिए भारतीय राष्ट्रीयता की आधारशिला स्थापित की। राममोहन राय ने सोचा था कि साकारवाद का खंडन और वेदांत के निराकारवाद की स्थापना के द्वारा वे राष्ट्र को एक सार्वभौमिक नींव पर खड़ा कर सकेंगे। ब्रह्म समाज भी उसी पथ पर अग्रसर हुआ था, परंतु इसके फलस्वरूप हिंदू समाज मानो और भी दूर चला गया।
1: इन्हीं सब बातों का प्रभाव सुभाष के जीवन को एक नई मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। विवेकानंद के बताए हुए रास्ते पर वे चल पड़े और देश सेवा में ही अपने को झोंक दिया।
0: सुभाष बाबू विवेकानंद की बातें लिखते लिखते आत्म विभोर हो जाते हैं। उन्होंने लिखा है,
2: वे इतने महान, गहन और बहुमुखी थे कि मैं घंटों तक लिखकर भी इन महापुरुष की महिमा के प्रति तनिक भी न्याय नहीं कर सकूंगा। वे विश्व के प्रथम ऐसे सर्वोच्च स्तर के योगी थे जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद भी स्वदेश एवं मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। आज यदि वे जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। जहां तक मेरा ख्याल है, वर्तमान भारत उन्हीं की कृति है।
1: एक अन्य पत्र में उन्होंने विवेकानंद को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए लिखा था,
2: स्वामी विवेकानंद के प्रति मैं कितना ऋणी हूँ, ये शब्दों में लिखकर भला मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूँ। उन्हीं के पुण्य प्रभाव से मेरे जीवन में चेतना का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ था। निवेदिता के समान ही मेरा भी विश्वास है कि रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही अखंड व्यक्ति के दो रूप हैं। आज यदि स्वामी जी जीवित होते तो निश्चय ही वे मेरे गुरु होते, अर्थात मैंने अवश्य ही उनका गुरु के रूप में वर्ण कर लिया होता। अस्तु कहना ना होगा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा रामकृष्ण विवेकानंद का अनन्य अनुगत तथा अनुरागी बना रहूंगा।
1: सुभाष बाबू तब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। 9 जनवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने कोलकाता के हाजरा पार्क में आयोजित एक विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए श्रमिकों से भी आजादी के संग्राम में सहायता करने का अनुरोध किया। किसानों, मजदूरों और नवयुवकों को स्वाधीनता संघर्ष के लिए प्रेरित एवं संगठित करने का उनका ये कार्य ब्रिटिश सरकार की आंखों में खटकता था। 23 जनवरी 1930 को उनके 33वें जन्मदिन पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। 25 दिसंबर को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। तभी कोलकाता नगर निगम का चुनाव हुआ और नेताजी महापौर निर्वाचित हुए।
0: अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद के 69वें जन्म दिवस के अवसर पर 10 जनवरी 1931 ईस्वी की शाम को बेलूड़ मठ के प्रांगण में गंगा तट पर मठ के मुख्य भवन के समक्ष एक आम सभा आयोजित हुई थी। मठ से आमंत्रण पाकर कोलकाता के महापौर के रूप में उस सभा की अध्यक्षता करते हुए सुभाष बाबू ने जो भाषण दिया था उसका सार संक्षेप इस प्रकार है।
2: स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। मेरे समय का छात्र समुदाय स्वामी जी की रचनाओं और व्याख्यानों से जैसा प्रभावित होता था वैसा और किसी से भी नहीं होता था। वे मानो उन छात्रों की आशाओं आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते थे। स्वामी जी का यथार्थ मूल्यांकन करने के लिए उन्हें परमहंस देव के साथ मिलाकर देखना होगा। वर्तमान स्वाधीनता आंदोलन की नींव स्वामी जी की वाणी पर ही आश्रित है। भारतवर्ष को यदि स्वाधीन होना है तो उसमें हिंदुत्व या इस्लाम का प्रभुत्व होने से काम न होगा। उसे राष्ट्रीयता के आदर्श से अनुप्राणित कर विभिन्न संप्रदायों का सम्मिलित निवास स्थान बनाना होगा। रामकृष्ण विवेकानंद की धर्म समन्वय की वाणी भारतवासियों को संपूर्ण हृदय के साथ अपनानी होगी। त्याग और चरित्र गठन, स्वामी जी इन दो तत्वों पर बल देते थे। त्याग के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं है। भारत में महापुरुषों का अभाव नहीं है। यहाँ ऐसे अनेक प्रतिभावान लोगों का जन्म हुआ है जो अन्य देशों के श्रेष्ठतम व्यक्तियों के समतुल्य हैं। परंतु हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है जनता को जगाने की। इसीलिए तो स्वामी जी ने प्राच्य और पाश्चात्य, धर्म और विज्ञान तथा अतीत एवं वर्तमान के बीच समन्वय साधित किया। वे इसी कारण महान हैं। उनकी शिक्षाओं में हमारे देशवासी अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मप्रतिष्ठा का बोध कर रहे हैं।
1: 6 मई को नेताजी ने पूना के मराठा संवाद पत्र के संपादकीय विभाग के श्री A.R. भट्ट के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने स्वामी जी के विषय में अपने विचार सविस्तार लिपिबद्ध किए थे। उक्त पत्र का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है।
2: स्वामी जी के बारे में लिखते समय मैं आनंद विभोर हुए बिना नहीं रह पाता। उनका व्यक्तित्व समृद्ध, गहन और बहुमुखी था और उनके इसी व्यक्तित्व ने उनके स्वदेशवासियों पर अद्भुत प्रभाव विस्तार किया था। वे अपने त्याग और असंयमित कर्म में अथक, प्रेम में असीम, विद्या बुद्धि में गहन एवं बहुमुखी, भावुकता में अतिरेकी तथा संघर्ष में निर्मम थे और इसके बावजूद वे एक शिशु के समान सरल थे।

0: इसके कुछ समय बाद ही अपनी एक अन्य रचना दलबंदी दूर हूँ में नेताजी ने लिखा,
1: आजकल की आम जनता और विशेषकर युवा समाज में एक प्रकार का ऊंचापन और विलास प्रियता का भाव प्रविष्ट हो रहा है, जबकि आजकल हमारे देश की आर्थिक अवस्था पूर्वापेक्षा सोचनीय हो चुकी है। क्या ये बात सच है? यदि है तो फिर इसका कारण क्या है? हम लोग जब छात्र थे तो उन दिनों छात्र समाज में रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का खूब प्रचार था। आजकल लगता है युवा समाज में उस साहित्य का वैसा प्रचार नहीं रह गया है, बल्कि उसके बदले शायद हल्के फुल्के और बीच बीच में अश्लीलता पूर्ण साहित्य का भी खूब प्रचार होता रहा है। क्या ये सच है? यदि ऐसा ही है तो फिर ये अत्यंत दुख की बात है, क्योंकि मानव समाज जैसे साहित्य से पुष्ट होता है उसकी वैसी ही मनोवृत्ति भी गठित होती है। चरित्र निर्माण की दृष्टि से रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य की अपेक्षा उत्कृष्ट साहित्य की मैं कल्पना तक नहीं कर सकता।
2: 13 जनवरी 1933 को अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया था और बंदी अवस्था में ही भारत से निर्वासित किया। इस काल में उन्होंने यूरोप के ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि देशों का दौरा किया। इसी काल में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन स्ट्रगल, भारत का स्वाधीनता संघर्ष लिखा, जिसमें उन्होंने 1920 से 1934 तक के कालखंड का इतिहास प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ में उन्होंने विवेकानंद का उल्लेख कर लिखा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका कितना अवदान है।
1: स्वामी जी राष्ट्र में हर प्रकार के स्वस्थ क्रियाकलापों के प्रेरणा स्रोत रहे। उनके लिए धर्म राष्ट्रवाद का प्रेरक था। उन्होंने भारत की नव संतति में अपने अतीत के प्रति गर्व, भविष्य के प्रति विश्वास और स्वयं में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना फूंकने का प्रयत्न किया। यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने कोई राजनीतिक विचार या संदेश नहीं दिया, तथापि हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में आया या जिसने भी उनके लेखों को पढ़ा, वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया और स्वतः ही उसमें राजनीतिक चेतना पैदा हो गई। कम से कम जहाँ तक बंगाल का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को वहाँ के आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक माना जा सकता है। यद्यपि उनका देहावसान बहुत जल्दी 1902 ईसा में ही हो गया, लेकिन उनका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद और अधिक बढ़ गया।
0: अप्रैल 1936 ईस्वी को सुभाष बाबू भारत लौटे। मुंबई में अपार जनता उनका स्वागत करने को एकत्र हुई थी, परंतु जलयान से उतरते ही उन्हें सरकारी आदेश के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मुक्त कराने के लिए सरकार पर काफी दबाव पड़ा और प्रायः एक वर्ष बाद 10 मार्च 1937 ईस्वी को वे निःशर्त रिहा कर दिए गए। 5 वर्ष के निर्वासन और कारावास के बाद अब वे पुनः सक्रिय राजनीति में प्रविष्ट हुए। फरवरी 1938 ईस्वी में उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वे अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में कुछ मतभेदों के कारण इस पद से त्यागपत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
2: इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत के वायसराय ने भारत के भी युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। सुभाष बाबू ने अपने साथियों के साथ युद्ध विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया और 2 जुलाई 1940 ईस्वी के दिन उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इस अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के विरोध में 29 नवंबर से प्रेसिडेंसी जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन आरंभ किया। एक सप्ताह के भीतर ही ब्रिटिश सरकार को उनके नैतिक बल के समक्ष झुक जाना पड़ा और 5 दिसंबर को उन्हें निशर्त छोड़ दिया गया। वे घर लौटकर आ गए, परंतु वहीं पर उन्हें नजरबंद रखा गया। उनके कोलकाता के मकान पर 24 घंटे पुलिस तथा गुप्तचरों का पहरा बना रहता था।
0: 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में ब्रिटिश सेना ने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 1 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान संभालने नेताजी भी सिंगापुर आ पहुंचे।
2: नेताजी के सिंगापुर प्रवास के कुछ संस्मरण स्थानीय रामकृष्ण मिशन के तत्कालीन प्रमुख स्वामी भास्वरानंद जी ने लिपिबद्ध किए थे, जिसमें नेताजी के व्यक्तिगत जीवन में उनके आध्यात्मिक रुझान की किंचित झलक मिल जाती है और ये भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार वे महाभारत के वीर अर्जुन के ही समान एक महान सेनानी के साथ ही साथ एक गंभीर साधक भी थे। स्वामी भास्वरानंद जी ने लिखा है,
3: सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर स्थित एक प्रसाद नुमा भवन को अपना आवास बनाया। उस भवन के द्वार पर सर्वदा सशस्त्र प्रहरी खड़े रहते थे। 1943 ईस्वी की विजयादशमी की रात को सुभाष बाबू ने अपने निवास स्थान से भारतीय स्वाधीनता संघ की मार्फत गाड़ी भेजकर मुझसे अनुरोध किया कि मैं यथाशीघ्र आकर उनसे मिलूं। उस समय रात के 9 बजे थे। मैं गाड़ी में बैठकर उनसे मिलने गया। गाड़ी के द्वार पर पहुंचते ही वहां खड़े सशस्त्र पहरेदारों ने बड़े अदब के साथ ले जाकर नेताजी के निजी सचिव के साथ मेरा परिचय कराया। सचिव मिस्टर हसन मुझे नेताजी से मिलाने ले गए। मेरे पहुंचते ही उन्होंने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धापूर्वक मुझे प्रणाम करके बैठने को कहा और सहकर्मियों को चाय लाने का आदेश दिया। इसी बीच हमारी बातचीत आरंभ हो गई। हमारे सिंगापुर आश्रम के क्रियाकलापों को जानने की उनकी उत्सुकता देखकर मैंने विस्तारपूर्वक उन्हें सारी सूचना दी। फिर चाय के साथ पुनः बातचीत होने लगी। नेताजी ने मुझे बताया कि किस प्रकार कोलकाता से निकलकर वे जापान पहुंचे और मुझे अपनी भावी योजनाओं से अवगत कराया। थोड़ी देर वार्तालाप के बाद मैंने कहा, हमारे मिशन की कार्य प्रणाली से तो आप परिचित हैं ही। मिशन के आदर्श तथा उद्देश्यों को बनाए रखकर हम लोग भी यथासंभव आपके कार्य में सहायता करेंगे, इस विषय पर आप निश्चित रहें। उनके अनुरोध पर मैंने वहीं भोजन किया और आश्रम लौटते लौटते रात के 12 बज गए। उनसे मिलने जाने पर वे कभी बिना भोजन कराए नहीं छोड़ते। उनके स्नेह यत्न पर कोई भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था।
0: युद्ध के कार्य में व्यवस्था के दौरान भी सुभाष का आध्यात्मिक ज्ञान रुझान खत्म नहीं हुआ था। वे बराबर वहां से रामकृष्ण आश्रम में जाते रहते थे।
3: अपने सिंगापुर अवस्थान काल में नेताजी माँ श्री शारदा देवी के जन्मदिन पर आमंत्रित होकर रामकृष्ण मिशन के भवन में आए थे। उस दिन वे मंदिर में जाकर लगभग आधे घंटे तक ध्यानमग्न बैठे रहे। फिर पूजा होने के बाद प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे। इसी प्रकार 1 घंटा बीत जाने के बाद उन्होंने दुर्गा सप्तशती की एक प्रति के लिए इच्छा व्यक्त की। मेरी अपनी चंडी उन्हें उपहार दिए जाने पर उन्होंने अतीव आनंद व्यक्त किया।
2: उन मुश्किल के दिनों में भी उनका सेवा व्रत बंद नहीं हुआ था।
3: नेताजी हमारे मिशन के कार्यों के एक महान पृष्ठपोषक थे। आश्रम के अनाथालय हेतु अपील जारी करने पर उन्होंने भवन आदि के निर्माण में काफी मदद की थी। निर्माण कार्य के लिए उन्होंने अपने पास से $50,000 दिए तथा और भी $50,000 एकत्र कर दिए थे। फिर उन्होंने स्वयं आकर बाल भवन का उद्घाटन भी कर दिया था। युद्ध काल में कालाबाजारी तथा खाद्य नियंत्रण के फलस्वरूप 300 बच्चों के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था करना हमारे लिए टेढ़ी खीर थी, परंतु अनाथालय के बालक बालिकाओं के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था उन्होंने स्वयं ही कर दी थी। हमारे मिशन के विद्यालय को भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय में परिणत कर दिया गया। हमारे विद्यालय में सैन्य शिक्षक की भी व्यवस्था थी और एक दिन नेताजी हमारे बच्चों का प्रदर्शन देखने भी आए। एक अन्य दिन वे उनके द्वारा आयोजित संगीत सभा में आए। 5वीं बार वे तब आए जब उन्होंने हमारे हॉल में एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में कई जापानी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने जापानी मित्रों को भी मिशन के बारे में अनेक बातों से अवगत कराया।
2: इस संदर्भ में नेताजी के उन दिनों के घनिष्ठ सहयोगी तथा आजाद हिंद सरकार के प्रचार एवं प्रकाशन मंत्री श्री एस ए अय्यर के संस्मरण भी उल्लेखनीय हैं। अपनी सुप्रसिद्ध नेताजी की जीवनी में वे लिखते हैं,
4: अपने सिंगापुर निवास काल में कई बार रात को भोजन के पश्चात वे अपनी कार भेजकर रामकृष्ण मिशन से वहां के प्रमुख स्वामी जी अथवा उनके सहकारी ब्रह्मचारी कैलासम को बुलवा लेते और उनके साथ करीब 2 घंटे तक आध्यात्मिक चर्चा में बिताकर आधी रात के बाद अपने प्रशासनिक कागजात देखने अपने अध्ययन कक्ष में चले जाते। कभी कभी रात गए गाड़ी चलाकर गुप्त रूप से मिशन में पहुंच जाते और वहां उपासना की रेशमी धोती पहनकर हाथ में माला लिए प्रार्थना गृह में जाकर द्वार बंद कर लेते तथा वहां ध्यान करते हुए कोई 2 घंटे बिता देते। इससे उन्हें जटिल समस्याओं का सामना और उन्हें हल करने में सहायता मिलती थी। अत्यंत आवेग पूर्वक वे ईश्वर से पथ प्रदर्शन के लिए प्रार्थना करते। उनके विकारहीन मुखमंडल, दृढ़ संकल्प चरम पर, शांत आत्मविश्वास तथा सफलता व असफलता में अनासक्ति के पीछे था उनका ये बोध कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें ईश्वर ही मेरा हाथ पकड़कर मार्गदर्शन कर रहे हैं।
0: अय्यर जी से हमें सुभाष के सिंगापुर प्रवास के दिनों की और बातें भी मालूम पड़ती हैं।
4: उनकी साधुता का एकमात्र परिचायक एक छोटा सा चमड़े का बटुआ था जो उनके व्यक्तिगत सामान का सबसे छोटा अंश था। उसके भीतर 2.5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी एक गीता, तुलसी की एक छोटी जपमाला तथा पढ़ने का एक अलग चश्मा था। काफी काल तक उनके निजी सेवक को छोड़ अन्य किसी को भी उनकी इन चीजों का पता न था। यह तथ्य ही उस चरम एकांतिकता का एक नमूना था जिसमें कि नेताजी अपने ईश्वर के साथ निवास करते थे। उनकी श्रद्धा किसी को दिखाने की वस्तु नहीं थी। उनके चेहरे पर सदा विराजमान रहने वाली यह दुर्लभ ज्योति और उत्तेजना पूर्ण घटनाओं के बीच भी उनके मुखमंडल पर व्यक्त होने वाली प्रशांति का इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत नहीं हो सकता था। वे जनसभा में एक बार भी अपने ईश्वर के बारे में नहीं बोले क्योंकि वे उन्हीं में निवास कर रहे थे।
2: अपने रंगून प्रवास के दौरान भी सुभाष बाबू ने वहां के रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से अपना आंतरिक संपर्क बनाए रखा।

के रंगून त्याग की पूर्व निशा थी, उनके स्वप्न और लक्ष्य का पूरा ढांचा उनकी आंखों के सामने ही चूर्ण विपूर्ण होकर भरा पड़ा था। सामने दिख रहा था अंधकार का अनंत सागर। उस चरम संकट की बेला में, रंगून त्यागने के पूर्व की घड़ी में, नेताजी ने अपनी सामरिक वेशभूषा उतार कर रेशमी वस्त्र धारण कर लिए थे। शुचि शुभ्र निर्विकार योगी एकाकी ही अपने आदर्श पुरुष के प्राण देवता के सेवायतन रामकृष्ण मिशन के मंदिर चले गए। युगश्री की मूर्ति के समक्ष वे शांत तद्गत तन्मय बैठे रहे। स्वयं को जानने की आकांक्षा थी। क्या वे स्वयं को पहचान सके थे? क्या उनके मन में ये बात उठी थी कि मृत्यु ही मरण नहीं है?

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।